नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।
1: अल्लाह।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है हैबी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश है बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, the been beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और enjoy कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after the classic flashback, Williams and Rise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

hit of the hour. Sun Ajay Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi Decide. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big big big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश है बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

What a lovely song. क्या गाना था यार. इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

welcome back after yet another beautiful classic flashback on your Sunrise Radio 103.2 FM. And right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. So I'll see you on the other side.

once again, welcome back after the hit of the hour only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

वेलकम बैक आफ्टर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग विलियम सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप एंड देन दुनिया के भी किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड डाउनलोड द ऐप एंड ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you? When you

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

वला हबीबी हम ना सुधरेंगे कभी भी। राजीन, अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, सुनरस रेडियो के साथ साथ हैं जिसे आप सुनते हैं कहां कहां पर, एवरीवेयर नाउ 100.6 FM एंड 103.2 FM अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, ऑन DAB पर इन ब्रैडफोर्ड, कीफले, इल्कले, स्किप्टन, वाव, इल्कले, वाव, लीड्स, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burnley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes, and very, very soon we're launching in Derby. और इसके अलावा आप हमें जो है ऑनलाइन भी सुनते हैं, हमारी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, दैट इज www.sunriseradio.fm, या फिर आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू एप्पल स्टोर एंड गूगल स्टोर, हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें एंड आप हमें लाइव भी आपके थ्रू जो है वो सुन सकते हैं। मुझे कहते हैं DJ कैमरान, और यूजुअली जो होते हैं आमिर भाई का शो होता है, एंड लेकिन आज आमिर भाई इज़ नॉट अवेलेबल अपनी किसी पर्सनल वजह से, और उनकी जगह जो हूँ मैं।

0: यहाँ पे मौजूद रहूंगा आप लोगों को एंटरटेनमेंट मुहैया करने के लिए। एक गजा होती है ना एंटरटेनमेंट की, गजा वो ज़रूरी होती है। सो एवरी संडे जो होता है कि यहाँ पे हम लोग सभी प्रेजेंटर्स कोई ना कोई यहाँ पे आया होता है एवरी डे अपने अपने शो के हिसाब से, लेकिन आज जो है अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, सो आई एम हियर, व्हाई नॉट। सो आप सभी को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और टाइम इस वक्त 9:11 है और आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। सो वेरी सनी राइट नाउ इज़ शोइंग 20 degrees। वाओ, आज क्या हो रहा है, मैं क्या खा के आया हूँ, वाओ वाओ क्यों हो रहा है। तो जनाब अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, फर्स्ट अच्छा शो का फॉर्मेट जो है वो वैसे ही रहेगा जैसा होता है, आमिर भाई के शो को ही हम फॉर्म जो है फॉलो करेंगे। फर्स्ट आवर में हम आप लोगों से लगाएंगे गपशप, आप लोगों की सलाम दुआ होंगी, आपने किसी को पैगाम देना है, किसी का पैगाम लेना है, किसी को बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी को आपने ताने ताने मारने हैं, वो भी जनाब इस आवर में आप मुझे कर सकते हैं। नंबर होता है हमारा 01274306666। सेकेंड एंड लास्ट आवर में हमारी होती हैं लाइव कॉल्स, मेरी मतलब आजा सर्टिस के हम लाइव कॉल्स पे अब आते हैं। अब शायर हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, मुसन्फ़ा हैं, अदीब हैं, अदीबा हैं, और इस आवर में आके जो है वो आप अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपने सिर्फ कॉल करनी होती है, मुजाहरे करने के लिए कुछ जो है वो पापड़ आपको बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन उठाना है, नंबर घुमाना है 01274306666। मुझे कहते हैं डीजे कैमरॉन, और ये हमारी न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, मैं सोच रहा था हमारी न्यूज़ आ जाए। चलो जनाब गाना लगाते हैं और फिर आते हैं लौट के।
1: दिस इज सनराइज रेडियो ऑन FM, DAB, ऑनलाइन एंड मोबाइल।

0: Hot Chunker.
1: This is Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
4: You're listening to DJ Cameron.

0: कर।
1: तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, और मुझे किसी ने कोई आवाज नहीं दी, मैं ऐसे ही आ गया हूँ। मुझे भेजा गया और मैं आ गया। तो जनाब आपने बैक टू बैक सॉन्ग सुने, उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा बैक टू बैक म्यूजिक। और इस दौरान जो था, मैं आप सबकी कॉल्स आ रही थी, मैं आप सबसे जल्दी सबसे मैं बातें कर रहा था, सबको टाइम दे रहा था ताकि बाद में कोई शिकायत ना करे। मुझसे वैसे कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, मैं भी बातें बना रहा हूँ, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने कॉल की हैं और आप से मुझे सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सबसे पहले हमें कॉल किया था हमें कॉल किया कमल जी ने, हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच कमल जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। उसके बाद वाजिद भाई, आपकी कॉल आई, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। उसके बाद हमारे प्यारे भाई नदीम मंसूर साहब, आपकी कॉल आई, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। अच्छा लगा आप सबसे बात करके कि आप सब खैरियत से हैं, आपके घर वाले बहन भाई सब खैरियत से हैं। दुआओं का बेहद शुक्रिया जिन्होंने दुआएँ दी। हीरा खान साहब ने हमें कॉल किया था, हीरा खान साहब आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो आमिर भाई हैं हमारे, अगले संडे ज़रूर आपके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। उसके बाद मंसूर साहब आपकी कॉल आई थी, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। वाजिद भाई आपकी कॉल आई थी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का भी। अली साहब आपकी कॉल आई थी, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। और एक अनोनमस नंबर से मुझे जो है वो कॉल आ रही थी, लेकिन चूँकि आपका नंबर नहीं आ रहा था तो मैं इस वजह से आपकी कॉल नहीं ले सका, क्योंकि जब भी किसी एनोनमस से आ रही होती है कॉल तो मैं, मेरी जो स्ट्रेटजी है कि मैं कॉल नहीं पिक करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मुझे कॉल दोबारा करें तो अपना नंबर जो है अगर आपका स्क्रीन पे आएगा तो मैं ज़रूर आपसे बातचीत करूँगा। बेहद शुक्रिया आपकी कॉल का। सिमरन जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आप खैरियत से होंगी, आपकी फैमिली खैरियत से होगी, और इंशाल्लाह आपसे भी बात होती है थोड़ी देर में।

0: कितना सोना तेनू रब ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत है गाना था। सिमरन जी आपको गाना पसंद आया, सीमा जी आपको भी गाना उम्मीद करते कि बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और जनाब बिल्कुल ईद की भी बातें हो रही हैं क्योंकि ईद है हमारे सर पे, कहां मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। तो फिर ईद तो चले आ ही सकती है। ओके जनाब, अभी जो है वो इतसी बिटसी ब्रेक का टाइम हो रहा है, छोटी सी चुनी मुनी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, बस यही चलता रहेगा ठीक दिन के 2 बजे तक। आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे सलामत वाक करना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल शर्माए मत। और अगर आपको लज्जा आती है तो कोई बात नहीं है, जिनको लज्जा आती है उनकी लज्जा जो है वो दूर हो जाएगी क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम सब यहाँ पर आप सबसे जो है बड़ी इज्जत के साथ बात करते हैं, आपको इतना ही एहतराम करते हैं जितना हम अपने घर वालों का एहतराम करते हैं। तो लज्जा को ऐसे उतार के फेंक दे जैसे ना पल्लू को उतार के फेंका जाता है। ची ची ची कैसी बातें मैं कर रहा हूँ। नहीं जनाब आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब और फिर आते हैं लौट के, लेकिन उससे पहले
1: सनराइज रेडियो your soundtrack your time check
0: yaar ye awaaz kyun nahi nikal rahi hai. So time is 11:43, very good morning. Sunrise
2: music. बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: The classic flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers 97-99 Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

राजन आप कुछ लोग शामिल हुए हैं, इनके नाम भी हम शामिल कर देते हैं। आप हुमा जी ने भी हमें कॉल किया था, थैंक यू सो मच हुमा जी आपकी कॉल का भी। सायरा जी आपकी कॉल आ रही थी लेकिन आपसे मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि उस वक्त मैं दूसरी लाइन पे बिजी था, बहुत माजरत आपसे। अगर आप मुझे कॉल करना पसंद करें आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद साहिबा, आपकी कॉल का भी बेहद शुक्रिया। तो राजनाब अभी जो है मैं देख रहा हूँ जल्दी से कोई नाम तो नहीं रह गया, नहीं सारे नाम हो गए। और एक एक गाना जो है, ये गाना कौन सा वाला गाना जो मेरी लिस्ट में अभी बिल्कुल नहीं है, तो वो बिल्कुल जनाब हम आपको सुनाएंगे, वो वाला गाना भी सुनाएंगे, ये वाला गाना।

सुर देखें आप। अच्छा ये वाला जो सॉन्ग है ना, ये मेरी शादी का सॉन्ग है। जब शादी होती है तो कोई ना कोई किसी, जब भी किसी की शादी हो, एक गाना बड़ा मशहूर होता है और उस गाने पे फिर स्टेप सीखे जा रहे होते हैं। कुछ तो बड़े अच्छे स्टेप लगा लेते हैं, कुछ बेचारे हम जैसे होते हैं, बावजू कहीं टांगे कहीं जूते कहीं स्लो मतलब सर भी नहीं।

0: मैं साथ साथ सब कुछ जो है वो होल्ड पे लगाता जा रहा हूँ जिनकी कॉल आ रही है। तो शादी की बात हो रही थी, अमिया जब्बार साहब से मेरी बात हुई, बहुत अरसे के बाद बात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खैरियत से हैं और उनसे बात करके जो है वो एक होता है ना आप के कुछ जब काफ़ी टाइम के बाद बात होती है तो एक अनजानी सी आपके अंदर जो है ना एक खुशी की लहर आती है। तो थैंक यू सो मच मियाँ जब्बार साहब आपकी खूबसूरत बातों का। और मुझे एक बात अच्छी लगती है कि जब सारे लिसनर मुझे कॉल करते हैं सब हंसते हुए मुझे कॉल करते हैं, मुझे मतलब सब कोई ऐसी बात कर रहा है कोई वैसी बात कर रहा है, अंदा इज सो सो मच फन, मज़ा आता है। और हमारी बिल्कुल अथेंटिक बातें हो रही थी, जेन्युइन बातें हो रही होती हैं, जैसे अभी शादी की बात हो रही थी तो मियाँ जब्बार साहब मुझे कहते हैं अच्छा शादी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबकी होती हैं शादियाँ, आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन हर शादी के साथ एक गाना जुड़ा होता है, कोई वो पता है शादी की फिल्म्स होती थी ना उसमें भी एक गाना होता था जैसे अकेले तन्हा रहा ना जाए या फिर मेरा महबूब ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा मियाँ जब्बार से मैंने सवाल किया कि आप मुझे बताएंगे आपकी शादी का जो है वो कौन सा सॉन्ग है, आपको कुछ याद है? तो कहते हैं मेरी माशाल्लाह से रमज़ान और मुबारक में मेरी शादी हुई थी। देखिए कितनी प्यारी कहानियाँ हैं, कितनी प्यारी यादें हैं। तो रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में निकाह होना बहुत खूब खूब एक और एक अहमियत वाली एक आप कह सकते हैं कि आपका शादी को भी ख़ास अहमियत मिलती है इस हवाले से। आजकल जो है कुछ इस तरह से बातें हो, मैंने देख रहा हूँ कि लोग मक्का और या फिर मदीना शरीफ में जाके निकाह कर रहे हैं हम नहीं कर सकते लेकिन जब उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा रश्क आता है कि माशाल्लाह देखें कि कैसे वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, कि रमज़ान मुबारक में किसी की शादी हो रही है, किसी की ऐसी याद है अपनी के यू नो सॉन्ग पे पूरे कज़न के साथ आप डांस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है ना कि पूरे कज़न जो हैं वो ग्रुप डांसिंग हो रही है एंड यू नो इट्स टू मच आजकल। तो हमारी सादे रमज़ान मुबारक में शादी होना, कितनी सादगी से शादी हुई, फिर उसके बाद ज़माना गुज़रा फिर हमारा ज़माना आ गया। हमारे ज़माने में भी मतलब थोड़ा वही सिलसिला था कि चलो जी कज़न्स वगैरह सब मिलके डांस डूंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आजकल देखें कि आजकल तो हॉल वगैरह वेडिंग हॉल्स बुक करवाए जाते हैं, वेडिंग हॉल में ही सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग हो जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं कि मक्का और मदीना शरीफ में जाकर निकाह कर रहे हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल, हर बंदी की जो शादी की कहानी है वो मुख्तलिफ है और ख़ूबसूरत है। अच्छा जनाब होगी बातें काफ़ी सारी और अभी जो है थोड़ी देर में हम जा रहे हैं अपनी कमर्शियल ब्रेक के बाद। और अगर मुझे आप कॉल करना चाहते हैं तो अभी से मुझे कॉल करना शुरू कर दें, फिर बाद में मत कहिएगा कैमरन तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। मैं सबको फ़ोन उठाता हूँ, मैं आती ही यहाँ पर इसीलिए हूँ कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट जो है वो मुहैया की जाए। मुझे ये लफ्ज़ बड़ा मज़े का लगता है मुहैया, तो एंटरटेनमेंट मुहैया करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं ज़रूर आपकी कॉल लूँगा, लेकिन आप पहला आवर हो सकता है ज़्यादा बिजी हो, दूसरा आवर थोड़ा कम हो जाए तो फिर आप ऐसा कर लें कि आप दूसरे आवर में या मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे आज बहुत सारी बातें करनी है आप सबके साथ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ और फिर काफ़ी अरसे के बाद नहीं आऊँगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो कॉल आप लोग मुझे बिल्कुल जनाब ज़रूर कीजिएगा। अभी जो हो रहा है टाइम कमर्शियल ब्रेक में होंगी कुछ खबरें, उसके बाद होंगी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स और उसके बाद हम लगाएंगे आपके लिए हिट ऑफ द आवर, उसमें एक खूबसूरत सा गाना आपके नाम करेंगे और उसके बाद होगी हमारी और आपकी मुलाकात ऑन एयर। तो अपनी शायरी रेडी कर लें, अपनी जो सुर हैं उनको अलाप लें, रियाज कर लें और उसके बाद आप मुझे जो है वो कॉल करना शुरू कर दें।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at midday, America's most senior diplomat has suggested a peace deal with Iran could be announced within hours. Secretary of State Marco Rubio says progress has been made on an outline that could see the Strait of Hormuz reopened. But there have been reports Tehran doesn't want the route returned to pre-war access. Shadow Foreign Secretary Priti Patel says Iran mustn't be allowed to strangle global trade.
3: This is an economic artery for the world. They've threatened tolls. The straits have been mined as well. There are all sorts of issues here. Now, we've also heard the Iranians would be responsible for demining the straits. Well, quite frankly, I don't think we can trust the Iranians to do anything.
2: Police are reportedly investigating allegations of inappropriate behaviour by Andrew Mountbatten Windsor towards a woman at Royal Ascot in 2002. The Sunday Times says it's not clear if a complaint was made at the time. The former prince has consistently denied any wrongdoing. At least 24 people have been killed and around 70 others are injured after a suicide bomber struck a railway track in southwestern Pakistan. The train was passing through the southwestern city of Quetta. A man's been shot dead after opening fire on Secret Service agents near the White House in Washington, D.C. NBC reports the suspect is 21-year-old Nasir Best. West Ham and Tottenham's fight for Premier League survival is going to come down to this afternoon's last game of the season. A win for the East Londoners at home to Leeds might not be enough to avoid relegation. A draw for Spurs at home to Everton should keep them up. Fans of both clubs say they aren't surprised they're in such a perilous position.
4: When you look at the recruitment of managers, it's been appalling. Some of the players have been appalling, past their best, paid too much.
5: To sell your top scorer off the back of not replacing Kane, letting your captain go, it just doesn't make sense to me.
2: And much of England is braced for soaring temperatures once again. Amber alerts cover the Midlands, the east and south-east of England and London. That's the latest. I'm Bev Rimmer.
6: Classic Flashback, brought to you by Bala Hisar Restaurant. For delicious food and unique culinary experience, visit Bala Hisar, 46 to 50 Highgate, Heaton, Bradford BD9 4BE, or call 01.

0: राइट जनाब, हम आ चुके हैं वापस और मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन अब मुझे समझ लगी कि क्या हो रहा था। एंड अभी ऐसा है कि मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है। ओके जनाब, जो है टाइम आपको बता देते हैं, इस 3:12 और अभी हम जल्दी से जा रहे हैं अपनी लाइंस की जाने पर। देखते हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: आर यू हियरिंग मी?
0: एक मिनट होल्ड कीजिए।

0: वक्त हमारे साथ कोमल ऑन एयर हमसे बातचीत कर रही हैं। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ अल्लाह की तरफ से। कमरान, आप सुनाओ, ठीक हो?
0: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबके दुआएं हैं। आप बताएं, आप कैसी हैं, फैमिली कैसी है, सब ठीक ठाक हैं?
1: सब अल्लाह का लाख लाख करम एहसान है। और माशाल्लाह आप दुआ, तो मौसम भी बड़ा प्यारा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ऑनलाइन रेडियो ऑन किया तो आप आ रहे थे, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हमेशा हंसते चेहरे के साथ आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ बातें कर लूँ, कोई अच्छी अच्छी बातें बता दूँ, कुछ सुन लूँ।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच कि आप वक्त निकालते हैं सब और आते हैं और प्रोग्राम में अपना जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज फिर हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या लेके आएंगे?
1: कुछ शायरी है, मगर उससे पहले मैं चंद बातें करना चाहती हूँ। जैसे आप निकाह के बारे में बात कर रहे थे
0: जी,
1: जिस तरह लोग मीनिंग सऊदी अरब जाके निकाह शायद करते हैं, तो ये तो बहुत ही मीनिंग अच्छी बात है कि अल्लाह के घर में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर मस्जिद में निकाह होता है तो वो बरकत वाला भी होता है। तो एक्चुअली निकाह का जुज भी यही होना चाहिए, मगर जो लोग नहीं जा सकते तो वो भी, अब ज्यादातर लोग मस्जिद में निकाह करते हैं, ये बरकत वाली बात है, मगर सबसे ज्यादा जो जरूरी है जो हम लोगों को इस चीज का शायद शऊर नहीं है, या हमको शऊर होने के बावजूद हम नजरअंदाज करते हैं, तो ये है ना कि निकाह एक मुकद्दस रिश्ता होता है
0: जी।
1: ठीक है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कितनी दुआएं भी बताई हैं, सारा कुछ गया कि ये एक मुकद्दस रिश्ता है, अगर क्योंकि इसमें तीसरा शैतान आता है तो अगर नी नफल पढ़ लो या इस तरह कई दुआएं हैं, मगर वो चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी हैं। शादियां ज्यादा फिर कामयाब नहीं होती हैं, दूसरे 6 महीने साल बाद फिर इलाके पर बात आ जाती है, तो ये फालतू रस्त में जो हम खर्चा करते हैं, अगर किसी और की मदद करते हैं या किसी नेक काम में लगाते हो, आई थिंक वो बेहतर होगा। वो दूल्हा तो बेचारा बाद में देखता है, पहले तो मूवी देख बनाने वाला देखता है दुल्हन को, तो बरकत किधर आएगी निकाह से?
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसी है।
1: फिर दूसरी बात है कि जैसे हमारे मजहब में ये कजन, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ये जी मेरा कजन है, इन रिश्तों से तो अल्लाह ताला ने इन रिश्तों को तो गैर महरम कहा है। वो जो पुराने लोग थे वो कच्चे घर थे और सच्चे लोग थे, उस वक्त तो जो वो इस तरह के रिश्ते आते थे तो उसे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा करते थे,
0: ऐसा ही है।
1: जैसे घर की औरतें हैं, अंदर ना आओ, तो आप देखो साथ ही डांस हो रहा है, तो एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, खिलियां हो रही हैं, तो सारा ड्रामा ही शादियों में होता है। और हमारी औरतें भी ऐसी हैं कि मिनी को वो ऐसे ऐसे पार्टियां पे लिबास पहनती हैं कि कोई बंदा को खुद औरतें हो के भी शर्म आ जाती है। तो ये है ना कि इन चीजों पर अमल करना चाहिए। फिर वो उधर फिर कहते हैं हमारे बच्चे नेक नहीं है, वो जब माँ बाप ऐसे होंगे तो बच्चे नेक किधर से निकलेंगे?
0: सही है। मैं
1: बच्चों ने फिर यही कुछ करना है जो वालदैन ने बड़ों ने किया है। तो ये है ना कि कहते हैं कि माँ पहली दरसगाह होती है और बाप का भी इसका बड़ा रोल होता है। नहीं, हमारे मेरे भाई हलाल आराम की फिक्र रहते रहे कि हमें ऑनलाइन किसी को टारगेट नहीं कर रही, मगर एक मौजू छिड़ा है तो मैं भी एज ए मुसलमान अपने दिल का दर्द बयान कर रही हूँ कि हो सकता है मेरे अल्फाज से किसी को समझ आ जाए।
0: जी बिल्कुल, मैं यही चीज ऐड करने लगा था कि यहाँ पे बिल्कुल किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, जो भी बात की जा रही है एक जनरल बात की जा रही है, और हम सब अच्छे भी हैं और हम सब गुनहगार भी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि शायद यू नो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। तो बड़ी अच्छी बात लेकिन आप कर रही हैं जी, बोलें।
1: देखे कमरान, ये ईरान के मेरे ड्रामे ज्यादा देखती हूँ, देखो वो ड्रामे बनाते हैं उनमें इस्लाम को शो ऑफ करते हैं, पर्दे का वो ध्यान रखते हैं, कोई औरत उनके ड्रामे में आपको खुले बालों वाली नजर नहीं आएगी।
0: सही है।
1: वो हिजाब में निकाह में औरतें होती हैं और वो ज्यादातर उनको ड्रामे बनाने का, ड्रामा का मकसद यही होना चाहिए कि कोई अच्छी बात सीखे,
0: ठीक है, सही,
1: ना कि बुरी बात। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो चादर हम लोगों ने इस्लाम की ओढ़ी थी या हया की थी वो भी उतार के फेंक दी है।
0: ऐसा हो रहा है जी,
1: क्योंकि इस्लामी घरानों में भी जब शादियां होती हैं या पार्टियां होती हैं तो वो ऐसा क्या जी बच्चे खेल कूद रहे हैं, बच्चे मजाक कर रहे हैं, बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, वो चीज प्लीज बराए मेहरबानी लोग जो मैं टारगेट नहीं कर रही इन चीजों का ध्यान करें, क्योंकि एक इसलिए तो हमारी तलाक शराब बढ़ चुकी है क्योंकि हमारे रस्मों और रिवाजों में ज्यादातर हद हदूद खत्म हो चुकी है।
0: सही हो गया।
1: तो यहाँ

0: बच्चों की शादियां पसंद की बात आ जाए, वो जहाँ बच्चे कह रहे हैं उनकी पसंद की शादियां कर दो, वो जाने उनकी जिंदगी जाने।
1: सही है, बिल्कुल सही है।
0: तो यही बस कहने का मकसद था। तो कुछ अशआर है अगर मैं पेश कर सकूँ तो, अफसोस के साथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन शायरी बड़े शौक से सुनाती थी और प्रोग्राम में जिस प्रेजेंटर का प्रोग्राम होता था मैं शायरी लिखती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं शायरी अपनी सुनाऊँ, मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी शायरी चोरी हो रही है।
1: अच्छा।
0: मेरी शायरी टिकटॉक पे लोग लगा के अपने बढ़ा रहे हैं।
1: अच्छा, अपने नाम के साथ।
0: मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी मेहनत किसी और की ओर, नाम कोई और ले रहा हो।
1: हाँ नहीं, ये आई थिंक ये इखलाकी तौर पे भी गलत बात है कि जब आप किसी का कोई कलाम पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका नाम आप ज़रूर ले दें कि ये शायर का नाम या शायरा का नाम ये है, लेकिन मेरी जो है मेरा इंतखाब है, और फिर उसको आप पढ़ सकते हैं इस तरह से ऑन एयर भी या फिर टिकटॉक पे जहाँ जो भी सोशल मीडिया पे हम नाम ले लेते हैं उनका। लेकिन अच्छा, ये आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस तरह से हो रहा है, आपकी जो पोइट्री है उसको जो है यू नो उस तरह से किया जा रहा है उसके साथ। वेरी रॉन्ग।
0: बस मैंने फिर आपको प्रोग्राम देके मुझे फिर सोचा कि मैं चलो दो चार शायर ना दे।
1: नहीं नहीं, वो तो हम जाने नहीं देंगे आपको, आपकी शायरी आपकी बहुत कमाल की शायरी होती है और हम आपको जाने नहीं देंगे, तो प्लीज इरशाद।
0: दिल में रब बसता है, दिल नहीं तोड़ा करते हैं, निकले क्यों फरियाद दिल से अर्शील जाया करते हैं।
1: दोबारा मुकर्रर।
0: दिल में रब बसता है, दिल नहीं तोड़ा करते हैं, निकले जो फरियाद दिल से अर्शील जाया करते हैं। दो दो फरिश्ते साथ देकर इंसान जमीन पर उतारे जाते हैं, वो अर्श पर जलवा घर है, उसकी अदालत में रोज शब के सब हिसाब पेश हो जाया करते हैं।
1: वाह।
0: दिल रब का घर है ना, दिल रब का घर है, रब के घर को तोड़ने वाले कब बचा करते हैं।
1: वाह वाह, लाजवाब।
0: फैसला उनका रब खुद करता है, जो अपने रब के रास्ते पे हो जाया करते हैं। है इब्ने आदम क्यों शैतान के रास्ते पर है, जब जुल्म सितम के बदले इसी दुनिया में हुआ करते हैं। आंख से गिरने वाले आंसू सीधा दिल पे असर करते हैं, वहीं से रब की रहमत जोश में आती है, फिर तभी से अजाब आया करते हैं। वो कब कुछ भूलता है, ना ही कुछ बुलाने देता है, क्योंकि उसके लिखने वाले गवाह खुद उसके अपने फरिश्ते हैं।
1: वाह वाह, बहुत बहुत।
0: वो सब खुदा देखता है, जो अर्श अजीम का मालिक है, उसी के बस सब फैसले चला करते हैं,
1: उसी के बस सब फैसले चला करते हैं, बेशक।
0: तो ये कुछ और भी शायर हैं, मगर आई थिंक मैंने टाइम आपका बहुत ले लिया।
1: नहीं, आप बिल्कुल सुनाएं, आप हमारे पास तो है टाइम तकरीबन 2-3 मिनट, हम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है।
0: फर्क सिर्फ तेरी मेरी सोच का था, अगर गौर करते तो मेरी खामोशी में अपना जिक्र देखते।
1: वाह।
0: अगर मेरी निगाह से खुद को देखते तो मेरे आंसू में अपना अक्स देखते।
1: हाय हाय, कमाल।
0: समुंदर की गहराई लहरें जाने, खड़े दूर किनारे क्या देखते।
1: आहा, आहा।
0: अगर डूब कर मेरी आंख में देखते तो मेरा हाल दिल देखते।
1: वाह।
0: वो दर्द दर्द ही नहीं लगता जब तक खुद पर ना पीते, तुम मेरे जख्म को क्या देखते।
1: कमाल।
0: तुम क्या जानो दिल की लगी क्या है, इस आग में अगर जलते तो क्या क्या देखते।
1: वाह।
0: बंदगी सिर्फ खुदा ही की है, वरना लोग अपने महबूब में रब देखते।
1: वाह।
0: ये हदिया खुदावंदी है, जो इश्क मजाजी ना होता तो इश्क हकीकी लोग कहाँ देखते।
1: कमाल।
0: तड़प जिदाई ना होती अगर ख्याल दिल से ना गुजरता, याकूब अपनी बेनाई क्यों कर खोते।
1: बहुत खूब।
0: मोहब्बत अगर ईमान बनकर खुद हिफाजत ना करती तो यूसुफ के लिए बंद दरवाजे कहाँ खुलते।
1: वाह, लाजवाब।
0: कभी जलवा खुदा ना देखते, वो एक सोच ही तो थी जो जज्बा बनकर बेखौफ खतर कूद पड़ी थी कभी आग में, वरना इब्राहिम को पैगंबर कौन मानता अगर लोग मौजा खुदा ना देखते।
1: बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
0: ये जो आखिरी कुछ लाइनें हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है।
1: बहुत।
0: तड़प जुदाई ना होती अगर ख्याल दिल से ना गुजरता तो याकूब अपनी बेनाई क्यों कर खोती।
1: वाह।
0: मोहब्बत अगर ईमान बनकर खुद हिफाजत न करती तो यूसुफ के लिए बंद दरवाजे कहाँ खुलते, कभी जलवा खुदा ना देखते। वो एक सोच ही तो थी से जज्बा बनकर बेखौफ व खतर कूद पड़ी थी कभी आग में, वरना इब्राहिम को पैगंबर कौन मानता अगर लोग मौजदा खुदा ना देते।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बहुत।
0: तो ये थे कुछ अशआर जो मैंने बस
1: बहुत बहुत खूबसूरत,
0: सुनने वालों को पसंद आए होंगे,
1: जरूर पसंद आए।
0: दिल दिखाना किसी का मेरा मकसद नहीं था, बहुत नुकसान है, और मैं नहीं कहती मेरी अमल से या मेरे अल्फाज से किसी का दिल आजारी हो या दिल दुखे। मैं जिन्हें जो निकाह के बातें की हैं वो एज ए मुसलमान जो मैं देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे किसी अल्फाज से किसी को किसी की रहनमाई हो जाए, किसी के दिल पर असर हो जाए।
1: नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मैसेज अपना काम कर दिया, अल्लाह ताला आपको उसकी जजा अता फरमाए। और जाने से पहले मैं सबसे शायद पूछूंगा कि ईद की क्या तैयारियां हो रही हैं?
0: ईद की को खासो खास मेरे भाई तैयारी नहीं है, ईद होती है रमजान की।
1: सही हो गया।
0: इस ईद में तो बस कुर्बानियाँ और गोश्त और फिर
1: कुछ लोग इंसानों को
0: कुर्बानी का जिक्र आया कि वो भी मैं दो चार बातें कर जाऊं, क्योंकि अब इधर तो पता नहीं है मगर पाकिस्तान में मैंने बहुत सुना है देखा है कि लोग अब कुर्बानी देते हैं और सारा गोश्त फ्रिज में। हाँ, तो अब सालों साल इसी को खाना है, अगले साल से करिए खत्म नहीं होना चाहिए। तो कुर्बानी का वजूद असली वो कुर्बानी का मकसद ये है कि गरीब भी ईद आराम से गुजार ले।
1: हाँ, गरीबों में
0: तो गरीब देखते रह जाते हैं और फिर गोश्त जाता भी उन घरों में है जिनके बराबर का लेवल है।
1: हाँ,
0: तो वो गरीब बेचारा किधर जाएगा, वो शर्म के मारे तो किसे मांगता भी नहीं है। तो दरवाजे बंद, कुर्बानी अंदर हो रही है और पंखा लगा हुआ है, फ्रिज गोश्त आ रहा फ्रिजों में। तो देना किसके घर है जो बराबर का लेवल है। तो खुदा रा खौफ करो, कुर्बानी को कुर्बानी रहने दो, इसको तजारत ना बनाओ। नाम भी हो रहा है कि कुर्बानी दी है मगर वो कुर्बानी का जो असल वजूद है वो तो खत्म हो रहा है, तो ऐसी कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं है और ना ही कबूल होगी।
1: ठीक हो गया,
0: वो तो पैसे सारे फिर जाएंगे जहन्नम में और साथ लेके भी जाएगी, वो वही कुर्बानी जहन्नम का सबब बनेगी। तो अगर कुर्बानी दे रहे हो तो फिर वो इस तरह दो कि जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिस तरह अल्लाह का हुक्म है।
1: ठीक हो गया, बड़ी खूबसूरत बात, बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे सुनने वालों तक पहुँचाया, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी।
0: इंशाल्लाह,
1: अस्सलाम
2: वालेकुम। कुल्लो नफ्सिन ज़ायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: और जनाब वक्त है क्या, मुकाबला है सख्त और हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी अगली लाइन की जानिब और देखते हैं हमारे साथ कौन सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम कमर, कमरान भाई आप ठीक हैं?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक, जाक अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप खैरियत से हैं?
4: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया था, जो सबका नाम लिया तो मेरा नाम क्यों भूल गए आप?
1: मैं भूल गया था, बहुत बहुत माजूर। मैं आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ, आपका नाम जो है वो हमारे दिलो दिमाग पे लिखा हुआ है, लेकिन आपका नाम जो है वो स्क्रीन पे नहीं आया तो शायद इस वजह से मैं भूल गया हूँ।
4: हाँ, वो क्या, मैं क्या कहूँ इसके बारे में।
1: कहते कोई मसला नहीं है, कोई भी नहीं सुन रहा।
4: नहीं, वो असल में अमर शहजाद भाई लिख के थक गए और लोग काट काट के थकते नहीं है।
1: ये किसके पास है रबड़, रबड़ वाली पेंसिल किसके पास है? हम जनाब मिटा देते हैं आपका नाम, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम जितनी दफा मिटाया जाएगा उतनी दफा हम आपका नाम लिखेंगे, क्योंकि आप
4: अगर ये कहीं जाना कि इस दुनिया में किसी के बस में हो तो मुझे भी मिटा दे। यकीन जाने लोग ऐसे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया में ऐसा चलता रहता है। तो वो बात कुछ हो रही थी, तो असल में ये सब कुछ जो चीजें, पहले तो ये कि ये जो मेरी हमारी बहन आई थी, इतनी अच्छी शायरी की है, बहुत खूबसूरत शायरी, तो लाजवाब शायरी थी, तो तो वह खैर हम शायर तो नहीं है लेकिन दूसरों की शायरी बुकों से लेके आप लोगों को सुना देते हैं, एक तो आपसे बात हो जाती है।
1: उससे पहले मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात करनी है, आपने जो बात की ना कि लोग जो है एक दूसरे को मिटाने में लगे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मतलब ऐसा करके उनको क्या मिल जाता है, क्यों खुशियां बांटे प्यार बांटे और यकीन जाने उनकी अपनी ज़ात को सुकून मिलेगा, उनकी अपनी ज़ात में जो है ना एक ठहराव आ जाएगा, लेकिन हमारी बातें कौन सुनता है, लेकिन कोई सुन ले तो यकीन जाने से उस बहुत
4: ये जो होती है ना इंसान के अंदर जिसको ग्रीडी कहते हैं ग्रीडी, हाँ। ये खत्म नहीं होती, यकीन जाने मैंने देखा लोगों की इतनी जमीनें होती हैं इतनी, फिर भी वो जाते हैं कि वो किसी और की सामान कर ले। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई हम तो सिर्फ 6 महल्ले का प्लाट है जिंदगी में, बस वहाँ पर ही रहना है, वहाँ पर ही जीना है पाकिस्तान में।
1: और वो यकीन करे ऐसे लोग इतने पुरसकून होते हैं, ऐसे लोग
4: इतना सुकून है कि ना कोई फिक्र ना तंगी ना कुछ।
1: Exactly.
4: वैसे तो खरीद बेशुमार जमीन खरीद सकते थे लेकिन खरीद के क्या करेंगे, वो कौन संभालेगा उसको,
1: ये चीजें हैं ना, ये चीजें हैं। मरने के बाद जरूर तड़पती रहती है, पता नहीं किसके पास गया हिस्सा।
4: लेकिन वो क्या कि बच्चे हमारे तो जाते नहीं उधर से, मुझसे भी कुछ संभाला नहीं जाता, यहाँ पर बस बैठा हुआ आपको शायरी सुना सकता हूँ।
1: बस ठीक है, आप सुनाएं शायरी, हम यहाँ पे हम
4: तो ये बहुत सी चीजें जो है ना लोग ने यही कहूँगा कि बहुत सी सारी चीजें जो है ना ये ड्रामों में सीखते हैं ब्याह शादियों में, तो ये असल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि ये नहीं है कि औरतों के बाल खुले नहीं होते, ड्रामों में भी खुले होते हैं ये सब। बस मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ, अच्छा। फिल्में में देखता हूँ, ड्रामे नहीं देखता, अच्छा, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा बहुत देख ले।
1: बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आज पता नहीं हवातीन भी कहेंगे कि इनको इन लोगों को मसला क्या है, हम जो मर्जी करें।
4: यही है ना, बस जो कोई मर्जी करे, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। Exactly. एक तो मैं भी अपनी मर्जी करता हूँ, दूसरा है कि मैं पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम में वीडियो वायरस ही हो गई थी शाहरुख खान ही, तो मैं हमेशा दूसरों के मसले में नहीं पड़ता ना, तो अगर कोई लड़ाई भी हो जाए मैं दूर से निकल जाता हूँ। तो वो भी यही कह रहे थे कि किसी ने पूछा भाई तुम क्यों इतने फेमस हो, कोई तुमसे नाराज नहीं है क्या? उसने शाहरुख खान ने कहा मेरी जो मेन चीज है मैं दूसरों के मसले में नहीं पड़ता, बस मेरी सबके साथ बनती है, अच्छी चलती है।
1: बिल्कुल, देखिये हम सब समझदार हैं, हम सब बाशऊर हैं और हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, हर इंसान को पता है कि वो क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, हर बंदे को अपनी जिंदगी जो है जीने की इजाजत होनी चाहिए। हाँ ओपिनियन होती है, हर इंसान की ओपिनियन होती है, उसको शेयर भी करना चाहिए, खसूसन इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बाज़गात कुछ लोग कोई अच्छी बात सुनते हैं तो उसको ना चाहते भी उसे इन्फ्लुएंस्ड होकर उसको अपना लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, नेकी हो जाती है। लेकिन आई थिंक हम सब बाशूर हैं, हम सबको पता है हम क्या कर रहे हैं और क्या हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपने मुझसे वादा किया था कि आप गाना गाएंगे उन्हें इलाके
4: नहीं यकीन है ना, वो बस मेरी पिछले हफ्ते हुआ ना कुछ फ्रिज में पड़ा था, मुझे नहीं कहना चाहिए फ्रिज की,
1: आपके सुर फ्रिज में पड़े थे, सॉरी क्या पड़े थे?
4: नहीं वो कुकम्बर पड़ी थी, वो मैंने काट के खा ली, तो बस फ्रिज की चीज खाते ही मुझे फ्लू हो जाता है बस। तो ये मुझे अमल करना चाहिए लेकिन अमल करता नहीं हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो वो कहना तो अच्छा था आपने लगाया, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, मैंने तुझसे प्यार किया, बस कुछ इतना याद है।
1: बस ठीक है, आपने इतना ही गा दिया हमारे लिए, इतना ही बहुत बहुत है, थैंक यू सो मच। शायरी की तरफ आते हैं।
4: अच्छा इस तरह के, कहा उसने मोहब्बत में ये गम क्यों साथ मिलते हैं, कहा मैंने ये कांटे फूल भी तो साथ पलते हैं, कहा उसने ये लम्हे प्यार के क्यों कम से होते हैं, कहा मैंने के कब खुशबू हमेशा साथ देती है, कहा उसने गमों से इस कदर क्यों प्यार करते हो
1: जी,
4: कहा मैंने यही तो हैं जो अपना साथ देते हैं,
1: हाय हाय हाय हाय लाजवाब,
4: कहा उसने बिछड़ जाए अगर हम तुम तो अच्छा है, कहा मैंने तुम अपनी बिकती पलके जरा देखो, कहा उसने कि कितना चाहते हो तुम मुझे अरशद
1: जी,
4: कहा मैंने समुद्र की कभी गहराई देखी है,
1: वाह वाह क्या बात,
4: ये तो शायरी थी, आपको लतीफे सुना देता हूँ।
1: बिल्कुल जनाब, लतीफे सुनाए आप।
4: ये एक औरत ने अपने शोर से एक औरत ने अपने शोर से पूछा, ए जी मैं कैसे लगती हूँ? शोर बोला, जब तुम चुप रहती हो तो चंद्रमुखी लगती हो। बीवी ने सवाल किया, और जब मैं बोलती हूँ तो ज्वालामुखी? शोर ने जवाब दिया।
1: सही हो गया, ठीक हो गया।
4: एक और है
1: जी, जी जरूर।
4: एक बहुत ही मोटा आदमी ने खुदकशी करने के लिए मकान के ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी।
1: अच्छा।
4: जब उसे होश आया तो उसने हैरंगी से करीब डॉक्टर से पूछा कि मैं मरने से बच गया हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ तुम तो बच गए हो, लेकिन तुम्हारे नीचे दब कर तीन आदमी डाक हो गई है।
1: हंसना नहीं चाहिए।
4: अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी बेगम मुझे फोन कर रही है, वो इस वक्त
1: सुन लिया उन्होंने आपका जो
4: नहीं वो मक्का में आज के लिए गई हुई है बेटे के साथ।
1: माशाल्लाह।
4: तो अभी बाद में उससे बात करूंगा। तो बस यही है, चौधरी फरियाद साहब को, चौधरी मुजफ्फर साहब को, सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। तो इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके। तो इंशाल्लाह
1: खुदा हाफिज़। जनाब अल्लाह हाफिज़। जनाब ये थे हमारे साथ हमारे प्यारे मोहतरम अयूब चौहान साहब, और हम जल्दी से चल रहे अपनी अगली लाइन की जानिब। देखते हैं हमारे साथ इस लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी मोहतरम जावेद मीर साहब इस वक्त लाइव ऑन एयर हमसे बात कर रहे हैं। क्या हाल है जनाब मोहतरम, कैसे हैं आप? ज़हन नसीब।
5: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ठीक हैं, आप सुनाएं आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं।
5: तो आज कहाँ आप?
1: आज मैं
5: नाजिल
1: हो गया। वह सब भी मुझसे पूछ रहे, कोई कह रहे हैं कहाँ से टपक पड़े हो, कोई कह रहे हैं कहाँ से नाजिल हो गए हो। तो बस देख ले, मैंने कहा चलो यार ईद है, हम भी कोई हाल अहवाल पूछ ले लोगों से, कौन सी कुर्बानियाँ हो रही हैं, कौन सा गोश्त खाने की प्लानिंग हो रही है। आप बताएं आप कौन से गोश्त खाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस ईद पे?
5: वो पाकिस्तान में ही खाएंगे जो कुछ भी खाएंगे।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह सही है। हाँ। मैं तो डाइट पे हूँ भाई, एक हफ्ते से डाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ईद आ रही है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, इंतजार होता है कुर्बानी का, आज कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे जो गए हुए हैं हज और उमरा के लिए। कबूल हो, और एडवांस में तमाम दोस्तों और सुनने वालों को मैं ईद मुबारक पेश।
1: खैर मुबारक इन एडवांस। और ईद के हवाले से क्या तैयारी है?
5: ईद के हाल से बस सादा ईद कीजिएगा
1: जी,
5: और अजीजों के साथ कीजिएगा, दोस्तों के साथ।
1: ठीक हो गया,
5: और क्या कर सकते?
1: तो ईदी ईदी ईदी गोल कर गए हैं आप।
5: वो ईदी तो वो देनी पड़ती है ना, वो तो दे भी दिया कि ये कई मैं अपने पोतों वगैरह को पहले एडवांस में दे दिया है।
1: सही हो गया,
5: जाओ आपने ले आओ साहब किताब। तो ईद वाले ने तो फिर और खाली करना पड़ेगा ना हिसाब किताब।
1: सही है, बिल्कुल सही है। बड़ी खूबसूरती है ना ये ईद की, छोटी छोटी ये खूबसूरती है। सही हो गया,
5: बिल्कुल। जब हम छोटे थे तो हमें भी मिला करती थी ना,
1: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
5: बच्चों को भी दिया करते हैं, अब पोते पोतियां हैं उनको भी दिया कर।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
5: देना पड़ती है।
1: देना पड़ती है ऐसे ही। वरना जनाब आपके आप बड़े ऑर्डर आ जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं पीछे, और बड़े बड़े गिले होना शुरू हो जाते हैं आजकल के बच्चे। माशाल्लाह
5: बिल्कुल सही बात है।
1: सही
5: वो मेरी बहन आई थी एक, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं
1: जी।
5: वो सही कहती हैं कि ये बात गलत है, वो चोरी बोरी नहीं करना चाहिए, किसी की शादी हो
1: जी,
5: वो जिसकी है उसका नाम ले लो, उसमें हर्ज क्या है?
1: कोई हर्ज नहीं है।
5: हाँ तो ये है, मैं बस वो लोग कुछ करते हैं, कमजोर लोग होते हैं, नहीं करना चाहिए।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा।
5: इतना ही कह दो कि मैं किसी, अगर नाम नहीं लेना चाहते तो कहो मैं किसी की शायरी पढ़ रहा हूँ। हाँ। अपना नाम बीच में क्या किस लिए लेकर आते हो, बड़े शायर बनते हो। तो ना
1: दूसरों की शायरी चुरा के बड़े शायर बने फिरते हो,
5: चोरी करके। हाँ बिल्कुल। चले मेरी तरफ से तमाम और भी इंतजार करते होंगे।
1: तो क्या मतलब आपने कुछ सुनाना नहीं, कोई शायरी, कोई
5: मैं शायरी सुनाता हूँ आपको
1: जी जरूर।
5: पटवारी में है, पता नहीं पटवारी है जिस तरह भी है,
1: ठीक है।
5: वो सलीम साहब है कोई लिखने वाले, मिर्जा सलीम
1: जी।
5: तो कहते हैं ना शौक असानू फूलां दा, ना शिकवा है कोई खारा थे।
1: वाह।
5: ना शौक असानू फूलां दा, ना शिकवा है कोई खारा थी, बस दूर चमन थी रहन दियो, मैं डरना बहुत बहारा थी।
1: वाह वाह।
5: शुक्रिया। ना मस्ती मौज शराब दिए, ना शौकी मस शबाब दिए।
1: वाह।
5: न मस्ती मौज शराब दिए, न शौकी मस्त शबाब दिए, या साकी नजरां फेर लियां, या जोक गया मैं ख्वारा थी।
1: आय हाय हाय हाय, लाजवाब।
5: शुक्रिया शुक्रिया। जो होना सी ओह हो ही गया, दिल चला कमला खो ही गया।
1: आय हाय आय हाय, लाजवाब।
5: जो होना सी ओह हो ही गया, दिल चला कमला खो ही गया, तेरे नाल याराना ला बैठे, फुल हो गई फुलन हारा दी।
1: आए वाह, लाजवाब, बहुत खूब।
5: शुक्रिया। तू जाना है ते जा पावे, कोई होर याराना ला पावे। तू जाना है ते जा पावे, कोई होर याराना ला पावे, असी पहले ही बहु अके हां, ओ इन्ना झूठे प्यार व्यापारियां थी।
1: वाह वाह।
5: जब अपने जहर पिलांदे नी, की कम फिर उथे सप्पा दा।
1: वाह।
5: जब अपने जहर पिलांदे नी, की कम फिर उथे सप्पा दा, सानू होर किसे की डंगना है, असा धोखे खादे यारा थी।
1: वाह वाह, लाजवाब, वाह।
5: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। छड़ यार सलीम इस किस्से नू, क्या फायदा रोने तोने दा। छड़ यार सलीम इस किस्से नू, क्या फायदा रोने तोने दा, टूट गया खड़ौना टूटन दे, मिल जांदे होर बाजारा थी।
1: हाय लाजवाब।
5: शुक्रिया। ना शौक असानू फूलां दा, ना शिकवा है कोई खारा थी, बस दूर चमन थी रहन दियो, मैं डरना बहु बहारा थी।
1: बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात, लाजवाब।
5: ठीक है,
1: बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खूबसूरत शायरी।
5: दो शेर मैं सुनाना और।
1: जी जी जरूर।
5: फिर आप तुम्हें को इजाजत करना।
1: जरूर।
5: वलैद कारी गुजारी। यादा माजी दिया बड़िया प्यारिया ने, यादा माजी दियां बड़ियां प्यारियां ने, ओ दर्द भरियां ए कार गुजारियां ने।
1: आए आए आए, क्या बात।
5: हसदे वसदे इत्थे मजदूर सुन, हसदे वसदे इत्थे मजदूर सुन, बड़ी मेहनती लोग मशहूर सुन, चर्चे प्यार वाले दूर दूर है सुन, ए दूजे दे नाल गम खुआरियां ने। यादा माजी दियां बड़ियां प्यारियां ने, दर्द भरियां ए कार गुजारियां।
1: वाह वाह वाह,
5: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: लाजवाब लाजवाब।
5: कामरान भाई,
1: थैंक यू सो मच। जावेद मीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
5: अभी अभी कोई कोई है ना समझ आई है मेरी, है ये सलीम मोहम्मद सलीम मिर्जा है उनकी है।
1: ठीक है ठीक है, सही हो गया, आपने दो दफा कह दिया, अब नहीं कोई भी भूलेगा।
5: ये उन्होंने सही कहा है, बहुत सारे लोग किस तरह करते हैं,
1: करते हैं, बिल्कुल सही कहा,
5: हाँ, बिल्कुल सही कहा।
1: चलिए
5: ओके, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज जनाब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ मोहतरम जावेद मीर साहब, जल्दी सी कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद हम आते हैं लौट के आपके पास।
6: दिस इज सनराइज रेडियो ऑन FM, DAB, ऑनलाइन एंड मोबाइल।
7: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
8: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
7: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
8: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: کلو نفسین ذائقہ الموت
3: مسلم فیونرل سروس میں کفن دفن پھولوں کا انتظام اسلامی شریعت کے عین مطابق غسل میت کے لیے عورت اور مرد موجود ہیں ٹاپ کوالٹی گرینڈڈ ماربل کے ہیڈ سٹونز اور فل قبر کو 30 سال کی گارنٹی کے ساتھ بنوانے کے لیے بھی مسلم فیونرل سروس کا نام یاد رکھیں مسلم فیونرل سروس 4 ڈارفیلڈ سٹریٹ آف لملینڈ بریڈفورڈ 1 ٹیلی فون 7230 30 بریڈفورڈ 7230 30
1: You're listening to DJ Cameron. Right now, वक्त है का मुकाबला है सख्त देखते हैं हमारे साथ इस लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है अस्सलाम वालेकुम
9: जी वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह करा जी करा
1: हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब अड़े दिना बाद तुम्हारी आवाज सुनी है जनाब के हाल है ठीक हो
9: हां वैसे हर वेले हाजिर है ने पर तुसा आपो कुदे आगे पीछे हो जाने हो ना
1: ਬਸ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
9: ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਰਸਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆਨਸਰ ਬਧਾ ਰਹੇ ਈਦ ਹੈ
1: ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਡੇਰੇ ਟੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ
9: ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਨਵਾਬਿਸ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ
1: ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਈਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
9: ਇਧਰ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ
1: ਜੀ ਹਾਂ
9: ਲੋਕ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾਂਦ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਲੈ ਹਰ ਪਾਸੇ
1: ਜੀ ਹਾਂ
9: بس تیاریاں بڑے جوش خروش نال لوک کرنے خرید و فروخت بھی ہونی ہے ہر طرح نی
1: ٹھیک ہو گیا تے اپنے کپڑے شپڑے لین کے تیاری شاری کیتی ہے کہ یار میں بھی اتکی عید منانی ہے یا وہ کامران ساڑی کے عید بنی ہے عید ساڑی کو ایسے طریقے گزر جانی ہے تھوڑا تسی کس سسٹم میں چام دے ہو
9: کپڑے تے میں آندے سن کپڑے تے نوے آندے سن چین کوئی نہیں ہوئے مارے کے لئے پرانے نال عید کرتے
1: اچھا درزی تو کھا دے گیا درزی میں کہا تو کھا دے گیا اگلی دفعہ درزی سنیا چاہ دے کہ اگلی اللہ ہر ہر کرے تے میرا جوڑا تو پہلا سین لے
9: چلو کامران بھائی بس دل تے سارا بڑا ہونا گپ شپ لا ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
1: ਜੀ
9: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਯੂਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਵੇਦ ਵੀਰ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਕੁਝ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਾਂ
1: ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਤੇ
9: ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਸਾਂ
1: ਬੇਸ਼ੱਕ
9: ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਈ ਮਾੜੀ ਬਾਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ
1: ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ
9: ਹਲੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ
9: ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ
1: ਠੀਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ
9: ਇਸ ਨਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਚੌਹਾਨ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਏ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਿਆ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅਤੀਕਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੀਨ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗਜ਼ਾਲਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਮੇ ਕੁਸੁਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ फरजाना जी ने, सैमा जी ने, सबा जी ने, रुखसाना जी ने कि मेरा बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। जनाब मोहतरम आमर भाई ने और परवेज भाई ने, महबूब लाई साहब ने, मुदस्सर साहब ने, जहांगीर साहब ने, आजी सलीम साहब ने, चौधरी मीर सैन चक्की आले ने, शकील साहब ने, ईरा साहब ने, वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, और जावेद मीर भाई और अब्दुल कयूम भाई, नवीद राणा साहब ने, और जनाब तारक भट्ट साहब ने, चौधरी मुजफ्फर साहब ने, दोस्त और चौधरी आसफ रियासत साहब ने, डॉक्टर चौधरी मोहम्मद मालिक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब ने, अहम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, राजा वक्कार साहब ने, राजा जुल्कार जुल्करनैन साहब ने, राजा अपने राजा शोएब साहब ने, महमूद साहब ने, और चौधरी मदीर मेरा भरा, और सारे दोस्तों की, बल्कि जिसे तक मेरी आवाज आनी है सबों की मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
9: शायरी शुरू करा, बिस्मिल्लाह करा, लिखने ने के करा अर्ज मदीने दे वालिए नू, करा अर्ज मदीने दे वालिए नू, कदी देख अपने बेसहारे नू सद, शब रोज फराक विच पिया तड़पा, शब रोज फराक विच पिया तड़पा, नाजा वालिया गम दे मारे नू सद।
1: वाह वाह क्या बात,
9: तेरे रोजे ते आन दी चात रहंदी,
1: वाह
9: तेरे रोजे ते आन दी चात रहंदी, अमा वक्त रवा दुखियारे नु सद, नाजिश तेरे फराक ने तंग कीता, करके मेरा का बख्ता आरे नु सद।
1: हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत
9: इस शेर नाल सारे जिहड़े अज जिन्हां ने कराने कराने चो हाजी साहिबान गए ने, उन्हां की अज अज दी मुबारक, और ईद भी आ रही है ते ईद मुबारक भी आ रही है। फिर शायर मजाज ने रंग च लिखना के शब रोज महबूब नवीद खातर, शब रोज महबूब नवीद खातर, आमा वक्त गुजारे इंतजारा दे विच, मन्ना कल कोई आवे पैगाम उधरों रे मुंतजिर बैठे कतारा दे विच।
1: वाह वाह वाह वाह क्या बात,
9: वाए किस्मत वेखो नसीब अपना, आईया बदलियां मेरी सरकारा दे विच, नाजिश इजर विच चलने खार पेंदे, बिना इजर नी लुतफ प्यारा दे विच।
1: बहुत खूब,
9: इजर ना होवे ना फिर मकसद कौन नहीं देना, खुशी खुशी वे फिर गम ना पता कौन नहीं लगना। आखिया किजा ने चमन वीरान किता, किजा ने चमन वीरान किता, असल खुशियां दे दरे समान रह गए, उम्र बीती ना मौसम बहार आई, दर दर ठोकरा खांदे अरमान रह गए।
1: वाह वाह क्या बात,
9: लाई बख्तां विच नकब रकीब ऐसी, वेख हैरत विच मेरे आसान रह गए, नाजिश कोई किसे नू दिलां दे हाल दसां, और कितने गमां दे चढ़े तूफान रह गए।
1: वाह क्या बात,
9: आखिया अकल जहानत जवाब दे गए, अकल जहानत जवाब दे गए, सिख दे नैन बिन तेरे दीदार रह गए, ओए खातर वसल जितना करीब होया, चुभ दे इजर विच उल्टे खार रह गए।
1: वाह वाह वाह वाह,
9: मंजिल पहुंचना मकसद नू पा सकिया, गुम हैरत विच मेरे अफकार रह गए, तेरी याद विच नाजिश गमगीन होके, सरो शाम कर दे इंतजार रह गए।
1: आय हाय लाजवाब क्या बात,
9: आखिया कितना शिकवा महबूब थे जायज नहीं है, करना शिकवा महबूब ते जायज नहीं है, क्यों जे सजन सजना दियां बाई आंदे, कदों बदल दे ऐ दो परमान अपने कीते नाल, सजना सजना ताई आंदे।
1: वाह,
9: मंगदे रब तू आमा तन गोश होके, खैर सजना दी रोज बुलाई आंदे, करे उन्हां नूं कौन पा मार नाजिश, ओए सर जिन्हां दे सिरां ते ताई आंदे।
1: वाह क्या बात, क्या बात,
9: असां ने मोहतरम जावेद भाई ना, ना मिर्जा साहब ना एक शेर पढ़िया, मैं बड़ा पसंद आया, मैं भी उन्होंने थोड़ी शायरी पसंद करना, बल्कि ज्यादा है, कुछ चंद अशार मेरे को भी आने
1: जी,
9: एक दो शेर उन्होंने तुसने मैं अपनी नजर
1: छा इरशाद,
9: आखिने जिंदगी वांग दीवाने आ गुजर गई, जिंदगी वांग दीवाने आ गुजर गई, हो गए आलू बेहाल तू नहीं पुछया, कोई कदी पुछदा ते पुछदा सें कई बारी, उन ते गुजरे कई साल तू नहीं पुछया।
1: वाह वाह वाह वाह लाजवाब,
9: क्या छपावा ते क्या जवाब देवा, क्या छपावा ते क्या जवाब देवा, अज तक कोई सवाल तू नहीं पुछया, ओए बाज तेरे सलीम इस जग अंदर, क्या कुछ गुजरी मेरे नाल तू नहीं
1: पुछया। बहुत खूब,
9: कामरान जी आग इज्जत दी सबर दे नाल बुझदी, आग इज्जत दी सबर दे नाल बुझदी, अशका नाल नहीं है बुझाई जांदी, हाल दर्द वो छोड़े दा कौन दसे, दिल ते बीती हुई नहीं सुनाई जांदी, सानू ला के बैठा दूर जाके, ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਮਰਾਨ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲਿਆ ਇੰਜ ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਸਲੀਮ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ
1: ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ
9: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਸਲੇ ਯਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਵਸਲੇ ਯਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿੱਠੇ ਚੋਟਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿੱਠੇ ਚੋਟਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਮਰਾਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀਦਾ ਨਸਤਾ ਵਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁ
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਹੁਤ
9: ਨਾ
1: ਨਾ ਇਤਨੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ
9: ਜੀ
1: ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ
9: ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਦ ਮੀਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਰਹੇ
1: ਸੱਟੋ
9: ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟੋ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ
9: ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨੇ ਨੇ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਸਜਣੋ ਈਦ ਆਈ
1: ਹਾਂ
9: ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀਆਂ ਕੰਨ ਸਦਾਵਾਂ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਈਦ ਆਈ ਸਜਣੋ ਈਦ ਆਈ ਪੀਆਂ ਕੰਨ ਸਦਾਵਾਂ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਦਿਲ ਦੜਕਿਆ ਉੱਠਿਆ ਦੌੜਿਆ ਮੈਂ ਅਰਸੋ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਰੰਗ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਰੰਗ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਨਗਾਵਾਂ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਕਿ ਈਦ ਆਈ
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ
9: ਆਖਿਆ ਆਦਤ ਰਾਵਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮਰਦ ਬਣ ਗਏ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਦਤ ਰਾਵਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮਰਦ ਬਣ ਗਏ ਐਸਾ ਤੀਰ ਫਰਾਕ ਦਾ ਖਾਰ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਰਸਾਤ ਬਰਸਾਇਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵੀਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰ ਹੋਇਆ
1: ਕਿਆ ਬਾਤ
9: ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮੈਖਾਨੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮੈਖਾਨੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਮਸੀਦ ਵਿੱਚ ਆਰ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਈਦ ਮਿਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਈਦ ਆਈ ਸੱਜਣ ਈਦ ਮਿਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਈਦ ਆਈ ਆਸਮ ਗਲੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰੋਇਆ
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ
9: ਜੀ
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਈਦ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ
9: ਬਾਕੀ ਸ਼ਤਰਾਜ ਸਰ ਤੁਸਾਂ ਮੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ
1: اللہ حافظ جناب سر یہ تھے ہمارے ساتھ محترم چودھری فریاض صاحب آل دا وے پاکستان سے اتنی امیزنگ وہ شاعری کر کے آئے ہیں اچھا کر کے اور کرتے رہتے ہیں اینڈ اچھا ابھی انہوں نے جو مکہ شریف کے حوالے سے اور مدینہ شریف کے حوالے سے تھوڑی سی اپنی شاعری جو ہے وہ شامل کی اور جب وہ مدینہ کے حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے تو میری میموری تھوڑی سی پیچھے چل گئی کیونکہ الحمدللہ رمضان المبارک میں میں مکہ اور مدینہ میں تھا اور یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے اپنے گھر بلایا تھا اور جب آپ رمضان یہ بھی ایک لائف ٹائم ایکسپیرئنس ہے رمضان میں عمرہ کرنا ایک لائف ٹائم ایکسپیرئنس ہے جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور کیجیے گا لیکن آپ جب اس گھر میں جاتے ہیں جب روضہ شریف پر پہنچتے ہیں تو ایک الگ دنیا ہے وہ اتنی وہ مختلف دنیا ہے آپ کا دل نہیں کرتا وہاں سے لوٹنے کو آپ وہاں پہ قید ہو جاتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں اپنے ملک میں آتے ہیں تو وہ ایک آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے اور وہ کنیکشن اب وہ ایک ڈور بندی ہوتی ہے اور وہ ڈور آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہے وہ جھٹکے دے رہی ہوتی ہے کہ واپس آؤ تو یہ جو فیلنگ ہے یہ جو لمحات آپ وہاں پہ گزار کے آتے ہیں لفظوں میں ان کو بیان کرنا ایکسپریس کرنا بہت بہت مشکل ہے تو تھینک یو سو مچ آپ نے تھوڑی سی میری یادیں جو ہیں وہ صرف لے کے گئے ہیں جناب تھوڑی سی کمرشل بریک کے اس کے بعد ہم آتے ہیں لوٹ کے لیکن اس سے پہلے
10: سن رائز ریڈیو یور ساؤنڈ ٹریک یور ٹائم چیک
1: ٹائم آن دا ڈائل از 12:48 گڈ آفٹرنون
11: Looking for your dream home in Bradford?
12: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
11: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
12: Bellevue Residences.
11: Luxury, space and style.
12: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
13: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you? When you

0: राइट जनाब, वक्त है का मुकाबला है सख्त, जल्दी से चल रहे हैं हम अपनी अगली लाइन पे, देखते हैं हमारे साथ इस लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अदा साईं, कैसा है मेरा
0: भाई? हमारे जनाब बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही प्यारे चौधरी रुखसार साहब जो हैं वो मैनचेस्टर से इस वक्त ऑन एयर लाइव हमसे बात कर रहे हैं। जनाब ज़हीन नसीब, कैसे हैं आप?
1: मैं पहले तो मेरा भाई, तुम मुझे को ये बताओ कि ये रुखसार कौन है, किसको रुखसार बोले थे?
0: अच्छा, ये कौन है फिर? आप रुखसार नहीं, आप कौन है? आप अपना नाम बताएं फिर मुझे।
1: मेरा नाम समंदर खान है मेरा भाई।
0: समंदर खान, अरे समंदर खान, संगैया संगैया समंदर खान,
1: बोले कचड़ा माशा खुशहाल दे दादा सुठो दादा देर मजदा संगे बखैर दे।
0: तो आज समंदर खान, मेरी पश्तो जी ना बात इतनी जी दो लफ्जों, आप मुझे ये बताएं कि आज आप कहाँ से आप ये आ गए हैं? पहली दफा आपसे मेरी बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं या इंग्लैंड से?
1: पहले तो बात ये, मेरा भाई वे बोलो कि आप कहाँ से बोल, ये बोलो ना कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
0: आप कहाँ से बोल रहे हो?
1: मैं मुंह से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा ठीक हो गया, सही है। अच्छा आप मुंह से बात कर रहे हैं, तो आप किस जगह से बात करें? आप ये बताएं मुझे।
1: मैं अपने घर से बात करूं मेरा भाई।
0: आप अपने घर से बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। आपका घर कहाँ पे है?
1: वो मेरा घर जमीन पे है।
0: अच्छा जमीन पे है, तो जमीन वो कहाँ पर मौजूद है? मतलब कहीं पे होगी ना वो जमीन का हिस्सा?
1: वही जमीन है मेरा भाई जिस पे आप हो, जिस पे मैं, वो एक जमीन होती है। वैसे बस आपने, वैसे आप लोग जो होते हो ना, ये कहते हो कि ये मेरी जमीन या मेरी जमीन, सब एक ही जमीन का बंदा। हाँ। भाई मेरा भाई क्या बात कर।
0: हाँ, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, सही हो गया। चले सैयद जी, आप जिस भी जमीन पे आप इस वक्त मौजूद है, हमारा उस सलामती की दुआ उस जमीन तक। तो समंदर खान साहब, आज हमें ये बताएं कि आज आप ईद की कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं?
1: ओ मेरा भाई क्या यार, क्या बोलते है वो एक कामरान भाई, कैसा तुमको यार बताए, कैसा ईद, हम परदेशियों का क्या ईद होता है मेरा भाई। देखो वो एक पुराना कपड़ा धो धो कर पहनता है, वो एक बात यार, क्या मेरा भाई। तो क्या बताए यार, ईद ईद होता है कि जब वो जिसके साथ ईद मनाई हो ना, वो भी साथ हो,
0: सब
1: ईद का मजा। अच्छा, मेरा भाई आता है।
0: अच्छा अभी आपने कहा ना परदेशियों की, तो अब तो मुझे पता चल गया कि आपकी जमीन जो है ना वो इंग्लैंड पे ही है। चले, और दूसरी बात जो आपने ये कही है ना कि हाँ यार हमारी क्या जमीन, क्या ईद होनी है, ईद तो वो होती है ना जब आप ईद वालों के साथ ईद मनाते हैं, और वो एक पुराने कपड़े धो धो के तो उन्हीं को आप दोबारा पहन के कहते हैं जी साड़ी तो ईद है। तो चलें कोई बात नहीं है, अब क्या करें, अब जब इंसान बड़ा हो जाता है, अब ईद तो फिर बच्चों की होती है ना, अब हम क्या करें, अल्लाह ताला ने हमें, अब हम अपने बच्चों वाले हो गए हैं, तो फिर ऐसे ही चलता है वक्त के साथ साथ। क्या ख्याल है
1: यार? बहुत अच्छा बात किया, यकीन करो कि हम भी तो किसी के बच्चे थे ना कभी। यकीन करो, जब हमारा मोरे था ना, मोरे समझते, हमारा अम्मी जान जो था ना, हमारा अम्मी जब जिंदा था ना, अल्लाह ताला जिनकी माए हैं, अल्लाह ताला सभी को, सभी की माओ को जिंदा रखे और क्यामत तक उनका साया उन पर रखे, ठीक है। जब हमारी अम्मी थी ना, तो हमें बोलती थी मेरा बच्चा तू ठीक है, जब वो बच्चा बोलती थी ना, तो मैं समझता था कि मैं अभी बच्चा हूँ। यकीन करो, तो जब मुझे बच्चा बोलने वाला कोई नहीं ना रहा, तो फिर मुझे साथ हो कि अब मैं बड़ा हो गया, क्योंकि अब मुझे बच्चा बोलने वाला ही कोई।
0: ऐसे ही अल्लाह ताला सबकी माओ को जो है वो ख्याल दे, और जिनकी माएँ जहाँ से रुखसत हो गई अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन जो है ना, ये बात बड़ी आपने अच्छी की, लेकिन कहते ना कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, कहीं छुपा होता है, उस बच्चे को कहीं बाहर निकलो, आओ उछलो कूदो ईद मांगो।
1: ऐसी बात है, यकीन करो हम भी किसी से ईद मांगता था, लेकिन यकीन करो अब हम कहता है कि यार हम किस से ईद मांगे, ठीक है, कौन है जो हमको ईद देगा, ठीक
0: है। ये भी बात सही है, अब तो जी
1: जी बोले बोले बोले। हाँ, मेरा भाई बोले,
0: हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी है ना, आप बंदा मांगे तो किससे मांगे, क्योंकि हो सकता है जिससे ईद मांगे आगे से दो अल्फाज सुनने को मिल जाए।
1: देखो लेकिन बात ये है कि आप जिससे मांगे ना, फिर आगे वो कहता है कि मुझे दो पहले ना, ठीक है जी, तो मैं बोलता हूँ यार तुम्हें अल्लाह देगा, कहता है जब बंदा ने दिया ना, तो फिर मैं उसमें से तुम्हें दूंगा। यार कैसे बात, देखो यार भाई ये कैसा जमाना,
0: कैसा जमाना समंदर भाई। तो नाम आपका बड़ा खूबसूरत है, ये समंदर किसने रखा, कोई समंदर को देखा आपने?
1: नहीं यार सर, मैं समंदर पे पैदा हुआ था ना, तो उधर मेरा नाम समंदर रख दिया।
0: नहीं समंदर आपका नाम बहुत अच्छा है, समंदर कहते हैं वो गाने भी बड़े।
1: नहीं मेरा एक भाई है दरिया खान, वो दरिया पे पैदा हुआ, उसका दरिया खान रखा, वो एक मेरा भैया दरख्त खान, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ, उसका नाम दरख्त खान रख दिया।
0: अच्छा नहीं, देखे आपके नाम पे तो बड़े बड़े गाने बनाए हैं ना दुनिया वालों ने, देखे आप बड़े फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं आप। फिल्में भी बनी है, एक फिल्म भी बनी है आपके नाम पे जिसका नाम है समंदर।
1: मेरी अपनी फिल्म है, तूने नहीं देखी?
0: नहीं नहीं, आपकी कौन सी फिल्म है अपनी?
1: वो मेरी शादी की फिल्म।
0: सही हो गया, चले
1: करो मेरा भाई, जब मैं देखता हूँ ना, ठीक है, मैं पूरी फिल्म देखता हूँ तो एक जगह पे आता हूँ ना, तो वो मैं बोलता हूँ ना करी मार जाएगा। वो मेरा बेगम बोलता है वो खाना क्या हो गया? वो मैंने बोला यार वो पार्ट आ गया जहाँ पे मैं दस्तखत करने लगा था ना, बोला ना करी वो मार।
0: बस समंदर खान यही होते ना, कहते ना कि गया हाथ जो होता है ना वो वापस नहीं आता, गया वक्त वापस नहीं आता, गया हाथ जिस हाथ से आपने दस्तखत किए।
1: अच्छा मेरा उस्ताद जो है ना, मेरे उस्तादों ने मुझे बताया बेटा अगर खुश रहना है तो जिंदगी में तीन काम ना करना, ठीक है?
0: ठीक है,
1: अगर खुश रहना तो ये मैं आपको और आपके जितने सुनने वाले हैं सभी बहन भाइयों को ये देता हूँ कि अगर तीन काम जिंदगी में खुश रहना ना तो तीन काम कभी ना करना, ठीक है?
0: अच्छा,
1: और एक तो अपनी पसंद का शादी ना करना, ठीक है, और दूसरा अपने वालदेन के पसंद का शादी ना करना। और तीसरा बात सुनो कामरान भाई, तीसरा बात सुनो, और जिंदगी में कभी शादी ना करना।
0: तीनों काम ठीक हो गए जी।
1: मुझे डर बहुत लगता है क्योंकि यहाँ पे जो फतवे होते हैं ना आपके प्रोग्रामों में, जो लोग जो होते हैं ना, यकीन करो जो कहते हैं ना कि यार बिस्मिल्लाह रहमान, मुझे कहते हैं कि यार ये भाई जो बिस्मिल्लाह रहमान क्यों पढ़ के आता है यार, मैं तो गलत काम करता हूँ भाई बिस्मिल्लाह। अच्छा वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती जिसमें मैं बिस्मिल्लाह ना पढ़ूं, यकीन
0: नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़नी अच्छी बात है जी।
1: लेकिन यार क्या करें, हम फतवे गर्द लोगों की क्या करें, वो इतने तक जो हाफिज़े कुरान होते हैं वो कहते हैं बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, यकीन करो हम बचपन से लेकर सुनते आ रहे हैं। वो जो खबरें जब होती थी ना, शायद आपको 18 का दौर याद होगा, जब वो खबरें होती थी वो शायस्ता ज्यादा आती थी,
0: जी, जी, बिल्कुल,
1: काफी खबरें पढ़ती, वो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ती थी। और मेरा एक ड्रामा लगता था, वो एक नलाम गर लगता था, उसमें भी वो कहते थे कि सुनते कानों देखती आंखों जी मैं इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, शायद आपको माशाल्लाह पता ही होगा के
0: जी, जी, बिल्कुल पता है।
1: अच्छा उर्दू में भी अगर बोले तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है के
0: जी, जी।
1: लेकिन यार क्या करें, हम इन फतवों से डरते नहीं आते,
0: इसीलिए आप समंदर खान बन गए हैं।
1: इसीलिए यार मेरा भाई, अच्छा अदा अदा तुमको मैं एक बात बताई यार, अदा सही क्या करे, अभी मैं सिंधी मानूंगी बढ़ूंगा इंशाल्लाह बाद में, ठीक है?
0: ठीक है ठीक है,
1: तो फिर मैं जाऊं या मैं रहूं या क्या करूं फिर?
0: नहीं पहले आप ऐसे बोले मैं जाऊं कि मैं ना जाऊं, पहले आप ऐसे बोले।
1: नहीं अच्छा तुम पूछो मेरा भाई मैं जाऊं या ना,
0: ठीक है आप अभी चली जाएं क्योंकि अभी ब्रेक आने वाली है और फिर अगले आवर में आप वापस आए, लेकिन अभी हम ना समंदर खान की बेगम से हमने बात करनी है।
1: तुमने मेरे बेगम से बात करना क्यों?
0: नहीं उनकी, चलो उनकी उनसे बात करा देना जो उनकी एक्स मिसेज है, उनसे बात करा दे क्योंकि समंदर खान ने बड़ी हमें हदायत की।
1: ओ यार मेरे बात, मैं एक एक एक दफ्तर में मैं चौकीदारा करता था, ठीक है?
0: अच्छा
1: अच्छा, वो जिससे मैं बात पूछो ना भाई किससे बात कर, कहता तुम्हारी भाभी से बात कर, मैंने आके भाभी को पीटना शुरू कर दिया, ठीक है? मेरे भाई ने बोला यार तूने मेरी बीवी को क्यों मारा, मैं कहता हूँ वो दफ्तर जो बात करता है, मैं बोलता हूँ किससे बात करता है, तुम्हारी भाभी से बात कर, तुम्हारी भाभी से बात, ये कौन है जो मेरी भाभी से बात करता है? वो कहता है वो पागल है, वो तुम्हारी भाभी से, वो अपनी बीवी को तुम्हारी भाभी कहता है।
0: चलो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, हम हमारी तरफ से हम समंदर खान की बेगम को सलाम, लेकिन हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं
1: यार, मेरा बेगम नहीं है ना, मेरा पहले दुआ करो कि मेरा बेगम बने तो फिर उसको सलाम कर देना, अभी तो मेरा बेगम है ही नहीं।
0: चले सही है, अच्छा अभी टाइम खत्म हो रहा है तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है अगले आवर में, ठीक है?
1: हमारी अच्छा वो कहती है कि लोग दो दो बारी आए तो किसे उफ न की थी, हाय खान एक दफा आ गया तो वो रोला बढ़ गया, क्या वो गाना बना हुआ
0: रोले पै गए। रोले बैग है।
1: चलो रोले बैग वो क्या यार, मुझे आता वो उर्दू, तुम्हारा पंजाबी नहीं आता वो क्या, रोला।
0: अच्छा चले, अभी न्यूज का टाइम हो रहा है तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अरे जनाब कमाल हो गया आज तो। अच्छा जनाब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ चल रहे हैं हम और उसके बाद हम आएंगे वापस लौट के और दोबारा से कॉल।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 1, the US Secretary of State says progress has been made in negotiations for a peace deal with Iran. Marco Rubio's expecting more updates to come from the White House. Speaking on a visit to India, he suggested Iran shouldn't have full control over the Strait of Hormuz, the vital shipping route for global trade.
4: They don't own it. It's an international waterway. And what they are doing now is basically they are threatening to destroy commercial vessels using an international waterway. If we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent.
3: Iranian media reports Tehran doesn't want to allow free passage through the strait. It's reported Andrew Mountbatten Windsor's being investigated over alleged inappropriate behaviour towards a woman at Royal Ascot 24 years ago. The Sunday Times says it isn't clear if a complaint was made at the time. The King's brothers always denied any wrongdoing. A man shot dead after opening fire on Secret Service agents outside the White House is believed to have been known to police in Washington, D.C. NBC News has reported he's been identified as Nasir Best. Julie Serkin was about to start a report for the channel when shots were heard.
5: What is that?
6: It sounds like fire.
3: Four people have died after a Russian missile and drone attack in Ukraine's capital Kyiv. Authorities in the city say the assaults damaged more than 40 locations. Amber heat health alerts cover the Midlands, east and southeast of England and London again. Climate experts warn getting to 30 degrees and above this early in the year isn't usual. And in sport, a draw for Tottenham at home to Everton this afternoon should be enough to secure their safety on the final day of the Premier League season. But if they lose and West Ham win against Leeds, that would make them safe at Spurs' expense. That's the latest. From the Sky News Centre, I'm Bev Rimmer.
7: Hit of the Hour, brought to you in association with National Property Lawyers. One trusted team for your property and legal needs. Call 01274-559-565.
0: All right, jinaab, hum wapis aa chuke hain aur waqt hai ka muqabla hai sakht.
8: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Time on the dial is 2 minutes past one. Good afternoon. और जल्दी से हम चल रहे हैं अपनी अगली लाइन की तरफ, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
9: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: जी प्यारे मोहतरम शकील भाई, ऑल द वे फ्रॉम बर्नली से इस वक्त लाइव ऑन एयर हमसे बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
9: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है। तो ईद वाला हो गई, आप आ गए,
0: थैंक यू सो मच। मुझे जो है वो लास्ट मिनट में मुझे कहा गया कि आपने कवर करना है और मैं तो भागता भागता भागता चाहे को यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से आधी चीज़ें उठाता जल्दी जल्दी पहुँचा हूँ तो। लेकिन थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं कैसे हैं आप?
9: जी अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआएं सब तक ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं?
0: जी आप सबकी दुआएं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हम ईद के हवाले से सबसे पहले पूछ लेते हैं जी, आप बताएं कि ईद के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं?
9: बस पहले तो कुर्बानी है, उसके बाद ईद।
0: कुर्बानी किसकी हो रही है भले ये तो बताएं, मतलब किसी बंदे की नहीं हो रही कुर्बानी, बाकी सब खैर है फिर।
9: बकरा ही ज्यादा होता है मशहूर।
0: ओके ठीक है। नहीं बकरा जो होते हैं ना, कुर्बानी का बकरा तो होता है लेकिन कुर्बानी के बहुत सारे उसमें आ जाते हैं ना, कुछ हस्बैंड होते हैं वो भी कुर्बानी के बकरे होते हैं।
9: मैं जो कुर्बानी करता भी तो कैसे, बहुत महंगे ये बकरे हो गए हैं। अच्छा कटाई तो कटाई है बहरहाल, बहुत बकरों के नखरे हो गए।
0: वाह क्या बात है।
9: तो मैं ऑनियर हूँ भी।
0: जी आप इस वक्त ऑनियर बात कर रहे हैं।
9: तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
9: जावेद मीर साहब है, मुदस्सर भाई, सफीउल्लाह साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब, फरियाद चौधरी साहब है, वाजिद भाई, हसफ भाई है, महबूब भाई, रीखा साहब, अगर अगजाला जी हैं, रीखा जी, सबको मेरे तरफ से, हमारी बहन कंवर साहब आई थी, उनको भी बहुत आदाब।
0: वालेकुम सलाम।

0: एक मियाद है।
1: वाह वाह लाजवाब।
0: आग नफरत की बुझे भी किस तरह, तलखियों का एक जहां आबाद है।
1: हाय हाय वाह।
0: दिल से छलनी उसका संगे भूस है, जिसके होंठों पर मुबारकबाद है।
1: वाह वाह कमाल।
0: देखिए मुजद की आंखों से जरा खूबसूरत किस कदर इजाद है।
1: वाह वाह वाह वाह लाजवाब।
0: गालिब आए गम का लश्कर किस तरह, दिल में यादे यार जब आबाद है।
1: वाह वाह वाह बहुत
0: आखिरी शेर है। ऐनी इनका नाम है, सैयद खादिम रसूल इनका नाम है
1: जी।
0: कहते हैं ऐनी रखता रब पे हर दम भरोसा, ऐनी रखना रब पे भरोसा हर दम भरोसा, वरना तेरी जिंदगी नाशाद है।
1: बहुत खूब सुभान अल्लाह, क्या बात क्या मैसेज, बहुत खूब।
0: तो एक ज़ियाउल हक़ ने लिखा है कुर्बानी पे, वो ग्रचाएं मैं सुनाता हूँ।
1: जरूर इरशाद इरशाद।
0: अज़्मे कुर्बानी किया था ईद कुर्बान से करीब
1: जी,
0: मुझको एक दिन बकरा पीड़ी ले गया मेरा नसीब। ये शगुफ्ता नज़म है
1: जी।
0: बकरा पीड़ी में नमूदे हश्र के आसार थे
1: जी,
0: लोग बकरों की तरह हर सू जलीलो खार थे। मैंने समझा था कि सस्ता जानवर मिल जाएगा, क्या खबर थी रेट सुन के मेरा दिल दहल जाए। मुझको एक बकरे ने दी आवाज जबड़ा खोल कर,
1: ओके
0: ले चलो मुझको यहाँ से मेरा रास्ता खोल कर।
1: राइट अच्छा।
0: चार दिन से हूँ मैं भूखा, पेट में खाली है आंत।
1: Okay.
0: चार दिन से मुंह में बेमसरफ है मेरे चार दांत। मुझसे हासिल मेरे मालिक का तारफ कीजिए,
1: अच्छा
0: और फिर उससे मेरा सौदा बेतकल्लफ कीजिए।
1: सही सही कमाल।
0: खुद ही मालिक खुद कसाई खुद ही ये दलाल है। मेरे भैया मल्टी इनकम से ये माला माल है। उसने है मुझको खरीदा 500 में गांव से, फिर यहाँ तक चल आया हूँ मैं अपने पांव से।
1: सही।
0: ये भी सुन ले आप मुझको ले जाएंगे जहाँ, ईद के दिन ये कसाई बन के पहुँचेगा वहाँ।
1: ठीक ठीक।
0: छोड़े इन बातों को आप तो इससे सौदा कर ही ले।
1: okay.
0: बार गेने करके उसको आप पैसे दे ही दें।
1: ठीक है।
0: आप जब आ ही गए हैं मुझको लेते जाइए।
1: ओके।
0: मेरे गुर्दे खाइए मेरी कलेजी खाइए। बस मुझे जल्दी उठाएं और दें गाड़ी में डाल। सींग मारूंगा आपको मैं ना, ये नहीं मेरी मजाक।
1: लाजवाब लाजवाब।
0: आपको अल्लाह देगा सब्र की तौफीक भी
1: जी,
0: अशर के दिन मैं करूंगा रेट की तस्दीक भी।
1: कमाल।
0: उसकी बातें सुन के मालिक उसका मुझ पे तन गया। उसकी बातें सुन के मालिक उसका मुझ पे तन गया और इस जालिम के हाथों मैं भी बकरा बन गया।
1: लाजवाब लाजवाब।
0: उसने मुझसे लिए बकरे के पूरे 2000।
1: अच्छा।
0: घर से मुझको यूं लगा दिल में छुरी है यार पास।
1: हाय हाय।
0: इस तरह वो पूरा कुर्बानी कारमा हो गया, यानी कुर्बानी से पहले खुद मैं कुर्बान हो गया।
1: आए हाय लाजवाब लाजवाब कमाल कमाल बहुत मजा आया।
0: तो शेर और सुनाता उसके बाद जाना चाहता था चौधरी रुखसार साहब को, मेरे तरफ से सलाम अलैकुम अजूब भाई को भी।
1: वालेकुम। आज तो चौधरी रुखसार साहब ने कमाल कर दिया। समंदर खान जो
0: कमाल समुंदर में चले गए थे, तूफान ले आए।
1: समुंदर में तूफान ले आए, तूफानी आज वो तूफानी हो गए हैं।
0: फिर को तूफान शुरू कर दिया।
1: सही।
0: तो एक दो शेर है। आज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, आज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संग भारी के लिए शैतान की जानब गया। एक कंकर फेंकने पे नदा उसने सुनी
1: जी,
0: तुम तो अपने आदमी थे तुमको क्या हुआ।

नहीं दिल कहीं बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी।

0: वाह कमाल कमाल। पता है क्या आमिर, मैंने फैसला कर लिया, हमारे घर में कोई भी शादी हुई ना तो मैंने आपको इनवाइट करना है, आपसे करियोके करवाना है, ठीक है ना?
1: बस सही है इंशाल्लाह।
0: और जनाब आपको हम सामने खड़ा करके
1: आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ, ताकि वो प्रिपेयर करके
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एडवांस में बताएंगे और हम आपको सामने खड़े करके आपसे जो है वो गाने सुनेंगे। थैंक यू सो मच आमिर, आपने जो है वक्त निकाला।
1: Always pleasure, जब भी आप invite करते हैं ना, it's always a pleasure.
0: You're very welcome. Anytime, आप जरूर आए जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले। और अच्छा लगता है आपसे गपशप होती है और आपका गाना तो सुने बगैर हम आपको हमें चैन नहीं आता, हमारी रूप रखती रहती है, तड़पती रहती है।
1: मुझे यहाँ पे आए बगैर चैन नहीं आता, तो थैंक यू सो मच कमरान फॉर ऑलवेज लाइक यू नो रिमाइंडिंग मी एंड इनवाइटिंग मी।
0: यू आर वेरी वेलकम, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।
1: थैंक यू,
0: ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। You're listening to DJ Cameron. और जनाब अब हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी अगली लाइन पे, देखते हैं हमारे साथ इस लाइन पे कौन सी हस्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। हुमा जी हमें कॉल कर रही हैं। हुमा जी कैसी हैं आप?
2: सीमा जी।
0: सीमा, या अल्लाह मैं किधर जाऊं। अच्छा आप सीमा, अच्छा आप सीमा कहना था इस, ओके। कैसी हैं आप?
2: ओके ठीक ठाक, आप सुनाओ?
0: अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो
2: काफी बिजी बस है ना, हुमा ने आपको ज्यादा तंग किया इसलिए आप आज हुमा हुमा कर रहे
0: हैं। वही तो यही मुझे भी लग रहा है, कुछ ऐसे ही हो गया, मतलब कभी वो इधर की मार जाती है, कभी उधर की मार जाती है, मेरी आंखें ऐसे गोल गोल फिरना शुरू हो जाती है, ऐ हो गया रहा
2: मेरा। कोई बात नहीं, हो जाता है, वैसे भी गर्मी है आज।
0: ठीक है, ठंडा पानी
2: से अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है।
0: सही हो गया, ठीक है, हम वैसे ही सिर फिरे, ऊपर से गर्मी पड़ रही है
2: जी।
0: और बताए आप कैसी हैं?
2: अच्छी अच्छी बातें सुनी आज, मैं काफी टाइम के बाद सुना, पहले तो शकील साहब को काफी टाइम के बाद उनकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। एंड चौधरी फरियाल को भी काफी टाइम के बाद सुना। वैसे मैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम में इधर उधर आते जाते कुछ प्रोग्राम का हिस्सा सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते
0: जी,
2: तो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो पहले तो सबको मेरी तरफ से हज मुबारक,
0: खैर मुबारक,
2: एंड ईद भी इन एडवांस,
0: खैर मुबारक,
2: होप सो सबकी ईद अच्छी गुजरे।
0: सही हो गया। तो आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं?
2: मैं सच्ची बताऊं, इस दफा ईद पे भी काम पे हूँ।
0: अच्छा, बहुत सारे लोग हैं काम पे।
2: ठीक है, मेन थिंग हुई ना इस दफा ईद आ गई है वीक डेज में।
0: हाँ,
2: तो इस वजह से काफी जो है ना छुट्टियों की इस दफा प्रॉब्लम हुई है।
0: ऐसी है, ऐसी
2: लेकिन आधी छुट्टी इंशाल्लाह घर, तो लेडीज का आपको पता है घर में कैसी गुजरती है, वही कुकिंग किचन में,
0: कुकिंग किचन में लुक आफ्टर करना, खाने बनाना। लेकिन फिर भी मेरे हाथ से लेडीज की जो ईद होती है चूड़ियों और मेहंदी के बगैर मुकम्मल
2: नहीं होती। मेरी तो खैर पहले चूड़ियों के बगैर भी नहीं होती थी, लेकिन अभी भी स्टिल कोशिश करती हूँ कि मेहंदी के बगैर ना हो।
0: तो फिर आप वो वाला गाना गाती हैं, चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना,
2: नहीं मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां,
0: हाथों में नौ नौ चूड़ियां, ठीक है सही, नाइस। तो और मेहंदी के बाल से फिर आप क्या करती हैं? मेहंदी लगा के रखना?
2: हाँ, वो तो लगा के रखती है, वो तो मुझे लगा के रखनी है ना।
0: हाँ, ठीक है, हाँ,
2: वो तो मैं वो हस्बैंड को गाना पड़ेगा मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी सजा के रखना, अभी वो जमाना गया।
0: आप उनको कहती, आप उनको कहती हैं कि ना मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात जब चांद रात आती
2: है, मेहंदी की रात आई। हाँ,
0: ओके सो स्वीट। अच्छा जी बोले, आप बोल रही थी कुछ?
2: और टॉपिक कुर्बानी का है, तो थोड़ा कुर्बानी पे
0: जरूर
2: यही बोलना चाहूंगी कि कोशिश किया करें कुर्बानी पहले तो जो जिनका हक है उनको ही मिले, फ्रीजर बाद में भरे। हाँ जी, और कोशिश किया करें कि जो सफेद पोश है जो मांगते नहीं है, कि अगर आप लोग लाइक आजकल जो मैंने नोटिस किया है मस्जिद में भी एडिशनल कुर्बानी का थोड़ा उन्होंने ऐड किया है, कि कुछ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है अपने कर्म से अपने पैसे से, तो अगर वो एडिशनल कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए करेंगे जिनके पास, कोशिश करेंगे जो बहुत गरीब हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोग तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट थिंक सो कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम होगी कि हम लोगों को गोश्त नहीं मिलता। हम लोगों के तो फ्रीजर आई थिंक सो जहां तक मैं जानती हूँ अपने आस पास में जहाँ हमारे फ्रीजर में ऑलरेडी इन एडवांस पड़ा होता है, हम लोगों ने फ्रीज किया होता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
2: तो करें इधर भी कुर्बानी। मैं नहीं बोलती कि नहीं करें, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप कोशिश करें कि अपने मुल्क में भी जहाँ जहाँ पे गरीब हैं वहाँ वहाँ पे अगर आप एडिशनल कर सकते हैं तो करें, और ये सिर्फ कुर्बानी तक महदूद मत रखें कि एक महीना होता है कुर्बानी का, लेकिन बाकी भी 11 महीने में भी उन लोगों को खाना पीना तो चाहिए होता।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात।
2: तो वो कोशिश किया करें कि जहाँ तक हो सके ना तो बाकी महीनों में भी कोशिश किया करेंगे, चलें कुछ ना कुछ, लाइक एक महीने का। अगर आप, मैं नहीं समझती कि इधर हम लोग इतने गरीब हैं कि किसी को एक महीने का पाकिस्तान में राशन नहीं डाल के दे। बेसिक चीजें होती है ना,
0: क्या बात?
2: बेसिक चीजें होती हैं, दाल चावल आटा, ये तीन चीजें होती हैं। इससे आई थिंक तो गरीब बहुत खुश, हैप्पी हैप्पी आई थिंक तो वो इन तीन चीजों में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
2: तो यही एक मेरा पैगाम था, मैं देना चाह रही
0: हूँ। खूबसूरत पैगाम।
2: कोशिश किया करें, और जहाँ तक ये भी है कि कभी कभी हम लोग बाहर बहुत कुछ दे जाते हैं, हम लोगों की आपस की इतनी वो एक हमारी जो आजकल मैं होती है अपने, खासकर मैंने देखा है कि अपने रिश्तों में हम लोगों को मैं की वजह से हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते। तो कोशिश किया करें कि अगर आप लोगों की मैं अपनी जगह रखें, आप किसी को छुप के भी, लाइक अगर आप किसी को जानते हैं, आपका अपने जानने वाला, आप उससे बोलते नहीं है, कोई भी मसला है किसी भी मसले की वजह से, अगर आप उससे नाराज हैं तो कोशिश करें कि किसी दूसरे के जरिए उसकी हेल्प कर दें। क्योंकि ये तो वैसे भी है कि अगर अगर आप हदीसों के हिसाब से जाएं तो भी ये है कि अगर आपका अपना खूनी रिश्ता अगर आपसे नाराज भी है ना, और अगर वो गरीब है, तो फिर भी पहला हक उसी का है हम पे।
0: ठीक है, सही है।
2: तो ये चीजें कोशिश करें कि साथ लेके हम लोग चलें। बाकी जो हज पे गए, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करें, और जो नहीं जा पा रहे या जिनकी हैसियत नहीं, अल्लाह ताला उनका भी सबब बनाए।
0: आमीन। ये बहुत जरूरी है, ये दुआ बहुत
2: जरूरी है। हाँ जी, तो मुझे भी सब लोग दुआ में याद रखें कि मुझे भी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई हूँ एक दफा,
0: ऐसे ही है मतलब हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद उम्रा कर चुके हैं, लेकिन हज की अभी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह ताला
2: आएगा। चलें दुआ में। हाँ जी, बाकी चौधरी रुखसार काफी टाइम के बाद उनको भी सुना।
0: आज चौधरी रुखसार साहब ने
2: दिमाग उनकी तो मस्ती, मैंने कहा ये तो कोई और ही चौधरी रुखसार है, वही हमसे पूछना वही है,
0: ये समंदर खान
2: मैं जानती हूँ।
0: आज तो बड़ी माशाल्लाह से उन्होंने अपने टैलेंट का जो है वो शो ऑफ किया है ना।
2: नहीं, वो काफी माशाल्लाह से टैलेंटेड होते जा रहे हैं दिन ब दिन।
0: किसकी दुआएं लग गई हैं उनको?
2: पता नहीं किसकी लगी है, मेरा ख्याल वो क्या नाम था उनकी वाइफ का बता रहे थे वो।
0: हाँ,
2: नहीं वाइफ का था, वाइफ का तो नाम नहीं बताया उन्होंने, पर आई थिंक उनकी वाइफ का ही लगी है उनकी।
0: हाँ, वो जो उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो उनके अंदर आई थी सिर्फ दो मिनट के लिए।
2: हाँ, दो मिनट के लिए हाजिर हो गई,
0: हाजिर हो गई थी, जैसे जैसे बाहर की चीज हाजिर हो जाती है।
2: हाँ, वही ना, हाजिर हो गई थी उनके अंदर।
0: ठीक है, उन्हीं की दुआ लगी होगी, लेकिन it was interesting, it was different this time, और मजा आया। थोड़ा थोड़ा सा ना स्पाइस अप हो जाती हैं जब चीजें, क्योंकि जब आप रूटीन में कुछ
2: करते हैं, गायब किधर हो जाते हैं बीच में।
0: हाँ, किधर गायब हो जाते हैं आप?
2: अलादीन गायब हो जाते हैं,
0: अलादीन के, अलादीन
2: की चिराग की तरह।
0: हाँ, उनका जो जिन होते हैं कभी बाहर आ जाते हैं कभी अंदर चला जाता है, किधर गायब हो जाते हैं, गायब मत हो
2: जाते हैं।
0: ठीक है, उनका
2: आज गाना तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि हज का महीना है, तो थोड़ा गाना तो हम लोग सारा साल वैसे भी गाते ही जाते ही रहते, तो एक महीने की रिस्पेक्ट, बस यही जो मेरे पैगाम थे। आई होप सो अगर किसी के कोई एक भी इस पे काम कर जाए तो आई थिंक तो मुझे इसका स्वाब मिलेगा। तो बस यही कोशिश किया करें कि एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो मैं नहीं समझती कि आपके साथ बुरा होगा।
0: अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं, मेरे ख्याल से मैंने बारहा इस बात को रिपीट भी किया और इसको मैं करता रहूंगा, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि मैंने कोई अच्छी बात की और मैं समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला कोई सुनेगा, कोई इस पर अमल करेगा तो अजर मिलेगा, मैं समझता हूँ ये बात भी बिल्कुल अच्छी है। लेकिन जो आपने बात कह भी दी है ना, एक नेक नीति के साथ आपने वो यहाँ पे ओनर, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में सुन रही होती है, ये बड़ी बात होती है।
2: सच्ची बताऊँ ना आपको, मैं अपनी लाइफ का, मैं बोलूँ तो मैं इतनी यंग भी नहीं हूँ, बोलूँ तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ, लाइक इन बिटवीन मीडियम है ना, तो मैं जहाँ से अगर देखूँ ना, तो मैं लाइफ को बहुत अच्छे से, अच्छी भी गुजरी है, बीच में बुरी भी गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी है। और लेकिन मैंने हर एज का जो है ना, एक उसमें मैंने हर एज में कुछ ना कुछ सीखा
0: है। सही है,
2: तो वो कभी कभी अल्लाह ताला पे ऐसे हालात खुद पैदा करता है कि आप इस चीज से सीखो, क्योंकि समटाइम हम लोग जो हमें हमारे बड़े बताते हैं, हम उसको ऐसे ही उड़ा देते हैं कि नहीं ये पता नहीं क्या बोलते हैं।
0: अच्छा, एक और चीज है कि जब तक आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए ना, आप सीखते भी नहीं है, आप हीरा नहीं बनते हैं। कहते हैं कि कोयला जो है वो पक के ही हीरा बनता है।
2: तो ये जो कभी कभी जैसे हम लोग अब बहुत से लोगों को मेरी बातें शायद ऐसे लग रही कि पता नहीं क्या बड़ी बात है, यू नो, क्योंकि कुछ लोगों का होता है ऐसा, ऐसा दिमाग होता है, लेकिन वो जब खुद इस चीज से गुजरेंगे ना, फिर उनको रियलाइज होगा नहीं ये बात ठीक थी। कभी कभी जब तक आप पे खुद बीतती नहीं है ना, तो आप रियलाइज नहीं
0: करेंगे। ये बिल्कुल सही बात आपने की, ऐसा है।
2: तो बस मेरी तो कोशिश यही होती है कि अगर आप किसी को दे नहीं सकते ना, तो कुछ ले भी मत। किसी को अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी मत,
0: बुरा भी मत बोले।
2: इस चीज को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ आई थिंक सो अच्छी गुजरेगी।
0: अच्छी गुजरेगी।
2: लाइक टॉपिक था कि आप जिंदगी को जीते हैं या आप गुजारते हैं। तो वो ये है कि अगर आप जीना चाहें ना तो जिएंगे, उसके लिए आपको काफी चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप उसको अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो फिर वो आप जिंदगी गुजारेंगे, क्यों मेरे तो साथ ये हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँ अब, मेरे पे तो अल्लाह ताला नहीं, तो फिर वो हमें लगेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा बर्दाश्त करना सीख जाए ना, उसको लेके उसका हल ढूंढे उस प्रॉब्लम का, तो आई थिंक सो जिंदगी बहुत खूबसूरत है।
0: बहुत खूबसूरत, कितनी प्यारी बातें की हैं और कितनी सबक अमोज जो हैं इसमें पैगामात थे आपने। थैंक यू सो मच। अब मैं क्या बोलूं, सिमरन या हुमा?
2: सीमा ही बोले, मैं हुमा नहीं हूँ, सीमा हूँ, पता नहीं हुमा की तो
0: okay, सीमा, सीमा,
2: हुमा सीमा। का मुझे कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा।
0: ठीक है, मैं
2: उसको बोलूंगी आपको तंग मत करे ज्यादा।
0: हाँ,
2: कि वो हुमा हुमा कर रहा था,
0: हुमा हुमा किधर हो, इधर
2: हो, हुमा को आए हुए तो हुमा छा गई है।
0: देख ले हुमा का जादू।
2: चले हुमा जी, सॉरी मैं वैसे ही मस्ती कर रही हूँ, मेरी बातों का बुरा मत।
0: नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, मुझे पता है मस्ती कर रही
2: हूँ। चौधरी उकसार, चौधरी फरियाल एंड शकील और जो भी जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से अगेन ईद मुबारक एंड हज मुबारक, और आपको और आपकी फैमिली को।
0: जज़ाकअल्लाह
2: खैर, मुझे और मेरी फैमिली को भी सब दुआ में याद रखें।
0: इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच, आपकी प्यारी दुआओं का, प्यारी बातों का अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ओके जनाब, ये थी हमारे साथ द वेरी लवली सिमरन एंड सीमा जो हैं, उनके खूबसूरत नाम है, जो भी नाम ले खूबसूरत, सभी नाम हैं उनके। और थैंक यू सो मच आपने, मतलब इतनी प्यारी बात है, सम टाइम आप जब आपके आप करके जाते हैं तो आप यकीन जाने, जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ तो मैं एक तरह से वो रिवाइव हो रही होती हैं चीज़ें आपकी, इनसाइड आप सोच रहे होते हैं, आपका दिमाग चल रहा होता है कि हाँ यार शायद ये बात मैं कहीं पर भूल गया था, मुझे इस बात के साथ स्टिक करना है, मुझे इस बात को लेके चलना है अपनी लाइफ में।
3: दिस इज Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.

गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। जनाब वक्त है कि हम मुकाबला जल्दी से जल्दी अपनी अगली लाइन पे देखते हैं हमारे साथ कौन सी हस्ती मौजूद है। हेलो

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

कॉल कर रहे थे नदीम मंसूर साहब, आपकी कॉल आई थी लेकिन मेरी माजत, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई। अगर आपके पास वक्त है तो आप मुझे दोबारा से कॉल कर ले प्लीज़, थैंक यू सो मच। समटाइम ऐसा होता है कि आप जब कॉल कर रहे होते हैं या मैं दूसरी लाइन पे होता हूँ या मैं सिस्टम के साथ कहीं पे बिज़ी होता हूँ तो मेरी माजरत आपसे दोबारा से, अगर आपको टाइम मिले तो मुझे दोबारा से कॉल कर लें।

0: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
1: All right, guys, it's 1:42. A very, very good afternoon.
2: You're listening to DJ Cameron.
3: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback as we go down memory lane. Where were you?

बचपन में सड़क पे खुले मैदान में हमारी तरह बैठे हैं कलम कले या बैठे हैं आप अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी एन वेलकम, खुश आमदीद। खुश आमदीद कहूं या खुश्क आमदीद कहूं, मौसम के हिसाब से जनाब मौसम को यहां पे यूके यूरोप में जनाब हमारे यॉर्कशायर में बिल्कुल जनाब अग लगी पई है। बार मौसम की गल हो रही है, मेरी नहीं, बिल्कुल जनाब। और इस गरम गरम मौसम में जबरदस्त जबरदस्त सी बातें होंगी। ये जो बेईमान सा मौसम है, रंगीला सा मौसम है, इसके हिसाब से कुछ आज होगा माहौल हमारी महफिल का। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जनाब आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को। जी जनाब, वही काशिफ जिसकी बातों का ना सर ना पैर। बिल्कुल जनाब, बेतुकी सी बातें। इतवार के दिन 2 से 5 बजे तक जनाब इस दुनिया से जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता बातों का, अपनी ही बातें होती हैं हमारी, बच्चों जैसी, पागलों जैसी, दीवानों जैसी। तो जनाब ये बातें लेके आपके पास हाजिर, और जो मेरी तरह के हैं या इस वक्त मौसम के जेरे असर हैं, उनका मूड भी मस्ती वाला है, तो वो सिर्फ मुझे कॉल कर सकते हैं, बाकी सब बर्दाश्त।

करें, अपने दांत पीसें, या कानों में उंगलियां दे लें, या अपने बाल नोच लें, कुछ भी कर लें, आपके बाल, आपके कान, आपकी उंगलियां। बरा जनाब, मुझे कहते हैं आपका अपना काशिव, और मुझसे पहले यहां पे आपको पता है, हम मेरी, आपकी, हम सबकी हर दिल अजीज आवाज, बड़े ही खूबसूरत से मेरे दोस्त, बड़े हैं हमारे साथी प्रेजेंटर जनाब, बड़े दिनों के बाद जब उनसे मुलाकात होती है तो इस गरम गरम मौसम में जब जफ्फी लगती है तो सीने में ठंड पड़ जाती है। जनाब बात हो रही है हमारे कामरान भाई की, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जनाब आपके लिए एक महफिल सजा के रखी 2 बजे तक, और अब खूबसूरती का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, हाँ सादगी का लेना देना, बिल्कुल सीधी सादी, बिल्कुल मेरी तरह की, बिल्कुल सीधी सादी जलेबी की तरह की बातें, जैसे हम वैसी ही बातें। और बार मौसम जैसे बेशक इतना गर्म हो जाए, आग बरस रही हो, हमें क्या, वो कहते हैं ना आग लगे बस्ती में, हम तो गुम अपनी मस्ती में। तो जनाब आज हम जब स्टूडियो की तरफ आ रहे थे, आपको पता है मेरी एक बड़ी अच्छी और बुरी आदत है कि मैं ऑब्जर्व बड़ा करता हूँ सबको, मौसम के एतबार से किसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, ग्लासेस काले क्या आज ज्यादा लोगों ने पहने हैं। जब ऐसे मर्द हज़रात मैं देखता हूँ कि जब धूप निकलती है वो ज्यादा काले ग्लासेस पहनते हैं, ताकि वो सज्जे खब्बे जहाँ कहीं भी देख रहे हो, खासकर जब फैमिली के साथ हो, तो उनकी आंखों की चोरियां पकड़ी ना जाएं कि वो कहाँ देख रहे हैं। महबूब भाई का भी पता लगा आज कि वो वसदी बारिश विच भी, बादलों में, काले काले बादलों में भी वो काले ग्लासेस क्यों पहनते हैं, आज पता लगा जनाब। बहरहाल मैंने नहीं पहने जनाब अभी तक काले ग्लासेस, लेकिन आवाम को देखा, हम मौसम का असर हम पे भी है, हम भी थोड़े से मच्छरे हुए हैं। मच्छरने का मतलब नहीं पता, गूगल कर ले या अपने दाएं बाएं देखें, आवाम को आज थोड़ी बदली हुई लगेगी, मतलब थोड़ी सी मच्छरी हुई लगेगी। मस्ती वाला मौसम है, रंगीला मौसम है, तो क्या अर्जा, कभी कभी थोड़ा सा मच्छरना चाहिए, मचलना चाहिए, हंसना चाहिए। हर वक्त मुंह पे 12 बजा के रखेंगे तो क्या फायदा। चलिए जनाब आपके मुंह से 12 हटाते हैं और 2 बजाते हैं, 2 से 5, काला चश्मा पहन ले। और अगर आपने काला चश्मा पहना हुआ है तो ये गाना आपके लिए काशिफ की तरफ से जचता है काला चश्मा।

0: नफ्सें ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: जी जनाब, वापिस आना पड़ा हमें ब्रेक के बाद, क्या करें। नहीं जनाब, हमारे दिमाग में नहीं चल रहा कोई फतूर, ये सारा है आपकी मोहब्बत का, आपकी तवज्जा का कसूर। जो करते नहीं देने में कंजूसी प्यार, आप दिल खोल के देते हैं प्यार भरपूर। अच्छा जनाब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं आशा जी, और उनकी शायरी भी हमने सुननी है। वो पूरा हफ्ता लगा के हमारे लिए शायरी लिखती हैं, जब तक हम उनकी शायरी सुनते हैं। और बाकी बोकी हाय, गर्मी चढ़ गई है मेरे दिमाग में, देखा धूप लग गई है मैनो। बाकी कॉलर से हम बातचीत करेंगे, जब तक आप जनाब ये खूबसूरत सा गीत जिस जो करेगा आपको ये जाहिर के हमारा संडे के दिन सांसों का चलना, दिल का मचलना, ये किसकी बदौलत है, ये आपकी बदौलत है जनाब। रौनक है आप, और इल्जाम देते हैं कॉलर आके सब हमें के जनाब क्या खाते हैं आप, आते साथ ही आप इतना मचल रहे होते हैं। तो जनाब सांसों का चलना, दिल का मचलना जवाब दे रहे हैं हम सोनिया आपको। सोनिया बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोई शो हमारा ऐसा नहीं होता जिसमें आप ना आए। मैं सोचता हूं जिस दिन आप ना आए उस दिन क्या होगा, सूरज निकलेगा, चांद भटक जाएगा, क्या मुझे भूख लगेगी, क्या मुझे रात को नींद आएगी, आप आना ना छोड़िएगा। बाकी सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल जनाब हमारी महफिल में आना ना छोड़िएगा। आप आती हैं थोड़ी तारीफ करती हैं, बाकी सब तो कंजूस हैं, तारीफ ही नहीं कोई करता। तारक जुल्फी भाईजान, आपको छोड़ के आपने बहुत तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपके दोस्त मलक इसहाक जी हैं, उनके नाम जबरदस्त सा गीत, और आप कहते हैं भाई हमारा आता है बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तो जान में जान आती है, पता लग जाता है भाई आ गया है, क्या बात है। और जनाब आशा जी हमारे साथ जनाब अपनी वो डायरी खोल के बैठी हैं, उनकी शायरी सुनेंगे, लेकिन पहले समीना जी ने आते साथ हमें डांट लगाई जनाब, क्या करें, बच्चा देख के सीधा साधा देख के हर कोई चढ़ाई करता है हम पे। कहती है काशिफ, ये क्या वादी है इश्क से, पुराना गाना शादियों वाला, आशिक मशूक वाला, इस गर्म मौसम में कोई जबरदस्त सा गीत लगाओ। मैंने कहा किस किस्म का गीत लगाऊं, कहती है मस्ती वाला गीत लगाओ, मस्ती वाले। तो जनाब मस्ती वाला गीत लगा रहे हैं, सांसों का चलना, दिल का मचलना। अच्छा जनाब सविता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑफ ट्रैक होने से बचा लेती हैं। जब भी हम ट्रैक से हटते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वो हमें फौरन कॉल करके जनाब ट्रैक पे ले आती हैं। बहुत शुक्रिया समीना, जीते रहें, हंसते रहें, मोजे मारे अपने खर्चे पे। और जनाब इसके अलावा हमसे जो सवाल किया गया कि आप खाते क्या हैं, बताते हैं ना जनाब। वैसे तो मैं कॉफी के 3-4 मग पी के आता हूं, आपको पता ही होगा, बार बार जिक्र करता हूं, लेकिन जनाब आज गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो हमें बचपन के मुहावरे याद आ गए कि लोहा लोहे को काटता है। आपने पढ़ा ये मुहावरा, सुना तो होगा। हाँ जी, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। मुझे बड़ा समझाया दोस्तों ने सुबह, कहते हैं नहीं काशिफ, कुल लस्सी पीते हैं, कोई और नाश्ता करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, लोहा लोहे को काटता है तो गर्म नाश्ता करेंगे, गर्मी गर्मी को खत्म करेगी। तो हमने जनाब आज खाए हैं पाए, और खाए नहीं है टकाए हैं, साथ में नान और साथ में हलवा, एक पूरी एंड में खाई है स्वीट डिश के तौर पे हलवे के साथ। और उसके बाद आज 3 या 4 कप कॉफी नॉर्मल पीता हूं मैं संडे सुबह, आज 2 कप पिए हैं। तो गरम गरम कॉफी, उससे पहले एक पूरी और हलवे की पूरी प्लेट देसी घी वाली, और उससे पहले टका के पाए। तो जनाब गरम नाश्ता आग आग को बुझाएगी, गर्मी गर्मी को भगाएगी, लोहा लोहे को काटेगा। यह

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: जनाब हाय गर्मी। और जनाब यूके यूरोप में क्या होता है कि थोड़ी सी गर्मी पड़ती है ना तो हाय हाय निकल जाती है सबकी। असल में मसला ये है कि हम यूज्ड टू नहीं है ना भाई साहब, हम नाजुक हो गए हैं, नाजुक, बड़े नाजुक मिजाज हैं। थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो हाय हाय, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो हाय हाय, थोड़ा सा बिल ज्यादा आ जाता है तो हाय हाय, खाने में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो जाए तो हाय हाय, गाने खाने में जनाब गाने में नहीं खाने में नमक थोड़ा कम रह जाए तो हाय हाय, गाड़ी चलाते हुए कोई ओवरटेक कर जाए तो गुस्से में हाय हाय, कोई गाड़ी वाला आपको पैदल चलने वाले को रास्ता ना दे तो पैदल चलने वाला इतनी बारी बारी जनाब गालियां तोलता है और साथ में कहता है हाय हाय, इसको तमीज ही नहीं है, गाड़ी क्या मिल गई, शोखियां मार रहा है जैसे गाड़ी किसी को पहली बार मिलती है। और ये हाल होता है पैदल चलने वाला जनाब जब गाड़ी के सामने आ जाए बिना सिग्नल देखे। जनाब ग्रीन सिग्नल पे भी कुछ लोग रोड पार करते हैं, हालांकि वो गाड़ी वाले का हक पहले होता है, लेकिन कहीं पैदल लोग अपनी मस्ती में होते हैं, मोबाइल हाथ में उठाया हुआ होता है, किसी बड़े प्यारे इंसान से बातें कर रहे होते हैं, दुनिया से उनको कोई ताल्लुक ही नहीं होता, गाड़ी के नीचे आ जाए बिल्कुल। आपने देखे होंगे ऐसे पागल लोग, दीवाने लोग या ऐसी दीवानियां, मैंने बहुत देखी हैं। मैं कहता हूं फोन के उस तरफ कौन है वो इतना खास जिससे ये पागलों की तरह बात कर रही है, थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होती है कि आखिर ऐसा कौन है इतना खूबसूरत कि जिससे वो बात करते हुए सड़क पार करते हुए गाड़ी के नीचे आ जाएगी, इस बात का होश ही नहीं है। और कई बार जनाब मेरी हाय हाय निकलती है, आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियां ड्राइव कर रही होती हैं, खवातीन के साथ ये मामला ज्यादा होता है, भाई साहब वो गाड़ी चला रही होती हैं और उनकी चुन्नी, उनकी जो चुन्नी, जी बिल्कुल जनाब, उनकी जो चुनरिया होती है ना, वो ड्राइविंग साइड पे जो डोर है उसके आधा नीचे, बल्कि ज्यादा, वो पीछे वाला जो टायर होता ना गाड़ी का, ऐसे मेरा तो जनाब सांस हटक अलग में, देखें बोलते हुए अटक रही है ये बात, मैं बिल्कुल बुला नहीं सकता। और मैं दुआ करता हूँ हाथ उठा के कि ये मोहतरमा घर खैर खरीत पहुंच जाए, अगर वो चुन्नी आ गई टायर में और टायर के साथ वो फंदा बन गया गले का तो मैडम चुन्नी का नुकसान हो जाएगा, गले की खैर है, इतनी प्यारी चुन्नी। इसलिए जनाब हाय हाय हमारी भी निकलती है जब भी गाड़ी में बैठे तो जनाब, अगर आपने चुनरिया ली है आज मैचिंग अपने जोड़े के साथ ड्राइव करने लगी है तो प्लीज चुन्नी को अंदर रखें, आधी बार ना लटकाएं जनाब, क्योंकि वो टायर में आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर रोड पार कर रही हैं, लाइटें ग्रीन हो गई हैं, क्रॉसिंग पे हैं, गाड़ी वाले जा रहे हैं, अगर आप किसी खास इंसान के साथ मोबाइल पे गुम सुम हैं तो ना करें, आप बड़े कीमती हैं जनाब। फोन के उस तरफ शायद उस बंदे को इतनी कीमत आपकी का अंदाजा ना हो, हमारे लिए बड़े कीमती हैं आप सब जनाब, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा।
1: सर की जो सर से वो,
0: जी जनाब आपकी गाड़ी से लहराई जो बाहर चुनरिया आपकी,
1: पागल
0: हुआ मैं
1: धीरे धीरे,
0: दुआओं में हाथ उठाए मैंने
1: तेरी चुनरिया
0: के, खैर से आप घर पहुंच जाएं।

0: आपकी चुनरिया हमारा दिल ले गई। अभी तो ये चुनरिया की बात है, आप सोचें कि जनाब आप कितने खास हो गए। और जनाब आपको बताएं, बड़ी खास हस्तियां हमारे साथ रहीं। हफीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का, आपसे बात करके दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जनाब आपने कहा कि हमने आपको गोली दी, कमाल हो गया। हमने तो जनाब गोलियां देना बहुत अरसा पहले छोड़ दी थी, अब तो हम टीके लगाने पे आ गए जनाब, अपग्रेड कर लिया खुद को। गोलियां देते थे हम शुरू बिल्कुल सच्ची बात सरे आम और जुबान जदे आम, और आपको ये बात पता नहीं लगी। बिल्कुल जनाब काशिफ टीके वाला और गोलियां देना खत्म। गोलियां अब वो ओल्ड ट्रेंड हो गया ना। बहरहाल जनाब आपने कहा था उनको लास्ट वीक के हम गुजर खान के हैं। जनाब हम हर जगह गए हैं, गुजर खान ने भी यहाँ सी थे, असी अटुक ने भी यहाँ, असा मीरपुर ने भी यहाँ। जनाब तुसा कि नहीं यकीन अचानता है, हूँ मैं तुसा किस तरह यकीन दवावा। तो जनाब असी पंजाब दे भी हाँ, तो एवें तो नहीं सिरी पाए असी खाधे सवेरे सवेरे, खैर सिरी तो नहीं लभदी, इत्थे पाए लभदे ने, वो भी नान दे नाल। बर्मिंघम वाले कॉल की जो कहते ने जी मन गए हाँ, हमेशा असी तुहानू जैलस किया दस दस के अज असी की पकाया। मन गए काशिफ जी तुसी बदला वापिस लै लिया। मैं क्या किंज कहते ने कि जनाब जरा तुसी हलवा पूड़ी खाधा ना, तुसी सानू साड़ दिता है। तो मैं बड़ा खुश हो गया, उन्हां कोलों बर्दाश्त नहीं हुई साड़ी खुशी। उन्होंने कहा जनाब काशिफ जी इन्ना खुश होने की लोड़ कोई नहीं, तुसी ये वेखो मैं तुहानू हर हफ्ते साड़नी हाँ, जैलस करनी हाँ दस दस के मैं की पकाया। तो मैं मन लैनी हाँ कि ऐद की तुसी भी सानू जैलस कर गए हो, पर वेखो तो सही असी तुहानू किन्नी वारी जैलस किया है, तो तुसी खाली इको बारी। चलो जी अज तो गल ठीक हो गई है। वो बारिश का पहला कतरा औखा होंदा जनाब, हूँ मैनू पता लग गया कि तुसी भी जैलस होंदे हो। हूँ वेखो खर्चा भावें मेरी पूरी तनखा लग जाए, सारे महीने की वेज लग जाए, मैं हूँ कुछ ना कुछ खा पी के आवा करांगा तुहानू दसण लई। ठीक है बर्मिंघम वाले, कहंदे ने जी बड़ी गर्मी पै रही है, गर्मी पै रही है तो मेरी कुर्सी दियां चीकां निकल रही ना, एवें तो नहीं चीकां निकल दिया कोई गल हो वे, चीकां निकल दिया ने कुर्सी दियां। तो सुनो जिनी देर तक असी कुर्सी का पता करने कि इनू क्यों अज गश पै रहे ने, साडा वजन तो वध्या कोई नहीं जनाब, असी पार्क दौड़ दौड़ के पार्क घसा दी है कि वजन साडा ना वधे जनाब, तो इनू क्यों साडा वजन वजन लग रहा। अच्छा जनाब वकास भाई की बात रह गई विचो विच, और उन्होंने जो विचो विच बातें की बड़ा हंसाया आपने, बड़े प्यार से बात की, बड़े मिठे हैं आप बिल्कुल जनाब। जे तुसी होर तुसा होर दो चार बारी जे मिकी कॉल की ना, तो मिकी डर पी गया मैं किधर डायबेटिक ना हो जावा, इतनिया मिठिया गल्ला सुने के खाने हो सवेरे, दुद्ध च अन्नी पाने हो या अन्नी विच दुद्ध पाने हो, इतनिया मिठिया गल्ला मार सुटे आए। और जनाब तुसा नल आरब साहेब शहजादे साढ़े मीरपुर ने, सिवोर ने, फाजल चौक ने, बिल्कुल जनाब फाजल चौक ने साढ़े ग्राई, गुजर खान वाले भी साढ़े ग्राई ने, लेकिन वो मनने नहीं ना, असा उन्हें कि गुजर खान ना जनाब अपना एड्रेस चाहिए दिता कोठी ना, पहला मकान ना एड्रेस दिता आने मकान ना आखो ना, काशिफ जी तुसा वलैती हो तो कोठी आख्या करो। बस जी हूँ तुसा नाल रही रही क्या कुछ सीखी जासा कि वलैतीए जनाब किस तरह गल्लां करने। खैर मैं हूँ खिड़कियां की खिड़कियां ना आखना, हूँ मैं विंडो आखना, तो दरवाजे की दरवाजे ना आखना, हूँ मैं डोर आखना डोर, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਅੱਜ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵਲਾਇਤ ਆਈ ਕਹਿ ਕੋਠੀ ਆਖਣਾ ਜੀਓ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਲਿਓ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾੜਾ एनीवे जनाब और जो भी कॉले हैं वो भी हम साथ साथ आपको बताएंगे आसम भाई हमारे जनाब वो सिर्फ हमारे हैं आपके नहीं हो सकते हैं उनसे बात करते हैं कॉल पे इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले आपको बताना है हमने क्या ये
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Allah ji, saadi kadi ne dar jade na sunrise radio ni kadi ne matabak time hoi gaya ne ta kadiyan apniyan chai kino ta malai kino jis tarah dil mile ve ta 2 baje ke 48 mint hoi gaye ne dihad ne
2: Sunrise music.
3: Looking for your dream home in Bradford?
4: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
4: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
4: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
5: Kullo nafsin zaikatul maut.
6: Muslim funeral service mein kafan dafan phoolon ka intizam islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke sath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service 4 Darfield Street of Lumland Bradford 1. Telephone 723030 that's Bradford 723030
7: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
8: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हमेशा आप मसरूफ रखते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं आपकी, लेकिन अच्छा हर बार मैं कहता नहीं हूं ये, वैसे कभी कभी मुझे खुद की बातें अजीब लगती हैं। मुझे लगता है मैं हर हफ्ते ही ये कहता हूं, हर संडे, लेकिन आज बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और जिन दोस्तों की कॉल्स मिस हो रही हैं, इंतजार करना पड़ रहा है, उनको मैं यही कहूंगा कि आपको पता है मेरा जिस तवज्जो से और जिस तरह से मैं हर एक से बात करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं फर्क ना आने दूं, चाहे कोई लेडीज में से बात करता है हमसे, हमारी बहनें, माएँ, बेटियां, जितने भी हमारे ख्वातीन कॉल करती हैं उनके साथ, जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई दोस्त कॉल करते हैं, मैं सबसे जनाब कोशिश होती है कि उनको ये मेरी अल्फाज की अदायगी में फ़ोन पे और फिर जब बात होती है उनको ये ना लगे कि मैं कोई जल्दी डाल रहा हूँ, कोई तावल पा रहा हूँ उन्होंने, या मुझे कोई सोड़ है उन्हें जाने की। तो मैं बड़े आराम से बात करता हूँ क्योंकि जब आपने कॉल मिलाई है तो आपने मुझे इज्जत दी है और जवाब में मेरा हर एक लफ्ज़ जो मैं अदा करता हूँ आपसे फ़ोन पे बात करते हुए, हंसी मजाक अपनाइत के साथ, आपको मैं ये फील करवाता हूँ कि आप किसी अजनबी को कॉल नहीं कर रहे बल्कि आप किसी अपने को कॉल कर रहे हैं, घर के बंदे को। तो आपको एक तो अपनाइत की फीलिंग आए, दूसरा आपको ये फीलिंग ना आए कि शायद मैं जल्दी डाल रहा हूँ, तेज़ तेज़ बात ना करूँ, आपको मैं तावल ना डालूँ। तावल का मतलब प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। तो इसलिए जनाब जब मैं आपको इंतज़ार करना पड़ता है उसकी वजह ये होती है कि मैं किसी न किसी कॉलर से बड़े आराम से उनके साथ बात कर रहा होता हूँ, तो जब वो फ़ोन रखते हैं या रखती हैं तो फिर आपकी बारी आती है। लेकिन जब आपकी बारी आती है ना, फिर किसी और की बारी नहीं होती है, फिर आप ही होते हैं हमारे नूरे नज़र। बिल्कुल जनाब। अच्छा जनाब, नूरे नज़र से याद आया, हमारे साथ अभी कॉल पे थे जैसा मैंने कहा आसम भाई, और आसम भाई के बारे में क्या बताएं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले उनका, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। हमारी दुआ है कि जितने भी जिनके भी पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं या इस साल गए हैं जनाब, इस ईद पे वो नहीं होंगे उनके साथ, हम दुआ करते हैं कि रब आपको सब्र दे और आपके पेरेंट्स के, आपके वालिद साहब या आपकी वालदा जो इस साल गई हैं इस दुनिया से, वो उनके दर्जात बुलंद करे रब की ज़ात। और हर एक जो दुनिया में शह है या फिर इंसान है वो दुनिया में आए हैं, उनको वापस लौट के रब ही की तरफ जाना है, क्योंकि हम उसकी तरफ से आए हैं, उसका माल है, उसकी चीज़ है, बनाई हुई मखलूक है और उसी की तरफ बरहक है कि वापस लौट के जाना है। अच्छा, कुछ लोग दुनिया में जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जैसे आसम भाई और उनके डैड, उनकी फैमिली, मेरे बचपन के दोस्त हैं आसम भाई और उनके वालदैन, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, हम बचपन में जाते थे, डोर नॉक करते थे, बेल करते थे, जिस इखलाक से उनके डैड की तस्वीर मेरी आंखों में है अभी। तो कुछ लोग ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाते हैं सोसाइटी में या आपके साथ, वो ऐसे बिहेव करते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक कि आपका दिल करता है आप उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करें। एक तरीका उनको याद करने का ये भी होता है, रोने धोने के बाद सब्र तो आ जाता है, औलाद को सब्र बड़ी देर से आता है, कमी माँ बाप की पूरी नहीं होती है। लेकिन जनाब जितने भी दोस्त जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे उनके साथ दुआ तो हमने की है, आपने यकीनन मेरी दुआ पे आमीन कहा होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपके पेरेंट्स के नाम, खास तौर पे आपके वालिद साहब के नाम, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनके हयात हैं, जिनकी दोस्ती है, जैसे मेरे वालिद साहब के साथ मेरी दोस्ती है, सबके वालिद जितने भी डैड्स हैं ना सुन रहे हैं, उनके नाम उनके बेटों की तरफ से, बेटियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सब डैड्स के नाम एक खूबसूरत सा गीत होगा, सेलिब्रेट करेंगे जनाब सब डैड्स और उनकी मेहनत और उनकी तवज्जो और उनके वक्त और उनकी यादों को और अपने बचपन को इस गीत के साथ, मगर ब्रेक के बाद।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day.
2: From
1: this
2: the Sky News
1: is Sunrise Radio.
2: Tropical nights on the
1: hour, every hour. This is Sunrise Radio.
2: Weekend. Tomorrow could see the hottest May day on record. Possible highs of 34 degrees Celsius are being predicted in southeast England. Climate scientist Dr. Chloe Brimacombe says warm nights at this time of year are problematic.
3: They've only started to occur in a greater number since 2000. This is bad because we can't cool down as much overnight, which means that we build up heat in our body more, especially for those that are most vulnerable to heat, of course.
2: The Prime Minister says it's right the sentences of two teenage boys convicted of rape are being urgently reviewed. The 15-year-olds were spared jail after two girls were attacked in separate crimes in Fordingbridge in Hampshire. The US Secretary of State says significant progress has been made over Iran. Marco Rubio's teased possible good news today about reopening the blockaded Strait of Hormuz. Police investigating Andrew Mountbatten Windsor are reportedly looking into a claim he behaved inappropriately towards a woman at Royal Ascot in 2002. The former prince has always denied any wrongdoing. Tottenham and West Ham are battling to avoid Premier League relegation on the final day of the season. Ryan Bromelow and Guy Swindles are at the key games.
4: Tottenham's destiny is in their own hands. All they need to do is avoid defeat here against Everton, but they're without a home win since December. Boss Roberto De Zerbi isn't taking anything for granted.
5: We are playing well. I think we deserve to stay up, but nothing is impossible.
6: Here at the London Stadium, West Ham have it against them. They must beat Leeds and hope Tottenham lose. Manager Nuno Espirito Santo says they need to do their job.
7: Leeds did a very good season. We played them before. It'll require the best of us.
6: Both games kick off at 4 p.m.
2: And Reform UK say they'd remove income tax for overtime worked above a standard 40-hour week if they get into power. Labour and the Tories are questioning how they'd pay for it. That's the latest. I'm Cam Hall.
8: You are listening to Sunrise Radio, the greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio. Enjoy!
9: Hit off the hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER. Call now 01274 491 442.

0: जी जनाब, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को, और जनाब सनराइज रेडियो पे आप हमें सुनते हैं। बिल्कुल जनाब, आपका अपना सनराइज रेडियो, बिल्कुल साफ और शफाफ आवाज में सनराइज रेडियो 100.6 FM, 103.2 FM, दुनिया भर में sunriseradio.fm के जरिए, नंबर एंडिंग विद 50। जनाब आप इंतजार नहीं कर रहे या कर रही, आप कॉल करते हैं चले जाते हैं, कॉल करते हैं चले जाते हैं। इस वक्त भी मैं एक और दूसरी कॉल पे हूँ। आंटी दीबा जी, आपने कुछ सवाल किए हमसे, हमने नहीं जी, नंबर एंडिंग विद 560। बिल्कुल जनाब, नंबर एंडिंग विद 560, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। हम आंटी दीबा जी के साथ इस वक्त गपशप में मसरूफ हैं, लेकिन हमें आने और आना पड़ा। आंटी दीबा जी भी इंतजार में है, कहते हैं उन्होंने कुछ सवाल किए हमसे, वो बताएंगे आपको बाद में। लेकिन अभी हमने बताया कि जितने भी बच्चे लोग हमें सुन रहे हैं, मैं भी एक बच्चा हूं अपने माँ बाप का, उम्र कितनी भी बड़ी आपकी हो जाए, तुम बुढ़े भी क्यों ना हो जाओ, माँ प्यो वास्ते बंदा बच्चा ही रहता है। तो जनाब आपके डैड के नाम जितनी भी बातें आप करते रहे, जितने भी यादें आपको इस वक्त इस गाने के साथ आपके दिमाग में फ्लैश करेंगी, जरूर करेंगी। जनाब ये हो नहीं सकता कि आपको यादें ना आपके दिमाग में आए, बचपन की यादें, जवानी की यादें। और अगर आप आंटी दीबा की उम्र में हैं तो मुझे मार पड़ेगी आंटी दीबा से। तो जी जनाब, आंटी दीबा की उम्र के जो भी दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, उनके डैड के साथ उनकी जितनी भी यादें हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस गीत के साथ। आपको याद होगा आपके पापा आपको क्या कहा करते थे, कब कब कहा करते थे, और आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। मगर एक बात हमने नहीं निकाली जो हमारे पापा हमें कहते थे कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा।
1: आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, Sunrise Radio के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो गया है 3:10, वो भी पूरे दे पूरे जनाब।

अब आप सुन रहे हैं अपने सनराइज रेडियो को, और अपने सनराइज रेडियो पे आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को। जी जनाब, मुझे कहते हैं प्यार से काशिफ कहते हैं। जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कॉल्स आज बहुत ज्यादा सारी आ रही हैं, और कुछ कॉलर्स जनाब मुझे लगता है आज इस गर्म गर्म मौसम में गर्मी ना खा जाएं, यानी कि रुस ना जाएं हमारे साथ, रुसियो ना साढ़े नाल, सानू मनाना को नहीं जे आंदा कसमे। अच्छा, ये बात सच्ची है, मेरी जितनी भी नाराजगी हुई है ना आज तक जिंदगी में, बड़े प्यारे

तेरे लोगों को मैंने खोया है, दिल मेरा हजार बार रोया है, लेकिन जनाब मनाना मुझे नहीं आता। और जो दोस्तियां मेरी चली हैं जनाब लंबी, वो उन सब दोस्तों में एक खूबी होती थी कि उनको मनाना आता था, तो वो मनाने में पहल करते थे। नाराजगी जब भी होती थी, आई डोंट केयर, वजह मेरी होती थी, कसूर मेरा होता था या सामने वाले का, तो वो जब मुझे मना लेते थे कोई, तो फिर जनाब हमारी दोस्ती चलती रहती थी। उनको पता होता था ना कि काशिफ बेचारे को मनाना नहीं आता। काशिफ को सिर्फ ईद मनानी आती है, वैलेंटाइन डे मनाना आता है, हैप्पी बर्थडे मनाना आता है, लेकिन रुस्से को मनाना कसमें नहीं आता ना। सीखूंगा ना, अब आपको नहीं खो सकता ना मैं। इससे पहले कि आप भी रुस जाएं और मुझे मनाना भी नहीं आता, तो मैं मनाना सीख लूं। चौधरी नूर हसैन जी, आज डायबिटिक कोसम है, आज मी की शुगर हो ही जासी। चौधरी नूर हसैन जी, इधर चौधरी नूर हसैन ते उधर जनाब सड़े नाल आंटी रानी सड़े नाल न। आंटी रानी जी लंबी जी लिस्ट हो सी, समान नी शॉपिंग नी, तो सा शॉपिंग करो ना, साढ़े नाल गल भी करो ना। पर यह है कि फिर जेड़ा बंदा साढ़े नाल गल करना तैन ओ ते राई भी रस्ता भटकी जाने। कई दोस्त असा कि आने असा तो राह ही भुली गए, इधर गड्डी मोड़नी सी, काशिफ जी तुसा नाल गल करने पे सा, ते पता नहीं किड़े राह पई गए, तुसा दी गल्लां विच गुम होई जाने। चौधरी रुखसार साहब जनाब ऐसी बातें करते हैं हमें, और काम को चुक के पता नहीं कितनी बुलंदी पर ले जाते हैं। उन्होंने कहा काशिफ साहब डॉक्टर कब से बन गए अब? मैंने कहा मैं और डॉक्टर? कहते हैं आप कह रहे थे ना पहले मैं गोलियां देता था, अब मैं टीके लगाता हूँ। अब मैं टीके लगाता हूँ, और आपने कहा जी काशिफ टीके वाला। जनाब ये नया नाम आपने हमें दिया है, और काश हम डॉक्टर होते फिर आप देखते जनाब कोई बीमार होता ही ना यहाँ पे। अभी हम अपनी आवाज़ से, अंदाज से और अल्फाज से जनाब आपका इलाज करते हैं। 3 घंटे का सिर्फ आपको सुकून मिलता है, कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी आपके नेड़े तेड़े दूर दूर तक नहीं आ सकती हमें सुनते हुए। ये समझे एक प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की आपके लिए। संडे के दिन आपको 3 घंटे की आपकी थेरेपी होती है। इसी तरह आंटी रानी अब शॉपिंग में भी मसरूफ हों, वो रह नहीं सकती हैं हमसे बात किए बगैर। चौधरी नूर हुसैन जी ड्राइविंग कर रहे हो, वो रह नहीं सकते हमसे बात किए बगैर। चौधरी रुखसार साहब अपनी फैमिली के साथ पार्क में जा रहे हैं काले ग्लासेस लगा के, क्योंकि इस मौसम में काले ग्लासेस बहुत सारी परेशानियों से मर्दों को बचाती हैं, तो इसलिए वो डार्क ग्लासेस पहने हुए हमसे बात किए बगैर रह नहीं सकते हैं। सोनिया जी पकाएं अगर पकोड़े इस गर्मी में, और बनाएं बिरयानी और हमें बताए बगैर वो रह नहीं सकती हैं। आंटी दीबा जी फलूदा खा नहीं सकती हैं, लस्सी पचा नहीं सकती हैं, आइसक्रीम चबा नहीं सकती हैं इस उम्र में, तो वो हमें ना बताएं तो बताए बगैर रह नहीं सकती हैं। अमर शहजाद जी C3 सेक्टर C3 फाजल चौक सेक्टर C4 थोथाल B3 नांगी F1 परानिया हटियां बोर्ड कलोनी F2 वन खुरमा खड़ी शरीफ। जनाब बिल्कुल मैं कोई कंडक्टर नहीं हूं किसी बस का, किसी ट्रक का, किसी सुजुकी का, किसी हाईएस का, किसी मजडे का, जी बिल्कुल मैं ड्राइवर या कंडक्टर नहीं हूँ, आवाज़ें लगा रहा हूँ। ये जनाब हमारी यादें ताज़ा हुई, आमिर शहजाद भाई हैं हमारे C3 वाले, और कहते हैं काशिफ जी आपकी बातें, एक तो मौसम गर्म, एक आपकी बातें गर्म, और बिल्कुल पसीने छूट गए हैं। मैंने कहा मेरा भी हाल यही है जनाब इस तरफ। कहते हैं काशिफ जी AC ला लो। मैं कह जनाब बाहर AC लासा अंदर के करसा, जो आपकी बातें सुन के दिल धड़क धड़क रहा है, जोर जोर से फड़क फड़क रहा है, कौन सा AC लगाऊं?
कि दिल की रफ्तार धड़कने की मतवाजन हो जाए, बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाए। आपसे बात करके जनाब दिल गार्डन गार्डन ऐसा हुआ कि दिल जनाब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने लग पड़ा। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब बात करते हैं, सामिया है जनाब, वो बैठी हुई है गार्डन में, कहती है काले सनग्लासेस नहीं लगाए लेकिन काशिफ गार्डन में बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और साथ में आपके गाने सुन रही हूँ, आपका शो मिस नहीं करती हूँ। मैंने कहा एक बार सुनेंगे तो एडिक्शन हो जाती है हमें सुनने की। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल एडिक्टिव सा एक नशा सा होता है, आप रह नहीं सकते। ये मैं नहीं कहता, ये हलीमा ने कहा है, मेरे कान में फूंक मारी है, बात डाली है, कहती है शुक्र है आप आ गए आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारी इस बात का गवाह है रब और ये हलीमा का ख्याल है हमारे लिए। वो जो भी कहती हैं दिल से कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा, आपका नाम देर से लिया मगर दुरुस्त लिया, वही बातें की जो आपने हमसे की। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब बात ही सामिया की, सामिया ने ये गाना फरमाइश किया है और हमें मिल भी गया हमारे सिस्टम में। थोड़ी देर से लगा रहा हूँ लेकिन सामिया मेरा पूरा शो सुनती हैं शुरू से लेके आखिर तक। दसो जी कोई ना रहते नहीं गया, रश पे है आज रश। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, बाकी दोस्त जो हमारे साथ कॉल पे जनाब उनसे गपशप करेंगे लेकिन

0: कहते हैं आपको एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और जनाब बड़ा ही जबरदस्त सा सिलसिला चल रहा है हमारा और आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल हम भी इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आंटी रानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बात करके हमेशा की तरह दिन बन जाता है हमारा, बल्कि पूरा वीक बन जाता है। और जनाब आज ओनियर बातें कर करके हमारा गला बैठे ना बैठे, आज ओफेयर गपशप करते करते ना मुझे लगता है कि गला हमारा बैठ जाएगा। और जनाब पहली बार आपने कॉल की, शालीम ही नाम था आपका गालिबन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया शालीम। आपने बताया कि आप किस तरह से बड़ा लंबा टूर एक करके उसकी आपने मेमोरीज हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। और आज आप कहते हैं आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप बहुत टायर्ड हैं और आराम से आप जो आपने वीक पूरा वीक या इससे ज्यादा की आपने जर्नी की है एक वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा ही होना चाहिए। और जिंदगी एक बार मिलती है, इसको अच्छे अंदाज से जैसे भी यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, यादें मेमोरीज नई नई जगह एक्सप्लोर करना। सो थैंक यू वेरी मच शालीम, आपने पहली बार नहीं बल्कि पहली बार में ही हमारा दिल जीत लिया, और आखिरी बार नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पहली बार हो, और आइंदा भी आपसे बात करने को हमारा बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा। और शालीम ने भी कहा जनाब बिल्कुल आप डॉक्टर लगते हैं मुझे, आपसे बात करते हुए बिल्कुल थकावट सी महसूस नहीं हो रही, हालांकि आप बहुत टायर्ड थे जी। बिल्कुल मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन वैसे ये काम भी डॉक्टर्स को करना चाहिए, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन ये जो सब कुछ लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, जैसे मैंने बताया कोई अगर पैदल आगे आ गया है, ग्रीन लाइट हो गई है तो जनाब गाड़ी वाले के सामने आ गया है कोई, और इतना झगड़ा बनाना या अपना मूड स्पॉइल करना छोटी सी बात पे, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। या कोई पैदल जा रहा है और गाड़ी वाला अचानक से निकल आया और वो पैदल जो है ना वो सारा दिन उस गाड़ी वाले को गालियां ही देता रहेगा, हालांकि वो गाड़ी वाला चला भी गया, मजे में अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आपका मूड खराब हो गया, ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको। जैसे पिछले दिनों में मेरे साथ क्या हुआ कि सच्ची बात है, बिल्कुल इस बात का भी रब गवाह है, जैसे आगे बातें की हमने, इतनी बातें बनानी नहीं आती हमें, आप सब हमें चाबी भरते हैं और जो बातें आपकी होती हैं वो हम कर देते हैं आके ओनियर, लेकिन ये बात आपने नहीं की, ये बात मेरी आप बीती है। हुआ क्या कि हम रोड पे जा रहे हैं और एक गली, एक तंग सी गली थी, और आपको पता है दाएं बाएं लोग अपने घर के सामने रोड पे यहाँ गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, ड्राइववे में पार्क नहीं करते हैं, तो लंबी सी एक लाइन थी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी गाड़ियाँ पार्क थी, एक मोहतरमा ग्रे गाड़ी में आ रही थी, अगर आपकी गाड़ी ग्रे है और आप वही मोहतरमा है तो ये बात आपके लिए, जो उस वक्त मैं नहीं कर पाया, पर आस्ते कटनी है ना सी कितने ना कितने, उत्तों असी पाए भी खाते ने, गर्मी भी अड्डी है, करिए तो करिए की, ठंडा पानी पी पी मरिए की करिए। तो जनाब वो जब आए उनके, उन्होंने बिल्कुल मेरे बराबर में, अच्छा वो बड़ी स्लो ऐसे आ रही हैं ऑपोजिट साइड से ना उस गली में मेरी तरफ से, मैं इधर से जा रहा हूँ, अच्छा मैं बिल्कुल स्लो पे, और मुझे पता था कि कॉमन सेंस ये कहता है कि वो ऑपोजिट साइड से आ रही हैं, उनके लेफ्ट पे जगह खाली भी है, अब वो मेरे सामने, वो मेरे राइट पे हैं, अपनी लेफ्ट पे हैं, अपनी अपनी लेन में गाड़ियां भी पार्क हैं दोनों तरफ। अब मुझे लगा कि मैं आराम से, एक गाड़ी गुजरने की जगह है और मैं आराम से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं उस गैप में पहले, और उनके लेफ्ट पे बिल्कुल गैप भी है और वो अपनी गाड़ी उस गैप में खड़ी करेंगी, कॉमन सेंस है। ड्राइवर हजरात जो मुझे सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग होती है बाज़ जगह, कॉमन सेंस होता है, खासकर जहाँ पे तंग गलियों में ऐसे गाड़ियाँ दोनों तरफ पार्क हुई हों तो आपको रास्ता देना पड़ता है, खासकर जब आपके आगे गाड़ियाँ खड़ी हों आपकी साइड पर, तो आपको बनता है बाय लॉ भी, इखलाकन भी, कि आपकी लेन में गाड़ियां पार्क हैं आपकी साइड पर, तो आप रुकें, सामने वाले की साइड क्लियर है वो उसको जाने दें। अच्छा उन मैडम ने क्या किया जनाब, जब उन्होंने देखा कि मैं गैप में पहुंच गया हूं तो लिटरली उन्होंने पांव दबाया लिटरली सामने पता लगता है कि उन्होंने जानबूझ के पांव दबा के ना गाड़ी अपनी बगा के बिल्कुल मेरे बराबर आ गई, और जनाब ऐसे मेरी गाड़ी भी फंस गई, उनकी गाड़ी भी फंस गई। अब मैं ड्राइविंग साइड की मैंने विंडो नीचे की हुई है, और क्योंकि गर्मी थी इन दिनों में सबके पारे हाई होते हैं, हम मर्द तो वैसे ही बर्दाश्त करने के लिए, ख्वातीन का जुल्म सहने के लिए, और दुनिया में जनाब जो भी हमारे साथ ज्यादतियाँ होती हैं हम उनको सहने के लिए दुनिया में आए हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो फिर वो ख्वातीन के पास एक कार्ड होता है, लेडीज़ कार्ड, वो वुमेन कार्ड खेलते हैं। सुनने वाले भी कहते हैं यार ये मर्द कितना रूड है, देखें बोल गया, औरत के साथ ऊंची जुबान में बात कर गया या औरत के साथ बदतमीजी कर गया। हालांकि मर्द मोस्टली 90% ये नहीं कि मैं एक मर्द हूं तो साइड ले रहा हूं मर्दों की, मर्द घर में हो या बाहर हो ना, कम ही ख्वातीन इस बात से एग्री करेंगी, अगर वो करेंगी दिल बड़ा अपना, कि मर्द 90% कर बात ठीक रहे होते हैं अपने घर के लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, अपनी घर की औरतों के लिए, या ऐसे मेरे अचानक से किसी अजनबी औरत से टाकरा हो गया, हम होते ठीक है, लेकिन हम मर्द जो है ना इतने सोसाइटी ने हमें लॉज ने इतना डरा दिया है ना, हमें पता होता है कि हम ठीक हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बोलेंगे हक की बात तो हम जनाब पहली बात तो रूड कहलाएंगे, बद अखलाक कहलाएंगे, और जेंटलमैन का जो टाइटल है ना हमें मिला हुआ वो हमसे छीन लिया जाएगा। ऐसा है ना, दिल को बात लग रही है सब मर्दों के, आई कैन फील इट, आई कैन लिटरली फील इट गाइज। कोई नहीं, आपकी आवाज़ यहाँ पे रेडियो पे बन के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बात ये हुई कि अब विंडो उनकी डाउन थी दोनों तरफ की, और हमारी भी विंडो डाउन थी, गर्मी थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो बिल्कुल जनाब मेरी आंखों में देख रही है, चंद सेकंड इसी तरह गाड़ियां दोनों पार्क, और हमारे पीछे भी गाड़ियां खड़ी हो गई, उनके पीछे भी क्यू बन गई। अब बड़े ही तहम्मुल से कूल माइंडेडली मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा, सीरियसली, मुस्कुरा के मैंने कहा सीरियसली, बिल्कुल वो बिल्कुल एक डेढ़ फुट की दूरी पे जैसे वो मेरे हैं और मैं उनसे दूर, मैंने कहा सीरियसली, मुस्कुरा के मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यस सीरियसली, और जना बिल्कुल डटाई के साथ, यानी कि ना बिल्कुल ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई मतलब होता ना बंदे को गलती का एहसास कि मैंने जानबूझ के पांव दबा के तेज गाड़ी करके उस गैप में मैंने आके ब्लॉक कर दी क्यू भी, उसका रास्ता भी, अपना भी, और सब कुछ। तो जना वो गाड़ी में बैठी ऐसी थी इस गुरूर के साथ, जैसे उनके अल्फाज में गुरूर लगा, आवाज का हमारा काम है, तो मैं कोई दिल की बड़ास नहीं निकाल रहा, मेरे पास बड़ास निकालने के लिए दोस्त भी है, फैमिली भी है, बड़ी जगह है जहाँ पे हम बड़ास निकालते हैं, और वो लोग दोनों हाथों से, दोनों कानों से बिल्कुल खुश हो गए हमारी बड़ास, और जो भी कह लें आप, रे की जगह काफ लगा लें बीच में, तो वो सब सुनते हैं, और सुनने के लिए बल्कि बेताब रहते हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ास नहीं, यहाँ पे स्पेशली है, मुझे बताना है मर्दों को, औरतों को, सबको कि प्लीज़ गर्मी है, गर्मी में गर्मी मत खाएं, अपनी तरबियत मत दिखाएं। और मज़े की बात यह है कि उन मोहतरमा के साथ पैसेंजर साइड पे एक साहब बैठे हुए थे, मुझे लगा जैसे उनके शोहर हैं, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, और उनकी पिछली सीट पे एक बड़ी प्रिंसेस सी बेटी उनकी छोटी बैठी हुई थी, 8-9-10 साल की, आई होप कि वो मुझे सुन रही हो। और यकीन करें कि जो पैसेंजर साइड पे जो साहब बैठे थे ना, वो ये सब सिचुएशन देख के उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली, मतलब वो मेरी तरफ देख ही नहीं पाए, और फिर लिचली उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जिस तरफ यानी कि ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब वो मेरा मेरी आंखों का मेरी तरफ देख ही नहीं पाए, वो अपने अपनी जो लेडी या बीवी या जो भी उनकी वो लगती थी रिश्ते में, उनकी ये हरकत देख के वो कुछ बोलना तो दूर की बात, वो मेरा सामना ही नहीं कर पा रहे थे। और लिटरली जितने भी हमारे पीछे क्यूज बन गई थी, वो सब भी सिचुएशन को देख के, उस लेडी की डटाई देख के, और जो भी कह लें आप नाम इस चीज़ को, तो वो बड़े हैरान थे। अच्छा, अब मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रिवर्स करना गाड़ी को शुरू किया, मेरे पीछे गाड़ियां भी थी, अब लकीली मेरी गाड़ी में वो जो कैमरा होता है आजकल की गाड़ियों में रिवर्स का कैमरा, वो लगा हुआ था। खैर, मैंने पीछे की गाड़ी पीछे की बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कि मेरी गाड़ी लग ना जाए, ठुक ना जाए, मेरे पीछे जितनी गाड़ियां थी उन्होंने तावन किया थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी गाड़ी पीछे की, और वो मोहतरमा यकीन करें बड़ी वो जिसको कहते ना अपनी जबान चसी की कहते ना डैश मार के, बिल्कुल वो डैश मार के गड्डी मेरे अगू इंज कट के, मतलब पता ये लगता था कि जैसे गाड़ी जिंदगी में दुनिया में रब ने उन्हीं को दी है और हम सब कोई कीड़े मकोड़े हैं। तो जनाब गाड़ी आपकी जितनी भी कीमती हो, लाखों पाउंड्स की हो या हजारों पाउंड की हो या चंद सौ की हो, हम सब में से जिस जिस ने कमा के गाड़ी ली है, मतलब हमें हमारे हस्बैंड ने गाड़ी लेके नहीं दी या हमारे हमारे डैडी ने अपनी कमाई की गाड़ी लेके नहीं दी, हमें किसी ने गिफ्ट नहीं की, हमने कमा के अगर गाड़ी ली है ना अपनी खून पसीने की मेहनत से, तो जनाब किसी की लाखों पाउंड की भी गाड़ी, मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी उससे ज़्यादा कीमती है। मेरी गाड़ी और आप सबकी भी गाड़ी आपको उस लाखों पाउंड की गाड़ी से ज़्यादा कीमती और प्यारी लगती होगी, क्योंकि आपने खून पसीने की कमाई से गाड़ी ली है। आपको आपके बड़े भाई ने बर्थडे गिफ्ट नहीं की गाड़ी और इंश्योरेंस ना, आपके हस्बैंड कोई अमीर थे और उन्होंने जनाब आपको गाड़ी लेके दी और साथ में इंश्योरेंस भी फ्री की, हमें फ्री की चीज़ें नहीं मिली हैं जनाब, हमने कमा के ली हैं हम सब ने जो हमें सुन रहे हैं। तो वो ऐसे जब कोई ओछापन करता है तो जनाब वो ओछापन चाहे कोई मर्द हो या औरत हो वो दिखाई देता है, और उनकी तरबियत उनके माँ बाप की या उनके हस्बैंड की शर्मिंदगी जो उनके सामने उनकी फैमिली होती है बैठी हुई, वो सबको शर्मिंदगी का बायस बना देती हैं ऐसी। और मोस्टली मैंने इसलिए कहा कि ख्वातीन वुमेन कार्ड जब खेलती हैं ना रोड पे मर्दों को नीचा दिखाने के लिए या इस तरह की चीज़ करती हैं, तो वो ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस इवन बनता है देखने वालों की नज़र में। हाँ हम तो मर्द हैं जनाब, जेंटलमैन के तौर पे हम बिल्कुल, हमारे पास एक टाइटल होता है हम उसको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का जनाब ख्याल रखा करें, किसी मर्द को आप देखती हैं मजबूरी में तो उसका फ़ायदा मत उठाएं अपना वुमेन कार्ड खेल के, बराए मेहरबानी इस बात को आज से पहले शायद ही किसी ने एड्रेस किया हो सब मर्दों के बिहाफ पे, लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत बार देखी हैं। तो इसलिए खैर मर्द भी बाज़ औक़ात ऐसा ओछापन करते हैं, गाड़ी इस तरह से बगाते हैं जैसे जनाब रोड उनकी मलकियत हो या उनके डैडी की मलकियत हो। तो रोड पे एक लॉ बना हुआ है, एक स्पीड बनी हुई है या क्रॉसिंग बनी हुई है पेडेस्ट्रियंस के लिए, पहले हक है जहाँ पे, या वैसे भी हमारे दीन में हुक्म है कि पैदल के लिए सवार जो होगा उसको रुकना चाहिए, पैदल का पहले हक है, साइकिल वाले का पहले हक होता है, आप गाड़ी पे हैं आप सवारी पे हैं तो आपका बाद में हक बनता है इखलाकी तौर पे भी जनाब। तो इसलिए जनाब ख्याल किया करें, जितने लोग आपसे माड़ी गाड़ी में हैं आपको लगता है कि आपसे कम कीमत है या पैदल हैं या उनके पास साइकिल है, तो प्लीज़ चार दिनों का खेल है ज़िंदगी का, उसके बाद मिट्टी के ढेर आपको मिलते होंगे कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए, बड़े बड़े तुरम खान आए, बड़े बड़े मिलीनियर्स बिलीनियर्स होके गए, बड़े बड़े टाइटल बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े मुल्कों के वज़ीर आज़म सदूर हमने देखे, बड़े बड़े जर्नल देखे हमने जिनके एक इशारे पे फौजें हिल जाती थीं अपनी जगह से, आज जनाब उनकी कब्रों पे देखें तो परिंदे जनाब परिंदे बीठे कर रहे होते हैं और उन बीठों को साफ करने वाला कोई नहीं है। तो जनाब ये बातें बड़ी दूर की बातें हैं, बड़े दिल की बातें हैं, बड़े वस्फ की बातें हैं, बड़े ज़र्फ की बातें हैं, बड़ी ही तरबियत वाली बातें हैं, कुछ माँ बाप की कुछ आपकी सिखाई हुई और कुछ ज़माने की, कुछ सड़कों पे धक्के खा के जो हमें देखने को नज़ारे मिले उन सब से। कोशिश है कि सिर्फ गाने ना लगाए जाएँ, कुछ सोसाइटी में कुछ आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाएँ। ये जनाब हमारे दिल की बड़ास नहीं थी, ये एक सबक था जो हमने सीखा, सोचा आप सबसे इतने सारे सबक और इतना सारी बातें सीखते हैं हम, तो क्यों ना आपके साथ एक बात शेयर की जाए जवाबन, शुक्रिया के तौर पे। आपके इतने शुक्रगुजार हैं, इतने सालों में हमने आपसे जो कुछ सीखा जनाब, कुछ एक बात हम भी कोई अक्ल की कोई हिम्मत करके ऐसी दिलेरी वाली बात की जाए जिससे कि कानों के पर्दे हिल जाए, दिल की धड़कने उनकी रफ्तार हिल जाए, मौसम गर्म हो के भी गर्म ना लगे, एसी वाली गाड़ी में बैठे हैं विंडो चढ़ा के तो आपको एक बार सर्दी नहीं गर्मी लगे, आपको लगे कि किसी ने बात की है, बात सुन के कानों से दुआ निकले एक दिन नहीं बल्कि पूरा हफ्ता, आपको लगेगा कि किसी ने बात की है कानों से धुआं निकालने वाली। चलें जनाब एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पे के बाद वापस आएंगे जनाब, आप सबसे गपशप करेंगे और ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अब जनाब वापस आएंगे अपनी बेतुक्की सी बातों पे, तुक वाली बात जब भी हम करते हैं तो बात दूर निकल जाती है। हजूर बोला है हमने आपको ना छेड़ा करें, ना छेड़ मलंगानू कुत्ते पैसन नी टंगानू।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303।
5: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जनाब मजबूर हूं मैं आपकी मोहब्बत के हाथों। शादीम भाई पहली बार आपसे बात हुई कॉल पे, थोड़ी सी मुख्तसर सी, और आपकी बातों में एक दर्द था। आपकी बातों में जनाब लगता था कि छलनी हुए हुए आप छलनी आप टैक्सी ड्राइवर हैं और साहब आप इतने खुश, आपकी आवाज में आपकी खुशी में जनाब वो जो जख्म थे ना, वो सारे उस दर्द को मैंने महसूस किया है। आपने कहा काशिफ भाई आपने एक रोना रोया है, एक जख्म पे से आपने ऐसे पट्टी हटाई है, आपने उसको इतने खूबसूरती से एड्रेस किया है, हम सब के साथ शेयर किया है, जिस भी नियत से हम समझ गए हैं, इसलिए जनाब कॉल किया। और हम टैक्सी ड्राइवर हैं और आपने कहा हम टैक्सी ड्राइवर से पूछें, ऐसे एक नहीं ऐसे 20 जख्म हैं हमारे, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाएंगे। अरे क्या बात है, आपको हमारी बात अच्छी लगी, आपने कहा ऐसे नज़ारे, क्योंकि आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो आपने कहा ऐसे नज़ारे आपको हर रोज देखने को मिलते हैं और आपका खून जलता है, लेकिन आपने कहा आज थोड़ा दिल को करार आया, इस जलते हुए खून को थोड़ा सा सुकून आया। काशिफ भाई आपकी बातें सुन के हाय। चले जनाब ये गीत खूबसूरत सा शादीम भाई के नाम, और जिस जिसको ड्राइविंग करते हुए हमारी बातों से कोई ना कोई चटपटी सी याद, ऐसा दुख ऐसा जख्म ऐसा साड़ा आपको याद आया, ऐसा नजारा याद आया जो आपने देखा होगा, जिस पे आपका सारा दिन मूड ऑफ रहा होगा। जनाब देखने वालों ने नजारे तो देखे होंगे ना ऐसे।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, इस वक्त जो सनराइज रेडियो की सोनी मन मोहनी घड़ी है, उसमें जो टाइम हो चुका है वो है 3:48, यानी के 3:48.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 0127-4288-252 पर कॉल करें।
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: बैक टू वेलकम। आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को सनराइजर रेडियो पे। जी जनाब, इस तपते हुए मौसम में कहते हुए बड़ा अजीब लगता है ना मौसम, और वो भी तपता हुआ, वो भी यूके में, वो भी ब्रेडफोर्ड में या इसको गिर्दोनवा में आसे पासे। अच्छा, ये किताबी लफ्ज जब मैं बोलता हूँ ना, गिर्दोनवा, इर्द गिर्द, तो मुझे बड़ा खुद भी अजीब लगता है क्योंकि मैं किताबी बंदा है नहीं हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी किताबें, बाकी सब क्लास फेलोज की जो किताबें होती थी ना, हमारे जो पीयर्स होते थे साथ में, वो सब जनाब उनकी किताबें फटी हुई, काली स्याह, कभी कुछ लिखा हुआ, हमारी किताबें, हाय हाय हाय। अम्मा जी जैसी लेके देती थी ना किताबें या डैडी, तो वो वैसी अब साल के आखिर में बिल्कुल कोरी, हाय हाय, कड़क कड़क, जैसे नोट नहीं होते बैंक से आप निकलवा के लाएं किसी की शादी पे वेले कराने के लिए। अच्छा, आपने कभी वेले नहीं कराई? अच्छा, आपकी शादी भी किसी ने वेले कराई हो गलती से? वो जो कड़क कड़क नोट होते हैं मेरी बात आप जो है ना, मैं जब कम कहता हूँ ना तो पास से ही समझ जाया करें, क्योंकि फिर जब मैं दूर निकल जाता हूँ तो फिर मुझे वापसी का खुद भी रास्ता नहीं मिलता। मैं इतनी दूर निकल जाता हूँ अपनी बात समझाने के चक्कर में आपको। अच्छा, तो बात मैं क्या कर रहा था वैसे? हाय, ये वेलां तक ते कड़क कड़क नोटां तक गल खींच गई, कसम भूल गया। ओ नो, ये क्या हुआ? गजनी, गजनी बन गया आपका काशिफ, देख ले आपकी मोहब्बत में बेड़ा गरक हो गया मेरा। और क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? क्या किस हद तक बेड़े गरक होंगे मेरे, आप बताएं। ओह नो, सच्ची बात भूल गया। वो नोट आए ना दिमाग में, कड़क कड़क वेले, वो जब छोटे होते वो शादियों पे वो वेले होती थी, तो हम ऐसे छलांगे मार मार के, छोटी सी निक्कर पहनी होती थी, शर्ट पहनी होती थी, मुझे याद है, कहीं से निक्कर पाट जाती थी, कहीं से शर्ट पाट जाती थी, पर नोट जो हम लुटते थे शादियों पे वो नहीं पाटते थे जनाब, वो हम मुट्ठी में बंद, पता नहीं कितने कितने नोट जनाब हम मुठियों में, उस वक्त वेले होती थी, लुटाते थे दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से, कई बार तो दुल्हन की चीखें निकल जाती थी जब वो ऐसे वेले फेंकते थे ना, वो कहती थी कि जी हाँ, और दूल्हे की भी चीखें निकलती हमने सुनी है। कोई परवाह नहीं करते थे हम, दूल्हे के कपड़े फट जाएं, क्या हो जाए, नोट बस मिलना चाहिए। हमारा ग्रुप होता था जनाब मोहल्ले में, गुड़ियां लूटने वाला, पतंगे लूटने वाला और वेले लूटने वाला, शरारती शरारती होते थे हमारे मोहल्ले में, बच्चे भी ज्यादा थे, 25-30 के करीब बच्चे थे, है ना आसम भाई? हमारे सीफोर में थे, हमारी गली में तो ज्यादा बच्चे थे, आसम भाई के तो थाल में पता नहीं बच्चे कम होंगे तो हमें नहीं पता। वैसे हम जब भी आसम भाई के घर जाते थे ना, तो उनको बुलाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, जो भी जड़ी कस जाना होता था डैम पे, तो मीरपुर वाले जानते हैं वो जड़ी कस बड़ी खूबसूरत जगह है, तो आसम भाई के अलावा हमें कोई बच्चा दिखाई दिया ही नहीं अपनी उम्र का। सुनसान गली होती थी, या पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते थे शायद वहां पे, पर पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं कि बच्चे कम हो उस गली मोहल्ले में। बरहाल एनीवे, देखा ना बात कहां से कहां निकल गई। अच्छा जी, हुमा जी ने कॉल की, हुमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कहती हैं बिल्कुल जी, औरतें वाकई ख़वातीन, बाज़ औक़ात ख़ातून होने का, औरतें अपना जो है ना वो औरत कार्ड, वुमेन कार्ड खेलती हैं, और ये ज़्यादती है मर्दों के साथ, और मैं हैरान हो गया खुशी से, मैं तो फूल गया हूँ, मेरे कपड़े मुझे छोटे हो गए कि एक ख़ातून ने आके मर्दों के हक में इस तरह गवाही दिया। उन्होंने कहा वाकई मर्द बेचारा हालात का मारा, हाय ठंड लग गई जनाब हमें, बिल्कुल दिल को करार आ गया। सब मर्द हज़रात खुश हो गए होंगे कि एक खातून ने आके इस चीज़ की गवाही दी है कि वाकई ख़वातीन बाज़ औक़ात ये ज़्यादती है आपकी तरफ से, आप मर्द हज़रात हक पे भी होते हैं, आप वुमेन कार्ड खेल जाती हैं, ना करें। बिल्कुल जनाब, मर्द होना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिसकी सज़ा हमें इतनी बार दी जाए और बार बार दी जाए, और हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए, हमारी आवाज़ हक पे भी हो उसको दबा दिया जाए। ही अंदर जनाब वो बड़ास भरी पड़ी है सभी मर्दों की कि जनाब वो हक की बात पे होते हैं बाज़ औक़ात और उन्हें वुमेन कार्ड खेल के जनाब उनकी बात सुनी नहीं जाती है या मानी नहीं जाती है। और जनाब हमारे साथ एक शाहजी रहे, उन्होंने भी हमारी आवाज़ में हम आवाज़ हुए। टैक्सी आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने कहा कि बिल्कुल काशिफ भाई हम रोड पे ये ज्यादतियाँ देखते हैं, होते हुए आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, बहुत शुक्रिया शाहजी आपका। आपने नाम नहीं बताया, आपने कहा शाहजी। शाहजी ब्रेक के बाद आपके नाम, हुमा जी आपके नाम, खूबसूरत सा गीत सभी सुनने वालों के नाम।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day.
2: Center at 4, Donald Trump says negotiations with Iran are proceeding in what he calls an orderly and constructive manner. The US president's posted on Truth Social how he's informed his representatives not to rush into a deal to end the war. He says both sides must take their time and get it right. Iran's president Masoud Pezeshkian issued this response.
3: We are ready to assure the world that we are not seeking nuclear weapons. We are not seeking instability in the region. We and those participating in the negotiations will in no way compromise on the country's dignity and honor in this regard.
2: The Prime Minister's backing a review into the sentences of two teenagers spared jail for a double rape. A judge at Southampton Crown Court told the 15-year-olds he wanted to avoid criminalising the very young boys. There's no reprieve from the heat this weekend. Temperatures have reached 31.6 Celsius in London's Kew Gardens, passing yesterday's high of 30.5 degrees. Tottenham and West Ham are battling to avoid Premier League relegation on the final day of the season. Ryan Bromelow is watching Spurs against Everton.
4: Tottenham's destiny is in their own hands. All they need to do is avoid defeat here against Everton, but they're without a home win since December. If it unravels, then West Ham United can take full advantage. Guy Swindles is at the London Stadium.
5: West Ham know they've simply got to win. Nothing else will do if they're to have a chance. Their home form's pretty good. One defeat in seven, and that was against Arsenal. They've just got to hope, though, that Spurs are Spursy. At the moment, it's 0-0.
2: While Arsenal will be presented with the trophy after their game at Crystal Palace, while Pep Guardiola's final game as Manchester City boss is against Aston Villa. And Bolton have won promotion to the Championship. It's after a 4-1 victory over Stockport County. That was in the League One playoff final at Wembley. That's the latest. I'm Cam Hall.
6: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
7: The hit of the hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो गया है 4:06।

काशिफ की तरफ से। मैं हूं आपका अपना काशिफ और सनराइज रेडियो को आपने ट्यून इन कर रखा है, इसके लिए आपका थैंक यू वेरी मचिस। जनाब पहले मैं बात करना चाहूँगा जो मेरे पर्सनल प्रोफाइल के जो दोस्त हैं जो मेरे साथ मेरे अपने मोबाइल पे साथ होते हैं व्हाट्सअप की दुनिया में या टिकटॉक की दुनिया में। लाइव तो मैं वहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन टिकटॉक के बहुत सारे जो मेरे टिकटॉक पे मुझे फॉलो करते हैं, फैंस हैं, फैमिली है, जितने भी हैं वो सोशल मीडिया पे जो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस साथ साथ कर रहे हैं मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सअप पे या जहाँ भी, आपको याद करना, आपका हौसला जो आप मेरा साथ साथ रहते हैं शो के दरमियान और आपके टिक टिक मैसेजेस आते रहते हैं सोशल पे या फिर व्हाट्सएप पे, आप सबका जिक्र जरूरी है। सबसे पहले जनाब तबस्सम है पाकिस्तान में, तबस्सम आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए आने वाला गाना होगा खूबसूरत सा, इसके सारे बोल, इसके लिरिक्स आप गौर से सुनिएगा, आपका म्यूजिक का जो टेस्ट है वो हमारे टेस्ट के साथ बड़ा मिलता है, इस उम्मीद में कि आप इंजॉय करेंगी और हमें बताएंगी कि आपको गाना ये कैसा लगा। बाकी आपने हमारी हौसला अफजाई की, आपने कहा गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, शो अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान में आप सुन रही हैं हमारे शहर मीरपुर में, बहुत बहुत शुक्रिया मीरपुर वालों। आसम भाई ने कहा जनाब सेक्टर C4 भूल गए मीरपुर का, जनाब C4 भूल गए असी दोबारा C4 चे जाना नहीं, फिर एक किस तरह हो सकना सा C4 भूली जाइए। जनाब बिल्कुल C4 वालों के नाम, मीरपुर वालों के नाम, कश्मीर वालों के नाम, अटक वालों के नाम, आंटी दीवा ने गौर गुश्ती की याद करवाई गौर गुश्ती वालों के नाम, और सारा जी आपको आप हंसे जा रही हैं आपके मैसेजेस से पता लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सारा जी, इसी तरह हंसते रहें बसते रहें अपने खर्चे पे। जबरदस्त है जनाब आप भी साथ निभा रही हैं हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा आपका शुक्रिया। आपका नाम लिया था लेकिन आपके मैसेजेस डेढ़ सौ हैं गलेबन, सारे पढ़ूं तो देर लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सामी, आपकी बात हो रही है सामी, ये बताएं और कितनी धूप लगवाएंगी आप गार्डन में बैठ के, क्योंकि आप कहती हैं जब आप हमें सुनती हैं तो आप फिर बाकी दुनिया से बेखबर हो जाती हैं, तो अगर आप बेखबर होके हमें सुनती नहीं और धूप में ज्यादा धूप लग गई और सन टैन बन गया या सन बर्न हो गया तो फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे कि काशिफ की बातों में खोई रही 3 घंटे, धूप लगवानी थी 30 मिनट और 3 घंटे धूप लगवा ली, फिर कोई सन क्रीम काम नहीं करेगी जनाब, 6 महीने लगेंगे आपका रंग वापस फिरने में। बहरहाल ख्याल कीजिएगा जनाब,

अब बात करते हैं जनाब, आपसे पहली बार हमारी बात हुई और आप आई, बड़ी स्वीट सी बातें की आपने। आपने कहा अताउल्ला जी का गाना कोई लगाना है, आपने गाना बताया है रखना जरा दिल को संभाल के, आए हैं वो महफिल में हटा के नकाब, कुछ इसी तरह गाना था ना। अब मैंने लिखा है लेकिन मेरी हैंड राइटिंग डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की तरह की होती है, लिखे मूसा ते पढ़े खुदा। बरा जनाब दुआ जी जरा बताइएगा कॉल करके दोबारा। हमने कहा आपको कि अगर ये गाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल है इसके, अगर मुझे लगता है शायद सिस्टम में ना हो, अगर सिस्टम में हुआ तो गाना लगेगा जनाब, लगेगा ठोक के लगेगा जनाब। और अगर ना हुआ तो तावला जी का कोई भी गाना, हमने आपसे इजाजत ले ली है कि वो जरूर लगेगा। और अच्छा जी, अनानमस कॉलर जो हमें कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, थोड़ी ठंड रखो इस गर्म मौसम में, हमारे पेट में मरोड़ उठते रहेंगे ईद के दिन अगर हमने पूरे हफ्ते की बातें ना कर ली रज रज के। आशा जी ने हमें आज एक ताना मारा है जनाब, वो हमें लग गया गोली की तरह, तीर की तरह हमारे सीने में लगा है ठा करके। उन्होंने कहा काशिफ पाए तो हम भी खाते हैं पर दिखाते नहीं हैं, शोखियां

नहीं मारते हैं। मैंने कहा ये आपका कसूर है, क्यों नहीं मारते शौकिया? जो खाते हैं वो बताते क्यों नहीं है? बताया करे ना, दिल जलाया करे ना, सबको बना चढ़ा के सुनाया करे ना। आपका कसूर है ना, हमारा कसूर तो नहीं है ना। हम तो खाते कम हैं, बताते ज्यादा हैं, पीते कम हैं, 3 कप कॉफी पीते हैं, बताते 4 हैं, बना चढ़ा के 2 होती हैं, 2 पास से लगाते हैं। आप क्यों नहीं लगाती हैं? इसमें क्या कसूर है हमारा? आपने कहा काशिफ, इतनी चार्जिंग हो के आते हो, पायों के अलावा क्या खाते हो? हमने कहा आप मोबाइल कब चार्ज करती हैं? हर रोज? कहती हैं मैं हर रोज चार्ज करती हूं, रात को, सुबह तक चार्ज हो जाता है। मैंने कहा अब सोचें, मैं 7 दिन चार्जिंग पे लगा रहता हूं, आप सबकी जुदाई में एक रात नहीं 7 रातें काटी हैं मैंने चार्जिंग पे लगे लगे। और 7 रातें नहीं, 7 दिन भी साथ में शामिल करें, 7 दिन और 7 रातें जो बंदा चार्ज होता रहे। आपका मोबाइल एक रात चार्ज होता है और पूरा दिन निकालता है, और हम पूरा हफ्ता चार्जिंग पे दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर हमारी बातों में सोचें किस तरह की इलेक्ट्रिक शॉक्स होंगे, चार्जिंग होगी। सच समझा आपने, वाकई बात सोचने की है। ये हाई वोल्टेज की जो चार्जिंग होती है हमारी बातों में, ये आपकी मोहब्बत की चार्जिंग है, आपके इंतजार की चार्जिंग है, आपसे दिल लगाने की चार्जिंग है। आपने खराब कर दिया सीधे सादे से काशिफ को, पर मेरे दिल का पता आपको किसने दिया ये तो बताएं। आपको हमें खराब करने का हक।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: जी जनाब, वेलकम बैक, बैक टू वेलकम। आपको कहते हैं ब्रेक के बाद। दुआ जी, आपने गाना कहा था रखना जरा दिल को संभाल के, आए हैं वो महफिल में नकाब उतार के, समथिंग लाइक दैट। वो गाना ताउला इसाक इलवी जी की आवाज में नहीं मिला। जी दोस्तों, ये गाना मैंने वादा किया था दुआ से कि अगर कोई भी गाना लगा दूं अपनी मर्जी का, वो गाना ना मिला तो वो रजामंद हो गई थी, इस बात पे हमारी डील हुई थी। तो जनाब, ये गाना मेरे दिल के बड़े करीब है और हाय बोल सुनिएगा इस गाने के गौर से। और मोहब्बत में कभी चोट आपको लगी हो, कभी दिल आपका दिल रखने वालों ने ही तोड़ा हो, कभी जख्म भरने वालों ने ही जख्म दिया हो, किसी ने जनाब जख्म दे के फिर इजहार माफी मांगने का भी ना किया हो, किसी का जो एक पल ना कटता हो आपके बिना ये दावा किया हो, और फिर मजे की बात इस दावे के बाद खुद से आप ही को दूर किया हो, आपने भी कभी आसमान की तरफ किसी की बेवफाई का शिकवा किया हो, तो ये गाना, ये गीत, इसके बोल, इसकी शायरी, इसका म्यूजिक, इसके लव्स सब आपके दिल के आर पार होने चाहिए। अगर ये सब मर्ज आप में है और ये सब इत्तफाकात आपकी जिंदगी में भी हुए हैं तो ये गाना नहीं, ये एक मरहम है आपके जख्मों पे। मिलके एंजॉय करते हैं और उन बेवफाओं के नाम जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, हमारा दिल तोड़ा, खिलौना समझ के, उन खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने हमारे दिल को, आपके दिल को खिलौना समझ के खेला। क्या कहते हैं, सही कहा ना।

और आप ईद मनाइएगा। आपने कहा आपको देखा नहीं तो ईद कैसे मनाए। मैं ठहरा सीधा साधा जलेबी की तरह। मैंने कहा क्या मतलब। कहती है चांद देख के ईद होती है काशिफ, आप वाकई बड़े भोले हो। मैंने कहा यकीन करें लोगों का वहम है, आप एक मुझे सही समझी है पता है। काशिफ बोला बाला सा। फिर मुझे आपकी बात समझ आई। आप टिकटॉक पे जाएं, काशिफ सनराइज रेडियो, काशिफ ब्रेडफोर्ड, काशिफ कुछ भी लिखें, काशिफ नाम का, आपको आपका काशिफ जनाब दिखेगा और आप मेरी वो फोटो और वीडियोस देख के टिकटॉक पे ईद मना लें। अगर हमारे देखने से आपकी ईद होती है तो जी सदके हर रोज देखें, हर रोज ईद मनाएं। हमारी वजह से किसी का हर दिन ईद हो जाए और क्या चाहिए हमें। हमारी बेशक हर दिन और हर रात की वाट लगी हो जनाब, कोई बात ही नहीं है। अच्छा जनाब कोई बात ही नहीं है सरकार, ये हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारे साथ वो कित्थे गया एथे ये। जनाब मैं अपना दिल नहीं देख रहा सीने पे हाथ रख के कि कित्थे गया मेरा दिन दिन दिन हाँ एक लंबी सी सांस ली है मैंने और वापस अब ट्रैक पे आते हैं। दिन नहीं दिल, दिल नहीं ढूंढ रहा था मैं, गाना ढूंढ रहा था। इस गाने की फरमाइश की है पहली बार कोल की शौकत बाई ने। गाने बताए दो आपने, एक आपने कहा हो सके तो मेरा एक काम करो। मैंने कहा बताएं जनाब क्या काम है, आपका काम भी कर देते हैं आज। कहते नहीं काम नहीं करना, गाना लगाना है। आप हंसे हमारी बात पे, मुझे पता नहीं लगा आप क्यों हंसे, ऐसे नजर ना लगे आपको, आपकी हंसी बड़ी खूबसूरत है हमारी तरह। हमें तो अपना वहम है खूबसूरती का, पर आपकी हंसी कमाल है, कातिल है कातिल है। ना हंसना किसी गैर के सामने, नजर लगा देते हैं लोग, जमाना बड़ा खराब है, दुनिया में एक बस इसी बात का तो अजाब है। सरकार आपने बोला हो सके तो मेरा एक काम करो, आगे आपका गाना और जनाब आपने दूसरा गाना भी दे मारा। आपने कहा एक की जगह बनी है दो, क्यों ना हो जाए। मैंने कहा हो जाए जनाब, बताएं दूसरा गाना। आपने कहा शादमानी गाना लगाएं जनाब, बॉक्सर फिल्म का। जनाब हम ढूंढ रहे हैं बॉक्सर फिल्म का गाना, अगर मुझे लगता है वो गाना नहीं है हमारे पास, और अगर वो गाना होता तो चासी आ जाती। और ठहर जाए चले मैं देखता हूँ अगर मिला तो, लेकिन मुझे पता है वो गाना हमारे पास नहीं है जनाब। मिल गया तो ठीक है, वरना एक और आने वाला गाना वो आपके नाम करेंगे, 90s का ही गाना होगा। मीन टाइम सोनिया हमसे नाराज हो गई थी, उन्होंने कहा जी काशिफ। मैंने कहा जी सोनिया। कहती है कुमार सानो के गाने लगाना लगता है आज पाए खाने के बाद आपके बस में नहीं है। मैंने कहा पायों का इसमें क्या जिक्र, क्यों आप ताना मार रही हैं। आशा जी को भी हमारे पाए, हमारे नहीं वो जो पाए हमने खाए हैं वो चुभ रहे हैं, उनको उनकी आंखों में बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हमने पाए खाए हैं और फिर खुल खला के सबको बताया है बार बार, कहीं आप भूल ना जाए कि हमने पाए खाए हैं आज गर्मी में। यार आदा काशिफ। और सोनिया जी भी उन्होंने कहा कुमार सानू के गाने लगाना आपके बस की बात नहीं, आज आपने पाए खाए हैं। यार ये क्या बात हुई, ये कोई बात है, ये कोई बात है। मैंने सोचा था मेरी बातों का कोई सर पैर नहीं होता, पर जो मेरे सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सारे वो मेरी तरह दे ये बेचारे सीधे सादे चले, बिल्कुल सादे आसी तुसी है ना। लोकी मंदे नी ना, लोकी शक बड़ा करते ने, अजकल वहम बड़ा करते ने, साड़ी सादगी ते त्वाड़ी सादगी ते भी लोकी शक करते ने ना, मैनू पता है। जनाब ये गाना खुशाब वालों के लिए, गुजर खान वालों के लिए, पिंडी वालों के लिए, इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद लाहौर कराची
सिंध पंजाब पाकिस्तान बलूचिस्तान इंडिया हिंदुस्तान यूरोप अमेरिका सऊदीया दुबई मीरपुर और वापस ब्रेडफोर्ड और सारे यूके वालों के नाम।

तुमने सुनी हमारे दिल की आवाज। वो क्या था कि मेरे दिल का ना तुम कत्ले आम करो, मेरे दिल का ना तुम कत्ले आम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। बहुत शुक्रिया परवीन जी। ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आपको एडवांस में, और आपने बहुत हंसाया। पहले तो मैं आपकी बातें सुन के थोड़ा सा घबराया। वो बात ये थी कि आपने कहा जी अगर आपको देख के किसी ने ईद करनी है, आपने रेडियो पे सुना किसी की बात कहते हुए कि काशिफ आपको देखें तो ईद मनाएं, तो आपने कहा कि जिसने भी काशिफ को देखना है वो मुझे बताए, मैं बताती हूँ काशिफ का अता पता। और आपने कहा फिर इस हिसाब से काशिफ मुझे तो हफ्ते में तीन तीन चार चार ईदें करनी चाहिए। मैंने कहा वो क्यों? कहती हैं हम तो आपको आपके मोहल्लेदार हैं, आपको तीन से चार बार बल्कि कई बार तो बार बार देखते हैं, तो हमारी तो फिर हर रोज ही ईद होगी। बहुत खूब प्रवीण जी। बिल्कुल अथी हर गल नहीं हर किसी दसीदा। तुहाडी ईद होंदी है ना, तुसन ईद हो जानी यार दुए दिन, तो ये ठीक है। बस जो तकने हो तो माशाल्लाह आखिया करो ना, तुसा खाली आर्न मारने हो, अर्न नहीं पहले माशाल्लाह आखी ना, अर्न तो दुनिया मारनी है। तुसा माशाल्लाह आ गया करो, मैं तकिया तुसा तकने हो तो माशाल्लाह को ना आखने, खाली असी के लगे जाने हो बस। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ईद नहीं होती खाली हमें देख के, हमारी भी ईद होती है, ईद होती है, ईद होती है, हम ठीक है। और संजय बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और संजय जनाब हमारी बातें इंजॉय कर रहे हैं पहली बार कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत आने वाला आपके नाम भी, आपने कहा अभिजीत की आवाज में कोई गाना लगा दो। जनाब कोई गाना क्यों लगाएंगे आपके लिए, हम ये गाना लगाएंगे और ये गाना हमें लेके जाएगा जहां कहीं भी लेके जाएगा, वापिस आएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी। संजय थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल वंस अगेन, आई होप इट्स नॉट द लास्ट टाइम, इट्स ओनली द फर्स्ट टाइम यू वाज रिंगिंग सनराइज रेडियो आपका अपना। आपने कहा पहले कभी आपने कॉल नहीं की रेडियो पे, जनाब आपने तो कमाल दमाल कर दी, और आपको मेरी जगह मुझे आपकी जगह होना चाहिए, ऐसी प्यारी बातें की आपने अभिजीत की आवाज में, खूबसूरत सा गाना मेरी तरफ से आपके लिए, बस ये बात किसी गैर को मत बताना। हमें जलती है दुनिया आपका और हमारे प्यार से पहले ही दुनिया वालों को और ना जलाना।

0: Sunrise Radio. Soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं। टाइम हो चुका है 4:45, यानी के 4:45।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: Looking for your dream home in Bradford?
4: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
4: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
4: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
5: Kullo nafsin zaikatul maut.
6: Muslim funeral service mein kafan dafan phoolon ka intezam islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke sath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.
1: जी जनाब, वेलकम बैक और बैक टू वेलकम। जनाब, जो दूसरों को इज्जत देते हैं वो खुद बड़ी इज्जत वाले होते हैं। शमरेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपने हमें ईद की दावत दी। ईद की मुबारकबाद एडवांस में आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को, आपके सभी कोलीग्स को। दे आर ऑल वर्किंग हार्ड और जहाँ कहीं भी दुनिया भर में और यूके, यूरोप में, यॉर्कशायर में, ब्रेडफोर्ड में आप काम पे हैं, जो कोई भी है जनाब, आप सबको वेल डन टू यू, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। और शमरेज भाई, कोशिश रहेगी ईद पे मैं कुछ और जगहों पे भी इन्वाइटेड हूँ और कुछ बिल्कुल घर पे भी मेहमानों का सिलसिला होगा, तो कोशिश रहेगी। मैं वादा नहीं करता लेकिन वादा कर भी लिया है, कोशिश होगी कि मैं हाजिरी जरूर लगवाऊं, जैसे हर ईद पे होती है हमारी मुलाकात। और रब दोस्तियां, यारियां, ये प्यार हमेशा हम भाइयों का कायम दायम रखे। और आप सब लिसनर्स के साथ भी जो मेरा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, आप भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अपना कहते हैं, ये मान आपका रब हमेशा कायम रखे। शादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एडवांस ईद मुबारक आपको। वाजिद भाई, एडवांस ईद मुबारक आपको। अशोक भाई, थैंक यू सो मच बेस्ट विशेस के लिए। वन एंड ओनली अशोक भाई, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, मजा आ गया बात करके, आपने जाते जाते हमें हंसाया। जुदाई का दुख जो है ना, वो बड़ा बड़ा बड़ा कड़वा होता है, छलनी हो जाता है सीना आपसे जुदा होते हुए, लेकिन अशोक भाई ने आज हमें हंसाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया आपको एडवांस ईद मुबारक, सना आपको, खुशबू आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम भूलते भूलते रह गया लेकिन दुआ आपका बहुत शुक्रिया। बर्मिंघम वालों आपका शुक्रिया, आशा आपको ईद मुबारक। और इसके अलावा आसम भाई हमारे ओल्डम में, ब्लैकबर्न में, जनाब उनको ईद मुबारक। तबस्सम आपको ईद मुबारक। आमिर भाई C3 वाले आपको ईद मुबारक। आरफ भाई आपको ईद मुबारक। शाहीन जी आपको ईद मुबारक। और सामिया आपको ईद मुबारक। हलीमा आपको ईद मुबारक। हुमा आपको ईद मुबारक। प्रवीण जी आपको ईद मुबारक। हफीज भाई आपको ईद मुबारक। चौधरी रॉकस्टार भाई आपको ईद मुबारक। आपके दोस्तों को ईद मुबारक। तारक जुल्फी भाई आपको ईद मुबारक। आपके दोस्तों को ईद मुबारक। शाहजी आपको ईद मुबारक। शॉर्ट एंड स्वीट कॉल थी आपकी। आंटी दीवा जी आपको ईद मुबारक। और संजय, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड फॉर योर स्वीट कॉल। शालीम

उनकी हमारी पहली जो दो कॉल्स थी उनमें से समीना जी की भी कॉल होती है हमेशा। समीना, आपको और आपके सभी फैमिली को, सभी जानने वालों को, दोस्तों को ईद मुबारक। वकास भाई, आपको ईद मुबारक।

शौकत भाई आपको ईद मुबारक। जनाब जितने भी दोस्तों ने कॉल्स की, आई होप कि मैंने किसी का नाम मैं भूला नहीं, अगर भूल गया तो आपको भी ईद मुबारक। और जिन्होंने कॉल नहीं की है और खामोशी से मुझे सुनते रहे, काम पे बिजी थे आप या फिर अपने हालात की मजबूरी की वजह से आप हमें कॉल नहीं कर पाए, या आपके पास क्रेडिट नहीं, आप कंजूस हैं, या आपका दिल पत्थर का है, आपको हमारे प्यार का खलूस का यकीन नहीं आया, जमाने ने आपको इतना डराया कि आपने हमको भी शक की नजर से देखा, तो आपके शक का, आपके इस ध्यान का, हमारी तरफ समातों के लगाए रखने का बहुत शुक्रिया जनाब। घड़ियां पहुंची जुदाइयों की, वह छोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके ही दिल में रहने की घड़ियां पहुंची, अपनी यादों में, बातों में, चाहतों में, और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। एडवांस में आप सबको ढेर सारी दुआओं के साथ, रब की बारगाह में ढेर सारे खलूस भरी दुआओं के साथ, आप और आपके अपनों के लिए आपको दिली ईद मुबारक। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। और जनाब हमेशा कहता हूं, रब आपको इसकी जजा दे, आपको इसका इनाम दे जो आपने इस बंदा ना चीज को टाइम दिया। मेरा हौसला बढ़ाते रहे आप कॉल्स करके, अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से, अपनी बातों से, मीठे मीठे बोलों से मेरा दिल लगाए रखा आपने, और इसी मोहब्बत की तलाश में, इसी मोहब्बत को पाने के लिए, इन्हीं दुआओं को अपने दामन में सजाने के लिए हम वापस आते हैं हर संडे 2 से लेके 5 बजे तक। तो रब आपको इसका अजर दे। और मैंने जिस नीयत और जिस लगन से आपका दिल बहलाने को, आपको इंटरटेन करने की कोशिश की, रब की मखलूक को, आप नहीं मेरा रब उसको अपनी बारगाह में कबूल करे। और रब की मखलूक का दिल बहलाने के लिए जिस नीयत से मैंने ये काम किया आज का, उस नीयत के मुताबिक मेरा रब मुझे अजर दे। घड़ियां पहुंची जुदाइयों की, बिछोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ियां पहुंची, यादों, बातों, चाहतों, और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत आपके साथ हमेशा की तरह होगी। एक बार फिर मुलाकात संडे दिन 2 से 5, तब तक अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपका और मेरा, मेरा और आपका, हाय अल्लाह ने के मान।

0: अपने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

नंबरदार प्या दिन मंगे वेख वेख सरपंच विखंगे नंबरदार प्या दिन मंगे वेख वेख सरपंच विखंगे मगर परे पटवारी पैड़ा

0: bring you the hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुए
5: खान।
6: हम शरीफ क्या हुए
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश
5: देखो मैं हूँ कहाँ
0: always

Assalamu alaikum and namaste. Shaykhal Khush Ahmadid. Welcome to Sunrise Radio 103.2 FM. Aapka host, dost, yahan bhi hazir hai. Mere naam Parvez, I'm here till Alhamdulillah, Biri Visham, aur aap sabke naam Rang-e Mehfil ka program hai. And today is amazing, amazing, amazing day. As you know, today is the 24th of May 2026. The weather has been such a lovey-dovey romantic mushroom. What an amazing, amazing mushroom. और हाउ इज़ योर दिल का मौसम आपको क्या कह रहे हैं और आज कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं व्हाट इज़ योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग आई नो एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह फॉर द हज मुबारक माशाल्लाह और हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ आपको मुबारकां मुबारकां देश की मुबारकां माशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो जो समा है माशाल्लाह और आपको पता है कि हज भी आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ईद भी आ रही है कुर्बानी भी होगी माशाल्लाह A lot of you are busy, busy with your life और कहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है और ये जो सिलसिले हैं माशाल्लाह आई यू लुक यू आपके पास फैमिली हैं दोस्त अहबाब हैं अजीज़ हैं उनके साथ आप अपना वक्त गुजार रहे हैं टाइम गुजार रहे हैं दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फैमिली हमेशा मैं कहता हूँ कि फैमिली ये वो टाइम है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ दोस्त अहबाब अजीज़ को दावत दें उनको इन्वाइट करें दैट इज़ वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एनी वे एंड टुडे एज यू नो टुडे इज़ संडे And you're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM across West Yorkshire and DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Minton Keene में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द Sunrise Radio app free of cost on from the Play Store, from the Google App Store, and that was all about. And बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं दमक रही हैं और हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे लाइनें जगमग जगमग कर रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और यहाँ पे

0: का हौसला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हिट ऑफ द आवर हम पेश करेंगे आप सब दोस्तों के लिए। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ब्रैडफोर्ड एक खूबसूरत शहर है माशाल्लाह, बहुत ही अमेजिंग फूड हो या क्या कहते हैं लिबास हो या कपड़े चीले, वो कहते हैं ना वो पंजाबी में कपड़े चीले, और यहाँ पर ब्रैडफोर्ड खूबसूरती है बिलीव करें। और यहाँ पर ब्रैडफोर्ड की खूबसूरती ऐसा लग रहा है कि हम दुबई में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह, और ब्रैडफोर्ड की रौनक यहाँ पर ब्रैडफोर्ड में खूबसूरत हैं और यहाँ पे माशाल्लाह, और हमें अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह आप सब ने इंजॉय करना है और अपनी शॉपिंग करनी है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अहबाब अजीजों के साथ। आप मेहंदी लें, कपड़े चीले लें, और क्या कहते हैं कि वो बंगल्स लें, और वो जो कश्मीरी बंगल्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, उनको भी लें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि हिट ऑफ द आवर पेश करना है आप सब दोस्तों के लिए होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे। हिट ऑफ द आवर, इंजॉय।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

0: that was the hit of the hour. और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, thank you very much. लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं, और हमें ये देख के सुन के बड़े अच्छा लगा कि आप सब ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है. और आज हमने enjoy किया, इतना खूबसूरत प्यारा मौसम है यहाँ पे यूके का, अनबिलीवेबल, माशाल्लाह माशाल्लाह. और अगले हफ्ते भी ऐसा ही होगा माशाल्लाह, और क्या कहेंगे. वैसे भी टुमारो इज बैंक हॉलीडे मंडे, माशाल्लाह लकी यू. और काफ़ी दोस्त अब छुट्टी मनाएंगे, डेफिनेटली मनाएंगे, और ये हो रहा है. और यहाँ पे ब्रैडफोर्ड में इतना खूबसूरत मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है. और आज जो नेज़ाबाजी हुई है माशाल्लाह यहाँ पे ड्यूजबरी में भी, ब्रैडफोर्ड में भी माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा लगा. और काफ़ी दोस्तों के साथ मुलाकात भी हुई है. और हमारे एक मोहतरम भाई हैं जो हमें, उनको हमेशा ही मैं सलूट करता हूँ, और क्या कहने, उनको से भी आज मुलाकात हुई है. इमरान रियाज साहब हैं, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे पाकिस्तान की, और क्या कहेंगे, हमारे अंकल भी हैं, हमारे टीवी प्रेजेंटर भी हैं माशाल्लाह. और इमरान रियाज साहब से बात करके बड़ा ही अच्छा लगा. ही इज़ वन ऑफ देम पर्सन द आई ऑलवेज एडमायर, जो भी अच्छा काम करते हैं मैं उनको सलूट करता हूँ, हमेशा ही हौसला अफजाई करता हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, उनसे मुलाकात करके, वो कहते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन का, दिल बाग बाग हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी. और आज मैं दो तीन महफल छोड़ के आया हूँ क्योंकि आपकी वजह से, आपकी क्योंकि मैंने प्रोग्राम करना था, और दो तीन माशाल्लाह काफ़ी जहाँ पे रौनक लगी हुई है. आज हमने बारबेक्यू वगैरह भी किया है, आपने भी किया होगा, डेफिनेटली इन्जॉय किएगा फैमिली के साथ, और हमने भी फैमिली के साथ इन्जॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to the Sunrise Radio clock, it's 17 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Parviz Khan. And I'm not going to ignore anyone because calls are coming a lot. And after a little while, I'll call all of them. Fardan, who I remember. Mashallah. Today, really, our Eid is going to be. And what is it? All of them are coming, mashallah. And wajiva. And it's so beautiful the summer. है जो आने वाले दिन है माशाल्लाह. और वही बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमारे लिए भी और आप सबके लिए जो 8, 9, 10, 11, 12 वो जो तारीखें, वो जो दिन हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला दिन है. और हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी होंगे डेफिनेटली माशाल्लाह, और ऑल द मुस्लिम उम्मा के लिए. और आज हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी हुई है, इज्जत दी हुई है, हौसला अफजाई करते हैं सबकी, और आप हमारी करते हैं, और हम आपकी करते हैं. और हमेशा मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे और इज्जत है, और पैसा हम खुद को मानेंगे, क्या हाल है. और वही बात हो रही है, और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे. कीप लॉक्ड विद सनराइज रेडियो.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
4: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत.
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise, definitely. और यहाँ पे हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया. आपने सबसे पहले कॉल आई है, हमारे मोहतरम भाई हैं चौधरी रुखसार भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे भाई. वेलकम जी, अन खुश आमदीद आपको भी, और हमें अच्छा लगे हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. देन वी आर लवी कॉल फ्रॉम गिदन भाई हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारी पापी जान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अतिकर साहिबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सोनिया जी हैं फ्राम ओल्ड वे फ्राम बर्मिंगम, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. देन वी हैड अ लवली कॉल फ्राम चौधरी फ्रियाज साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. वेलकम जी, अनु खुश आमदीद आपके लिए भी. और देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम वाजिद भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. चौधरी फ्रियाज साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. और दिल गार्डन गार्डन गार्डन होकर दिल बाग बाग हो गया, आप हमारा साथ दे रहे हैं. राजा शुएब भाई हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा. और नशीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. ठास यू आर रिंगिंग मी, और ठास बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच है, और हमें अच्छा लगे आप हमारा साथ हैं, हमें फ्लश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच है। नशीन जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपने हमें याद कर रहे हैं, बड़े अच्छे अल्फाजों में आपने याद किए हैं, दुआएँ दी हैं, और हमें और क्या चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, तारीफ करने का, उजार अफजाई करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और शामा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, फ़ोन करने का, उजार अफजाई करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गीत मैं आप दोस्तों के लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और फर्दन फर्दन मैं सब के लिए गीत पेश करूँगा, और मैं किसी का भूला नहीं हूँ, और जो मुझे विद हेल्प नंबर मुझे फ़ोन कर लें, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल में मेरी प्यारी बेना होंगी, और बेना को भी हम वेलकम कहते हैं, जी हाँ कहते हैं, खुश आमदी करने सितारा बेना होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, आपने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमें अच्छा लगा कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और यहाँ पर हमने ये गीत पेश करना है, एंड आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, बहुत ही खूबसूरत गीत है, और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ हमारे चौधरी फरियाज साहब आपके लिए, और आपकी पूरी टीम के लिए, खूमी फ्रॉम नशीन साहब की तरफ से होगा, आप दोस्तों के लिए होगा, नशीन जी आपकी तरफ से चौधरी फरियाज साहब के लिए होगा, और हमारे मनीष साहब चक्की वाले हैं उनके लिए भी होगा, हमारे किदन भाई हैं, सुमित्रा जी हैं उनके लिए भी होगा, और अतिका साहब आपके लिए भी, ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया गीत आप दोस्तों के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे, और सिमी जी ये गीत आपके लिए होगा, चौधरी फरियाज साहब ये गाना आपके लिए, और खूमी फ्रॉम नशीन साहब ने आपने उन्होंने फरमाइश की आपके लिए सुनने की, और ये गीत इंजॉय।

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून। और चौधरी फरियाज साहब, आपने गाने को पसंद करें, इंजॉय करें, हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा साथ दे रहे हैं। और आपने भी शुक्रिया अदा किया है नशीन साहब का, जो इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत गाना जो आपके लिए नशर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने दोबारा फ़ोन करें, और आने वाला गीत भी आपके लिए भी होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। और राजा शोएब भाई, ये गीत आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। सोनी जी, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है और बड़ा ही वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक। और ये गीत आपके लिए, और यही गीत मैं पेश करूँगा। और हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी उनकी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। ठास, दिस इज अ ट्रैक आई एम गोना बी प्लेइंग फॉर यू, आई होप यू गोना एंजॉय ट्रैक वेल। और राजा शोएब भाई, ये गीत आपके लिए, वाजिद भाई, ये गीत आपके लिए होगा, आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। और सोनी जी, मैं आपको भुला नहीं हूँ, और थोड़ी देर के बाद आपके लिए गीत होगा, ज़बरदस्त गीत होगा, और ये गीत आपके लिए और सुनने वालों के लिए होगा। एंजॉय द ट्रैक।

Right, and that was a beautiful track. और आपने enjoy किया बहुत और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया. टास दिस नेक्स्ट ट्रक इज गोइंग आउट टू यू और यही गीत मैं पेश सुनी दी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. यू आर लिसनिंग टू मी बर्मिंघम और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया और हमें अच्छा लग रहा है और यहाँ पर रुनकें रुनकें हो रही हैं और लाइफ इज़ बिजी बिजी बिजी बिजी और एवरीबडी इज़ बिजी और हमें अच्छा लग रहा है ये सुन के भी. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड यू आर लविंग द शो, यू लविंग द प्रोग्राम एंड यू आर सिटिंग इन द पार्क एंड हमें अच्छा लग रहा है और रेडियो को भी सुन रहे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अब हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और जो शॉपिंग में है और शॉपिंग मॉल में है और आपके लिए भी आने वाला गीत मैं पेश करूँगा. और ब्रैडफोर्ड में हमेशा मैं कहता हूँ कि ब्रैडफोर्ड इज़ अमेजिंग. सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रैडफोर्ड में है सनराइज रेडियो और ये बहुत बड़ा काम है और कमाल हो गया. और उसके बाद खाना पीना हर चीज़ जो है ना ब्रैडफोर्ड भी खूबसूरत है. और आजकल के मैं क्या कहूँगा कि इतना खूबसूरत जगह है शॉपिंग के लिए. दुनिया कहाँ कहाँ से आ रही है और ब्रैडफोर्ड में वाकई रौनक हो गई है कि दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं. और ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जो जाने वाले हैं कहते हैं कि हम ब्रैडफोर्ड में आए हुए हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप आए हैं बर्मिंघम से फ्रॉम नेल्सन से आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और शॉपिंग कर रहे हैं ब्रैडफोर्ड में और वाह जी वाह क्या कहने जी क्या कहने. और वहाँ पे भी रौनक लगी हुई है. मैनचेस्टर में भी बर्मिंघम में भी रौनकें लगी हुई हैं और क्या कहने. जो बर्मिंघम में हमारा प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं सोनी जी ये गीत आपके लिए. एंजॉय द ट्रैक.

वाजी वाजी, क्या कहने जी, बड़ा ब्यूटीफुल ट्रक गोइंग बैक इन आशिकी टाइम, और क्या गीत, खूबसूरत गीत, और मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रक। और राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और इसका जवाब जो ना वो आपको मिलेगा हवा के दोष में, ठीक है। चौधरी फिराज साहब हम पूछेंगे हवा के दोष में, और क्या कहने मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत आपके लिए होगा और चौधरी फिराज साहब की पूरी टीम के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। अन खूमिंग फ्रॉम राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को भी, और वेदर को भी इन्जॉय करें, काम साथ में कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुन के मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। और आपने फ्री में दूब लगा रहे हैं कहला, और फ्री में विटामिन, क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, और वेलकम आपके लिए भी। और यही गीत मैं पेश करूंगा चौधरी रुखसार भाई, ये आपके लिए भी होगा, और बिस्मिल्लाह आपको भी वेलकम वेलकम जी है ना, खुश आमदीद आपके लिए भी। और हमेशा ही मैं कहता हूँ कि यह गीत आपके लिए भी होगा और सब सुनने वालों के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँगा, ठास दिस नेक्स्ट ट्रक इज गोना गो आउट टू यू, एंड आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, और बहुत खूबसूरत गीत है, और वन ऑफ माय फेवरेट। ये गाना इतना मशहूर हुआ है, इतना मशहूर हुआ है, इतना मशहूर हुआ है कि सब ने इस गाने को कहते हैं कि गुनगुनाया है, और सब ने गाने को रिक्वेस्ट भी किया है। और ये जो गाना है रीमिक्स में दोबारा वो आ गया है, वो हमारा यहाँ पे वो पुराना ही है, और यहाँ पे रीमिक्स नहीं है, पर गाना बड़ा मशहूर है, बड़ा ही प्यारा गीत है, बिलीव करेंगे। और इतना मशहूर हुआ है, और आई वाज द वन यूज्ड टू प्ले दिस ट्रैक क्वाइट ऑफ्टन, और हर प्रोग्राम में इस गाने को मैंने शामिल किया है, और बड़ा ही शानदार गीत है, बड़ा ही प्यारा गीत है, और बिलीव करें कि इतना खूबसूरत गीत है कि मैं क्या कहूँगा इसके बारे में। और जिन्होंने दोबारा इसको रिलीज़ किया उनके भी मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, कि बड़ा ही प्यारा गीत है। और इस गाने को बिलीव करें, हर बंदे ने इस गाने को गाया कहाँ जहाँ पे भी हो, और क्योंकि ये गाना जो है ना थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा डिफरेंट गाना है, बड़ा ही प्यारा गीत है, और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप सब इंजॉय करेंगे। और स्पेशली शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी ड्राइव कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और आप भी डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा। डॉक्टर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर, और आपने भी हमें इन्वाइट किया है। देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किधर जाना है, किधर जाना है और किधर आना है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। ऑन अ लॉट ऑफ यू प्रॉब्ली यू गोना सेलिब्रेट मोर बैंक हॉलीडेज वेल। और इतना प्यारा मौसम है ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में, वाओ अमेजिंग। और काफ़ी दोस्त अहबाब अजीज जो हमारे वो इन्जॉय कर रहे हैं ब्रैडफोर्ड में, सेंटर में, सिटी सेंटर में, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि वाटरफॉल्स है वहाँ पर, और सब इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, बड़े भी इन्जॉय कर रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, और क्या कहने जी, क्या कहने। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और काफ़ी पब्लिक इज़ आउटसाइड है, और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और ये कि बड़ी खूबसूरती यहाँ पे कि सब इन्जॉय करते हैं, मौसम अच्छा होता है, एवरीबॉडी हैप्पी, एवरीबॉडी हंकी डोरी इज़ वेल। और ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ, इन्जॉय द ट्रैक।

0: Right, that was amazing tune और आपने enjoy किया. Definitely बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि that was for you. और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक करना है क्योंकि जो हमारे हेडफोन हैं ना वो मुझे कह रहे हैं कि आपने टाइम चेक करना है. और ये भी देखो कमाल हो गया. देखो यहाँ पर सिस्टम जो ना वो कहते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हो ना. और क्या कहेंगे, वाह जी वाह, क्या कहने जी क्या कहने. और ये भी आपने हमें क्या कहते हैं गा किया है और हमें रिमाइंडर किया है कि आपने टाइम चेक करना है. देखो ये होती है खूबसूरती होती है. देखो
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunday radio clock, it's 45 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक करनी है. ब्रेक के फौरन बाद एक खूबसूरत गीत होगा. और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों के लिए जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबे अजीज हैं जो मुझे फ़ोन कर चुके हैं. उनके लिए भी होगा जो करने वाले हैं, उनके लिए भी होगा जो मेरे साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी जो नए लिस्टर हैं, उनके लिए जो आने वाले हैं, उनके लिए डेफिनेटली तो होगा. क्या ख्याल है, जो चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्नर हैं. और ये भी एक टेक्नोलॉजी होगी, हमें पता लग गया कि कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुनता है और कौन कौन सुन रहा है. और ये भी खूबसूरती है, देखो ये टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ जो ना टेक्नोलॉजी है. और टेक्नोलॉजी में क्या कहूँगा, और वही बात होगी ना कि दुनिया तो चांद पर पहुँच गई है. क्या ख्याल है, और क्या कहने क्या कहने. और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे. कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: Sophie Jewelers, 119-2121, Oakland, Bradford 9, telephone 01274-056-014, Sophie Jewelers.
4: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई. चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें. पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू नेट रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। एंड मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक व्हिच आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर हमारे मोहतरमे, और उनके लिए गीत होगा, उनके दोस्तों के नाम होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि वो इन्जॉय करेंगे। मदशक की अनिस साहब हैं, उनके दोस्तों के नाम हैं चौधरी फैसल साहब हैं, राजा आसफ साहब हैं, राजा बशारत हुसैन हैं, राजा नबील सफदर कियानी साहब हैं, राजा यासीन साहब हैं, जंगीर साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं। ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन गानों को और इन के लिए ये जो गाना मैं पेश करने जा रहा हूँ आप पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दे रहे हैं। मदशक कियानी साहब, क्या बात है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, आपके दोस्तों के नाम होगा। मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूंगा क्या कहने जी, क्या कहने, और आप दोस्तों के लिए होगा। और ये कौन है हमारे साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे चौधरी फियाज साहब हैं, अतिका साहब हैं, राजा शुहेब साहब हैं, और वजद भाई हैं, ठाज हैं, और शुहेब भाई आपके लिए भी होगा, और नोफगे सोनिया जी आपके लिए भी होगा, गिदन भाई, पापी जान सुमित्रा जी आपके लिए भी, नदीम मंसूर साहब आपके लिए भी, सिमी जी आपके लिए, भाई रुखसार भाई ये आपके लिए भी, और रानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके लिए भी गीत होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और ये वो खूबसूरत गीत है जो पेश करने जा रहे हैं, सब सुनने वालों के लिए होगा। सिमी जी ये गीत आपके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एज वेल, और आपके मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सईद एहसान है जो हमारा साथ दे रहे हैं लंदन से, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका भी। इशफाक रसूल साहब हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, वेलकम। और राना नबी साहब आपके लिए भी गीत होगा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके राना साहब, ये गीत आपके लिए होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और स्पेशली नदीम मंसूर साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ये गीत जो है थोड़े से हट के गीत है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जो गीत क्या कहते हैं कि जो ने दो तीन ऐसे गीत हैं जो मैं हमेशा में पेश करता हूँ, वो इतने खूबसूरत गीत हैं, इतने प्यारे गीत हैं कि उनकी जो शायरी है कमाल की, बेमिसाल। और वही गीत पॉपुलर हो जाते हैं, वही खूबसूरत हो जाते हैं, और उनके फले गाने को हमें सुनने को मिलते हैं, और आप गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गाने इसीलिए किए होते हैं कि आप गुनगुनाएं, और इसीलिए खूबसूरती जो है खूबसूरती है, और एक दूजे के साथ अच्छा तावन करें, एक दूजे के साथ अच्छा सोचें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ। और ये वो दिन हैं जो खूबसूरत, वैसे भी हर दिन जो है ना खूबसूरत हैं। कहते हैं अखलाक जो है ना बहुत तो बड़ी चीज़ है, अखलाक है, और उसका कोई खर्चा नहीं होता है। बिलीव करने का अखलाक का कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा है तो आप मुझसे ले सकते हैं, और 01274306666 पे। और अखलाक का कोई खर्चा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितना खर्चा होता है अखलाक के लिए, ठीक है, अखलाक अहमद के लिए नहीं, अखलाक के लिए, ठीक है। और वही बात हो रही है यहाँ पर, और ये वो गीत है, इन्जॉय द ट्रैक।

राजा, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और आपने एंजॉय किया। मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक और शालीन आपने हमें याद किया ऑल द वे फ्रॉम लंदन और ये गीत आपके लिए का, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और मिस्टर एंड मिसेज पटेल आपका शुक्रिया गुजार ममनून आपका एंड आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून है। और मैं देख रहा हूँ टाइम भी देख रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ। एनीवे आई विल प्ले दिस ट्रैक फॉर यू और व्हेन आई कम बैक आई विल प्ले द हिट ऑफ आवर फॉर यू और आप दोस्तों के लिए और ये गीत सब सुनने वालों के लिए मुझे आप एंजॉय करेंगे। ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स, एंजॉय।

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, और यहाँ भी लाइक और सिलसिला है, और हमारा साथ देने तीकर साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से हैं। वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: आप ठीक ठाक? उससे ठीक है आपकी?
1: सब आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसे जा रहा है आपके रवा दवा, और आज का दिन कैसे जा रहा है?
1: आज का दिन तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन भी है।
0: माशाल्लाह बहुत शुक्रिया।
1: और आपके साथ जो महफिल है आज की, वो भी इसी मौसम की तरह है।
0: माशाल्लाह क्या कहने,
1: सूरत और रात के जो सोने हैं वो उससे भी ज्यादा हसीन है।
0: वाजी वा, क्या कहने
1: की तरह बहुत खूबसूरत सॉन्ग लगाया आपने।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज किया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह सब एंड तक ऐसे ही होगा
0: इसी
1: देता
0: जी।
1: तो आपका शुक्रिया, आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और सब आपके प्रोग्राम में
0: जी

0: माला जो भी ये फर्जंद आ रहे हैं और उनका कमाल है और खूबसूरती ये इसी में है कि आप सब आ रहे हैं और शिरकत करते हैं प्रोग्राम में, और जो अल्फाज में हमेशा यूज़ करता हूँ खूबसूरती का, ये आप सब जो है ना खूबसूरत है माशाल्लाह जी।
1: ये प्रोग्राम जो है ना ये सिर्फ आप जब पेश करते हैं तो सब दौड़े आते हैं, क्योंकि ये सब आपके अखलाक की वजह से है।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: क्योंकि आप इतने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इतनी खूबसूरती से सब उसमें हिस्सा लेते हैं और वो खूबसूरत बन जाता है प्रोग्राम। ये बहुत बड़ी वजह है कि आप इसको खूबसूरत, उसका आगाज ही बड़ी खूबसूरती से होता है।
0: जी वाह जी वाह,
1: माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे।
0: चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। और क्या कहते हैं कि अरशाद भी आ गया, अखलाक भी आ गया, तो वो हाजिर हैं और नाजिल हो चुके हैं और उनको भी हम वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और आज कौन क्या लेके आए हमारे लिए?
1: सबसे पहले तो मेरी सखी सहेली हैं, उनको सबको सलाम करते हैं
0: जी।
1: सुमित्रा जी हैं
0: जी,
1: गीदर भाई हैं, उनकी लास्ट वीक उनकी बर्थडे थी।
0: हाँ, गीदर भाई के मैं कह रहा हूँ आज भी मैंने मनाई है उनकी बर्थडे, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। वाह,
1: उनकी बर्थडे पे मुझे मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी एंड मैंने उनको विश किया था, उनको मैसेज भी किया था। अल्लाह पाक उनको हमेशा ऐसे ही रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ
0: जी, माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है, सब ने मिलजुल के माशाल्लाह उनको विश किया, ये बड़ी खूबसूरती है
1: जी। सब मिल के खुशी मनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है,
0: बड़ी बात है।
1: तो रेखा जी हैं, नसीन जी हैं, और सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखाना अफजल जी हैं
0: जी,
1: और चौधरी फरियाद साहब हैं।
0: वाह,
1: तो उनको भी जब वो आते हैं तो उनके वो बहुत खूबसूरत शायरी पेश करते हैं
0: बाकी जी,
1: तो इसलिए वो उनको हम आवाज दे रहे हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह।
0: अच्छा, ये
1: तो
0: मुझे बताएं कि पीछे से आपकी फोन की आवाज आ रही है और उसको या तो बंद कर दें या उसको,
1: फोन तो बंद है।
0: अच्छा, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही है, वो जो मैसेज की आवाज आती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा जब पीछे से बंद कर दें उनको, क्योंकि यहाँ पे आवाज आ रही है तो प्लीज।
1: नहीं, मैसेज तो बंद है।
0: अच्छा,
1: हो गया।
0: हाँ जी जी, कोशिश करें जी जी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ ना आए, क्योंकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया जी
1: जी। बाकी जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं
0: जी,
1: वो भी इंशाल्लाह आएंगे,
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: सॉन्ग सुनाएंगे
0: जी।
1: पापा जी हैं, शकील जी हैं, सलीम भाई हैं
0: जी,
1: और मदसर क्यांदी साहब हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, और साजिद पहलवान साहब हैं, शहजाद साहब हैं, एफ रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, उनका भी इंतजार होगा,
0: वाह जी वाह।
1: तारिक भट्ट साहब हैं, राना नवीद साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, उनको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और आपको सलाम पेश करें शालीन ने, उन्हें हमें याद कर रही हैं, लंदन में प्रोग्राम सुन रही हैं, वो हैं बहना जो हैं श्रीला जी की बहना हैं, और वो आपको सलाम पेश कर रही हैं, वेलकम कह रही हैं।
1: उनको भी बहुत बहुत सलाम, तो बहुत शुक्रिया उनका
0: जी।
1: तो ये शायरी है, सबके नाम करेंगे
0: जी जी,
1: ये एक गजल की तरह है लेकिन शायरी में है
0: जी जी।
1: लिखे, आप भी तो कभी हाल गम पूछिए,
0: वाह,
1: आप भी तो कभी हाल गम पूछिए,
0: वाह,
1: किस तरह से हुई आंख नम पूछिए,
0: आया क्या कहने,
1: किस तरह से हुई आंख नम पूछिए, गैर के जोड़ का तज़करा मत करें, गैर के जोड़ का तज़करा मत करें, आप अपने हैं अपना कर्म पूछिए,
0: वाह जी वाह,
1: बेशजर रास्तों पर सफर शोक का किस तरह तय हुआ है सनम पूछिए,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: मेरी बातों में अगर तंज ही तंज है, मेरी बातों में अगर तंज ही तंज है, अपनी बातों के भी पेचो खम पूछिए,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: अपनी बातों के भी पेचो खम पूछिए, मुझसे मत पूछिए रत जगे का सबब,
0: वाह क्या कहने,
1: मुझसे मत पूछिए रत जगे का सबब,
0: बहुत खूब,
1: अपने दिल से ही अपने सितम पूछिए,
0: वाह जी वाह,
1: मेरे हुस्न नजर पे ना हो गर यकीन, मेरे हुस्ने नजर पे ना हो गर यकीन,
0: वाह,
1: आईने से खुदा की कसम पूछिए, आप भी तो कभी हाल गम पूछिए,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: किस तरह से हुई आंख नम पूछिए,
0: वाह,
1: जो शख्स मुद्दतों मेरे शिदायों में था, آفت کے وقت وہ بھی تماشائیوں میں تھا.
0: واہ جی.

0: क्या कहने,
1: इसका इलाज कोई मसीहा न कर सका, जो जख्म मेरी रूह की गहराइयों में था।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: वो थे बहुत करीब तो थी गर्मी हयात, शोलाए हजूम शोक का परवाइयों से परवाइयों में था।
0: वाह वाह वाह।
1: कोई भी साज इनकी तड़प को न पा सका, कोई भी साज इनकी तड़प को न पा सका।
0: वाह।
1: वो सोजो गुजार जो शहनाइयों में था।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बज़्म तसव्वुरात में यादों की रोशनी, आलमे अजीब रात की तन्हाइयों में था।
2: बहुत आला। वाह।
1: इस बज़्म में छिड़ी जो कभी जान रही की बात, इस बज़्म में छिड़ी जो कभी जान रही की बात।
2: वाह।
1: इस दम मेरा तज़करा भी सौदाइयों में था। कुछ वज़ाए एहतियात से बानो थे हम भी दूर, कुछ दोस्तों का हाथ भी मेरी रसवाइयों में था।
2: बहुत खूब।
1: जो शख्स मुद्दतों मेरे शदाइयों में था।
2: वाह जी वाह।
1: आफत के वक्त वो भी तमाशाइयों में था।
2: आहा क्या कहने।
1: मुझे ऐसा लुत्फ अता किया कि जो हिजर थाना विशाल था, मेरे मौसमों के मिजादान तुझे मेरा कितना ख्याल
2: था। वाह जी वाह क्या कहने। बहुत खूब।
1: किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई।
2: वाह वाह।
1: तेरा नाम लेके मिला इसे मेरे हाफजे का ये हाल था।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: कभी मौसमों के शराब में, कभी बामो दर के अजाब में, वहाँ उम्र हमने गुजार दी जहाँ सांस लेना महाल था।
2: बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह।
1: कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग कैसे उजड़ गए, कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग कैसे उजड़ गए।
2: वाह।
1: कोई मीर जैसा गिरफ्तार दिल तेरे सामने की मिसाल था। तेरे बाद कोई नहीं मिला जो जो हाल देख के पूछता।
2: वाह जी वाह क्या कहने।
1: मुझे किसकी आग जला गई, मेरे दिल को किसका मलाल था।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: तेरे बाद कोई नहीं मिला जो ये हाल देख के पूछता।
2: वाह।
1: मुझे किसकी आग जला गई, मेरे दिल को किसका मलाल था।
2: बहुत खूब।
1: मुझे ऐसा लुत्फ अता किया जो हिजर थाना विशाल था।
2: वाह।
1: मेरे मौसमों के मिजाज दां तुझे मेरा कितना ख्याल था।
2: वाह जी वाह क्या कहने।
1: तो बस इतना ही था।
2: बड़ा ही खूबसूरत और लाजवाब आपने बड़ी खूबसूरत शायरी करती हैं और बेमिसाल कमाल की, और कमाल कमाल ही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मलिक साहब हैं और वो शुक्रिया अदा करें, अली भाई हैं वो शुक्रिया अदा करें, और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने पसंद किया, इन्जॉय किया। और शालीन जी वो भी आपका तारीफ़ कर रही हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की आपकी और फूल वगैरह भेज रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। राइट दैट वाज अतीका साहिबा, उन्होंने हमें याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना, कोई कॉल नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे हमने अड ब्रेक भी करनी है और छोटी सी अड ब्रेक होगी और उस तो बाद हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें अजान भी पेश करनी है और यहाँ पर अजान तो शो नहीं हो चुकी है और पता नहीं क्या वजह है कि ये शो नहीं हो रही है। तो कोई मसला नहीं, हम पेश कर देते हैं, इसका कोई मसला नहीं। हम हैं ना, मैं हूँ ना, और मैं इंशाल्लाह जल्द जब टाइम होगा अजान का, और वो भी मगरिब की अजान होगी इंशाल्लाह जल्द, तो वहाँ पे मैं पेश कर दूँगा। यहाँ पे सिस्टम है तो यहाँ पे है, तो कंप्यूटर में पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने फीड नहीं की है, क्यों नहीं की है। कोई बात नहीं, वो भी हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, शायद वह भूल गया होगा। इसमें ये अखलाक है, ये भी एक प्यार मोहब्बत है, और हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, और इल्ज़ाम लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंसान है, इंसान की गलती हो सकती है और गलती का पुतला है। और एक दूसरे के साथ अच्छा तावन करें, अच्छा खलूस मोहब्बत के साथ रहें, और यही खूबसूरती है। वैसे भी ये जो जो दिन हैं बड़े ही कमाल के, सब्र के दिन हैं, सब्र कमी ना है। और इसमें जो ना आपने अब तक नहीं सोचा है, समझा है, पाया है, तो कब सोचेंगे, तो कब समझेंगे, कब पाएंगे, और ये भी सोचने की बात है।
0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: हम बोले जो प्यार में रोक गुजारते दे परछाई भी होते तो ठोकर से मार दी बाकी पहे हम भी खूब रहे बहक इंतकाम से गुजरती है इश्क में हम मकाम से।

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह वाह वाह विजान, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने जी, जबरदस्त में और आपने महफल लूट ली, ब्यूटी दैट वाज, बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया। और रेखा जी आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं, और क्या कहने, वो फ्लश कर रही हैं हमें जी जी,
1: सबको जितने लोग आते हैं,
0: और आपका शुक्रिया अदा करें मिस्टर मिस्टी पटेल ने, वो शुक्रिया अदा से बर्मिंघम से, वाह जी वाह, कमाल कर दिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी साहब वो आ रहे हैं माशाल्लाह, वो आ रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, वो रेडी हैं, वाह जी क्या कहने, हाँ शकील साहब तो आएंगे ना माशाल्लाह, क्या कहने, वो तो आएंगे माशाल्लाह, क्या कहने, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बाबी जान,
1: बोल देती हूँ सबको मैं जी, लोग आएंगे रेडियो में तो जी, फिर भी ईद मुबारक सब,
0: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: खुशी खुशी मनाए,
0: वाह जी वाह, क्या कहने, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वाह। ये थे हमारी बाबी जान और गुरुजी हैं, बहुत ही कमाल कर दिए, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह, ब्यूटीफुल कपल, और इनके लिए हमेशा ही हम दुआ करते हैं, सब दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, और डॉक्टर मलिक सब दुआ करते हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमने करना है, टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 45 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked down with the power of his con. यहाँ भी हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ भी हमारे साथ है, और आज हमारा प्रोग्राम जो है ना मुकम्मल हो गया, क्यों मुकम्मल हो गया, क्योंकि हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब भी आ गए हैं, हमारे शकील साहब भी आ गए हैं, बस इनको हमारे करके हम चलते हैं घर में, क्या हाल है, ये हमारा काम हो गया आज, और यहाँ भी हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो,
3: सनराइज रेडियो, ट्रेंडसेटर्स इन एशियन ब्रॉडकास्टिंग, वी लीड, अदर्स फॉलो।
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
6: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहां पे हमारा साथ देने हमारे मोहतरम भाई दोस्त मोहम्मद रफी साहब भी हमारा साथ देने, वेलकम जी एंड खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहम्मद रफी साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप आए और बाहर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
1: मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज पूरा दिन एंजॉय करता रहा हूँ,
0: बड़ा ही प्यारा मौसम,
1: लेटा रहा हूँ। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत वो क्या है के सन मेरे वो क्या है बदन में जाती रही, बड़ा दिल खुश हो।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, बड़ा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या कहने।
1: और आप ठीक ठाक
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र शुक्र, आप आए गए और हमें अच्छा लग रहा है। और आपके चाहने वाले उन्होंने बड़ी तारीफ की है, गिदन भाई ने, सुमित्रा जी ने बड़ी आपकी तारीफ की है माशाल्लाह।
1: बहुत बहुत उनका शुक्रिया,
0: बेहद
1: उनका शुक्रिया। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे हमको नाज है।
0: वाह
1: परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चाक आ गई
0: जी, मजा आ गया, मजा आ गया जी। वाह जी वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह।
1: फरमाइश करते हैं आप परवेज
0: जी,
1: साहिल चौधरी मुजफ्फर गुरु जी, बाबी सेबा सिमी बहन, डॉक्टर हिम्मत कुमार, डॉक्टर बशीर
0: जी,
1: डॉक्टर बशीर पासा, नर्स फरजाना एंड मिसेज जूली।
0: वाह क्या कहने जी,
1: यही अरमान लेकर आज अपने घर से हम निकले।
0: बहुत खूब।
1: यही अरमान लेकर आज अपने घर से हम निकले, जहाँ है जिंदगी अपने उसी कूचे में दम निकले।
0: बहुत खूब।

0: तुम जिन्हें चाहता इतना वो तो पत्थर के सनम निकले जहाँ है जिंदगी अपनी उसी कूचे में दम निकले
1: वाह वाह वाह
0: तमन्ना है यही अब तो मेरा सर

0: अगर यूं मौत आ जाए, अगर यूं मौत आ जाए तो अपने दिल से गम निकले। जहाँ हो जिंदगी अपने उसी कूचे में दम निकले।
1: Beautiful.
0: ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई छू ले, जुल्फों से कोई खेल ले, आजा रे आजरा आ, लेरा के आजरा आ, आंखों से दिल में समा, आजा रे आजरा आ, लेरा के आजरा आ। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगरे का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगरे का जख्म हरा है। सीने से मेरे दिल को लगा दे, हाथ में तेरे मेरी दुआ है। आजरे आजरा आ, लेरा के आजरा आ, आंखों से दिल में समा, आजरे आजरा आ।

0: दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। अजरे आ जरा आ, रोकिया जरा आ, आंखों से दिल में समा। अजरे आ जरा आ, लेरा के आ जरा आ। ओके सर जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बड़ा ही खूबसूरत गीत गाने गुनगुनाए और हमें अच्छा लगा। और आपके लिए भी काफी ये दोस्त हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे किधर भाई हमारे पापी जान शुक्रिया अदा करते हैं और सिमी जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और बाहर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, रब रखा। वाह कमाल का दे, कमाल कमाल कमाल, ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब और कमाल करते हैं और बड़ी खूबसूरत की आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है और हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हमारा अभी टाइम चार मिनट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और हम क्या करेंगे कि चार मिनट में और नेक्स्ट आवर में हम सबको लेके आएंगे। और क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ ममनून इनका। और क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर में और सबको, मैं यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं और उनको हम सलाम कहेंगे, जियाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे उनको। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मुर्शिद जी आ गए और हमारे उस्तादों के उस्ताद भी आ गए, उस्तादों के उस्ताद भी वो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों का हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया जो पीछे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि आप आएँ। और माशाल्लाह नदीम मंसूर साहब आप कोशिश करते रहें और थोड़ी देर के बाद आपके साथ मुलाकात होगी हवा के दोष में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मैं कॉल को नहीं ले अभी हवा के दोष में, क्योंकि चार मिनट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब हम हेलो हाई करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो वहां पे मुझे कहना पड़ता है कि यार आप थोड़ा सा होल्ड करें, तो पहले ही आप होल्ड कर ले, क्या हाल है, और वही बात हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और यहां पे और आज कहां पे जा रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। आज मौसम जो ना बड़ा ही प्यारा मौसम है, 25 डिग्रीज इन यॉर्कशायर व्हेन आई केम इन, एंड मोस्ट बी अबाउट 24-23 एज वी गो डाउन इज गोना बी कूलिंग डाउन टेम्परेचर एज वेल। और वही बात हो रही है कि खूबसूरत मौसम है और आप खुद खूबसूरत हैं, तो हर चीज़ खूबसूरत है, ठीक है, हर चीज़ जो भी देखेंगे ना तो वो आपको अच्छाई मिलाएगी, मिलेगी और अच्छा ही होगा। आप किसी को देखेंगे वहीं कहीं वाह क्या बात है, ये बड़ा ही खूबसूरत है, ये कमाल जो है ना वो आपकी आँखों का, आप अच्छे हैं, तो आप बुरे हैं तो आपको हर चीज़ बुरी लगेगी, क्या हाल है। और वही बात हो रही है, हम कौन सुनेंगे, किसको सुनाएं, क्या करें यार, क्या हाल है। और वही बात हो रही है, चलो इसको रहने दो, वैसे भी आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत देखेंगे, आपने इंजॉय कर रहे हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मौसम ब्रैफर्ड का है। क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पे दुबई आ गई है हमारे ब्रैफर्ड में, यॉर्कशायर में, और रौनक हो रही है और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आ रहे हैं, माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो सनराइज रेडियो है वो यॉर्कशायर में है, और यॉर्कशायर जो है ना एक कमाल का सिटी हो गई है और कमाल का शहर हो गया, क्योंकि खूबसूरती है आप सब में, क्योंकि आप सब खर्चा कर रहे हैं एक दूजे के साथ, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हो रहा है यॉर्कशायर का, और क्या कहते हैं कि तब्दीली आ गई है, क्या है, तब्दीली आ गई है, और तब्दीली आ गई है ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में आ गई है। और इसमें हम देखेंगे क्या होता है, और जो माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड की खर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ ममनून का, कि मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, ये ना हो कि वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो जाए, आप सब उनको जानते हैं, उनका कोई वैसे भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी तारीफ ही एक अपना उनका एक क्या कहेंगे, मैं वो कहूँगा तो वो एडवर्टाइजमेंट होगी, वो भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि मैं कुछ कहूँगा तो वो फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, कि ये भी हमें सुनना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मैं हेडफोन में जो ना वो मुझे वो कह रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जिन्होंने खर्चा किया, जिन्होंने माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में, और पूरे अपने शहरों में खर्चा कर रहे हैं, एक अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक खूबसूरती है, जो आने वाली नस्ल है उनके लिए खूबसूरती है, और जो हम जो लोग जो बड़े लोग हैं माशाल्लाह उन्होंने कमाई की हुई वो खर्चा कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द वेस्ट यॉर्कशायर, द ब्यूटी ऑफ यॉर्कशायर एंड ब्यूटी ऑफ द वेस्ट यॉर्कशायर, ब्यूटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। और ये वो चीज़ हो रही है और ऐसी ही है। एनीवे देखते हैं कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है और क्या हमें सुनने को मिलेगी। और ये भी बहुत खूबसूरती है, और शॉपिंग कर रहे हैं आप एहतियात करें, दूसरों की एहतियात करें, अपनी एहतियात करें, एंड ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: Sky News Centre at 10. West Ham's 14-year stay in the Premier League has ended. Tottenham's 1-0 win over Everton means Nuno Espirito Santo's team have been relegated to the Championship despite their 3-0 victory over Leeds at the London Stadium.
4: Tough day for us, special for our fans. We knew that it was going to be difficult. It was not in our hands. We did our part and we expected for the best. It didn't happen. We have to pass to the sad moment that we are living.
3: Sunderland's 2-1 win over Chelsea has seen them qualify for the Europa League along with Bournemouth. Brighton, meanwhile, will play in the Conference League despite their 3-0 defeat to Manchester United. And Manchester City's final game under Pep Guardiola ended in a 2-1 loss to Aston Villa. Champions Arsenal were 2-1 winners at Crystal Palace before picking up the trophy. A 15-year-old boy's missing after getting into trouble in water in Lincoln. Emergency services were first called to Swanholme Lakes at 2:30 this afternoon. Tropical nights are being forecast as temperatures continue to climb this bank holiday weekend. Tomorrow could see the hottest May day on record. Possible highs of 34 degrees Celsius are being predicted in southeast England. And Dr. Chloe Brimacombe, a climate scientist at Oxford University, says warm nights at this time of year are problematic.
5: They've only started to occur in a greater number since 2000. This is bad because we can't cool down as much overnight, which means that we build up heat in our body more, especially for those that are most vulnerable to heat, of course.
3: The Prime Minister says a double rape case which has seen two teenagers spared jail is appalling. Sir Keir Starmer says it's right the non-custodial sentences handed to the pair over separate attacks in Hampshire are urgently reviewed. Donald Trump says the final aspects and details of a deal with Iran are being discussed. It's been reported an agreement could include a 60-day ceasefire, reopening the Strait of Hormuz, and a commitment from Tehran not to pursue nuclear weapons. And singer Nicola Roberts has had a baby girl. The Girls Aloud star's given birth to her first child with footballer Mitch Hann, calling it heaven on earth. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमने गाने को रोकना है क्योंकि हमारे साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 6:10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, और वन एंड ओनली वन हमारे मुर्शिद हैं, और उनको हम यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। और उनके लिए ये सलामी है। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
2: जी अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआएं हैं सब ठीक।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी।
2: तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: जावेद मीर साहब हैं, महबूब इलाही हैं, वाजिद भाई हैं, मलिक साहब, चौधरी रुखसार साहब हैं
0: जी,
2: भाई मुदस्सर भाई हैं
0: जी,
2: चौधरी मुजफ्फर साहब, तारिक जुल्फी साहब है
0: जी,
2: चौधरी फरियाद साहब
0: जी,
2: किपन भाई, चौधरी हनीफ साहब, रीगा खान है, राय अतर सैन साहब है
0: जी,
2: तकीर शाह है
0: जी,
2: अरती सतारा साहब, अतीका जी है, सुमित्रा बहन है, गजाला जी
0: जी,
2: रुखसाना जी, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: मंसूर को भी, अली भाई को भी
0: जी,
2: साहब को भी
0: जी।
2: तो वो आपने एक बात पूछी थी अखलाक के।
0: जी जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी।
2: एक शेर है
0: जी जी जी,
2: अखलाक एक हुस्ने इलाही का ताज है।
0: हाय हाय हाय माशाल्लाह, वाह जी वाह, क्या
2: अखलाक एक हुस्ने इलाही
0: का ताज है,
2: है जिसके सर पर उसका जमाने में राज है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, वाह वाह।
2: तो
0: वाह वाह वाह वाह।
2: तो परवेज भाई, अखलाक के खोटे खरे सिक्कों को परखने के लिए गैरों की जुबान से बढ़कर कोई कसौटी नहीं,
0: कोई कसौटी नहीं। हाय हाय हाय, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, वाह क्या कहने।
2: दौलत या मनसब मर्तबे से आदमी काबिले एतबार नहीं होता।
0: वाह वाह,
2: सिर्फ एक चाल चलन है जो आदमी को काबिले एतबार बनाता है।
0: वाह जी वाह वाह, बहुत खूबसूरत, वाह।
2: सखावत दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करती है।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब।
2: और बुखल खुद अपनी ही औलाद को दुश्मन बना
0: ना देती है। हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूबसूरत।
2: नेक काम करते वक्त मजहब कौम का ख्याल न करो। दोस्तों के साथ सब नेक सलूक करते हैं।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: असल नेक सलूक वो है जो दुश्मनों या बेगानों के साथ किया जाए। सच्ची मोहब्बत सख्त से सख्त दिल को जीत लेती है।
0: वाह क्या कहने, बहुत खूब।
2: जो शख्स घर में अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा है
0: जी जी,
2: वो हकीकत में अच्छा है और अखलाक वाला है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
2: उसमें कोई रियाकारी वकारी नहीं होती।
0: वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत बात की है ने। वाह जी वाह।
2: एक आदमी कितना बा अखलाक है उसकी बीवी से,
0: उसकी बीवी से पूछे, ये मैं कहने वाला था, और क्या कहने। वाह जी वाह इसका मतलब है मैं पहुंच गया, मुझे जवाब मिल गया, ठीक है।
2: जिंदगी में कामयाब होने के लिए जहीन होने की बजाय

0: हाय हाय हाय, क्या कहने,
1: क्योंकि ना दुनिया के पास इतना वक्त होता है, ना उसे जरूरत है कि वो हमारी नीयतों या हमारे अखलाक का मुतालिया करे।
0: बहुत
1: ही नेचरली वो हमारे जाहिरी तर्ज अमल और बर्ताव को देखती है, उसके मतलब हमारी राय काम करती है।
0: ओए होए होए, क्या कहने, वाह जी वाह वाह वाह वाह।
1: अल्लाह की खुशनुदी और मखलूक की हर दिल अजीजी,
0: वाह,
1: यानी लोग आपको पसंद करें,
0: पसंद करें, जी जी,
1: और खुदा भी आपको पसंद करे,
0: माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
1: इसको हासिल करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे आसान जरिया खुश अखलाकी है,
0: खुश अखलाकी है। आए हाय हाय हाय हाय,
1: इंसान हजार आलम फाजल आबद जाहिद हो, अगर उसमें अखलाक नहीं तो उसके इल्म और इबादत का कोई फायदा नहीं,
0: कोई फायदा नहीं। इसका मुझे बताएं कि, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इसमें कोई खर्चा होता है, इसका कोई कोई उसका कोई मूल है या कोई कोई कीमत है?
1: कोई मूल नहीं होता
0: जी। चलो चलो, शायद मैंने कहा कि शायद कोई कोई कोई कोई प्राइस हो इसकी जी जी।
1: अच्छा, मौका मिले दूसरों को खुश करने की कोशिश करो
0: जी।
1: तुम्हें खुश नसीबी नहीं, खुशी नसीब नहीं होती तो कम अज कम दूसरों को खुशी दे सकते हो।
0: हाँ,
1: तो खुश अखलाकी से पेश आओ, इस पर खर्च कम आता है, खर्चा बहुत कुछ जा सकता है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह जी वाह।
1: लोगों के दिलों को काबू में कर लो, फिर उनके दिल और उनका माल भी तुम्हारा हो जाएगा।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने।
1: अखलाक हासिल करने के लिए ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं, बल्कि वो तमाम काम और अल्फाज जिनको इंसान किसी दूसरे इंसान के हक में इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करने से पहले इतना सोच ले कि अगर यही अल्फाज कोई दूसरा शख्स मुझको कहे या यही सलूक कोई दूसरा मेरे साथ करे तो क्या मैं उसके इन अल्फाज से नाराज तो ना होऊंगा। जो चीज तो खुद पसंद करता है
0: जी जी,
1: दूसरों के लिए भी
0: वही चीज है। हाँ, वही चीज है।
1: मिसल मशहूर है, गुड़ ना दे गुड़ सी बात तो,
0: गुड़ की बात भी कर। हाय, बड़ी खूबसूरत बात की है, वाह जी वाह, क्या कहने, क्या।
1: किसी को फायदा ना पहुंचा सको तो कम अज कम शीरी कलामी से तो पेश आओ।
0: हाय,
1: शीरी कलामी से महरूम हो तो दिल आजार कलमात कहने से बाज रहो।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
1: जबान से बुरा ना कहो, कान से बुरा ना सुनो, आंख से बुरा ना देखो, पांव से बुरी जगह ना जाओ, और हाथ से बुरा काम ना करो।
0: वाह जी वाह, क्या बात।
1: जियो आप औरों को भी पीने दो।
0: हाय हाय हाय हाय, वाह,
1: जियो आप औरों को भी
0: जीने दो, जियो और जीने दो। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की, बड़ी।
1: वो जब बेगानों को अपना बनाने के लिए सबसे बेहतर और आसान अमल खुश अखलाकी है
0: जी। ऐसी ऐसी माशाल्लाह माशाल्लाह
1: भाई
0: जी जी,
1: बहस मबासा हमेशा खतरनाक होता है।
0: हाँ जी,
1: इससे सर्द मेरी और गलत फहमी बढ़ती है,
0: बढ़ती है।
1: अगर तुम जीत भी जाओ तो दोस्त को खो देगे। लियाकत ताकत या इल्म से दिलों पर कब्जा नहीं किया जा सकता, हाँ खुश अखलाकी से दिलों पर कब्जा कर लिया जाता है।
0: वाह जी वाह, क्या।
1: दोनों इस कब्जे के बहाल रख, यानी अपनी अपनी रफ्तार, उठना बैठना, हरकत और सकनात, जाहरी शक्ल और शबात से दूसरों की आंख और अपनी आवाज से, गुफ्तार और लब लहजा से दूसरे के कानों को गर्विदा करो।
0: वाह, क्या कहने,
1: दिल खुद खुद गर्विदा हो जाएंगे।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, देखो ना, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत।
1: थोड़ा सा अखलाक पे था तो मैं एक,
0: नहीं नहीं नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, आपने गुफ्तगू की है, बड़ा अच्छा लगा और सुनने वाले ने भी पसंद किया होगा, क्योंकि ये आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में ये बातें बहुत ही कम होती हैं और बहुत ही कम लोग करते हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो करनी भी चाहिए। पहले कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, पहले घर से शुरू करनी चाहिए।
1: मगरी को मैं जो है ना, इसीलिए तरक्की में है।
0: हाँ,
1: अखलाक बहुत अच्छा है,
0: अखलाक बहुत अच्छा है।
1: आप जा रहे हो ना रोड पे
0: जी,
1: तो आपका कोई वाकफ कार ना हो ना गोरा, तब भी वो आपको देखकर मुस्कुरा देगा।
0: हाँ देखो, यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा जो जी, ऐसे ही देखो, गोरे लोग होते हैं, सुबह को देखे ना तो वो गुड मॉर्निंग, वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, बड़ी बड़ी मुस्कुरा के साथ कहते हैं गुड मॉर्निंग, ये वो। देखो
1: आप दुकानों पे जाते हैं गोरे हों तो वो आपका थैंक यू करेंगे,
0: थैंक यू करेंगे, बाकी बाकी
1: हमारे वो चुप करके पैसे ले लेंगे और
0: वही बात, कुछ भी नहीं करेंगे, अल्लाह रहम करें, बस ये कि दही देते हैं। अखलाक बड़ी चीज़ है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और वो भी

0: में फ्री में है और एक दूसरे के साथ अच्छा तावन करें, एक दूसरे के साथ वही कहते हैं जियो और जीने दो, और अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी ना करें,
1: ये आपके ये भी काफी अच्छा
0: जी।
1: तो जो एक मैं आपको नज़म सुना देता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: अगर आपके पास टाइम आता
0: सर जी, आपके लिए टाइम ही टाइम है सर, आप पूरा प्रोग्राम ही आपके लिए सर।
1: कादर सिद्दीकी है, उन्होंने लिखा है।
0: कादर सिद्दीकी साहब जी जी, अर्शाद
1: कहते हैं प्यार का आज जलन दोस्तों दुश्वार है क्यों। प्यार का आज जलन दोस्तों दुश्वार है क्यों।
0: वाह,
1: इंसान खुद इंसान से बेजार है क्यों।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: आज के दौर ने ये कौन सी करवट ली है। आज के दौर में मासूम गुनाहगार है क्यों।
0: वाह,
1: बेगुनाहों का लहू शहर में अर्जा है सही।
0: वाह,
1: आसमां पर भी वही रंग नमूदार है क्यों।
0: बहुत खूब बहुत खूब। वाह,
1: क्यों खलूस और सदाकत से नहीं कुछ हासिल।
0: वाह,
1: मकर ही मकर जमाने को सजावार है क्यों।
0: बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह वाह वाह वाह,
1: क्या हम इस दौर को शुभहात का एक दौर कहें। शक में डूबा हुआ हर शख्स का किरदार है क्यों।
0: वाह, क्या कहने। वाह, बहुत खूब।
1: गोशे कल तक उस शोक की यादों पे था जीने का मदार। आज उस शोक की हर याद गिरा है वार है क्यों।
0: वाह वाह वाह,
1: गोशाए दिल में भी बुतखाने हुआ करते हैं परवेज भाई।
0: हाय हाय, वाह,
1: गोशाए दिल में भी बुतखाने
0: होते हैं।
1: वाह, कादिर इस बात से आपको इनकार है क्यों।
0: भाई हाय हाय, क्या कहने।
1: बस दिल को जीतना है तो अखलाक सच्चा रखें,
0: अखलाक कसरत करें। वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: दिल जीत लोगे सब कुछ,
0: सब को जीत लेके। वाह जी वाह, क्या कहने। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत
1: टाइम देने के लिए।
0: सर जी सर जी, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, प्लीज शर्मिंदा ना किया करें। ये महफिल भी आपकी है, आप हमारे उस्ताद मोहतरम है माशाल्लाह, हमारे उस्ताद हो माशाल्लाह, हमारे मुर्शिद हो, और आपकी जो अल्फाज हैं हम इंतजार करते हैं माशाल्लाह कि आपकी कुछ ना कुछ हमें भी हासिल होता है माशाल्लाह, आपके सुनते हैं माशाल्लाह, शेर शायरी को, कलाम को, गुफ्तगू को माशाल्लाह बड़े अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने दो हाथ जोड़ के उन्होंने मौजी पे जी है, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने। वाह जी वाह,
1: मैंने जी
0: जी
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक हमेशा को खुश रखें, शादाबाद रखें, और ये आपके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। वाह, ये थे हमारे माशाल्लाह मोहसिन, हमारे अपने, और इनसे हमेशा ही सीखता हूँ, और मैं आज भी सीखा है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और यहाँ पर हम निशोर की ब्रेक करेंगे, और कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 FM।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
6: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, जो मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा मुझे फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सब दोस्तों का जो मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे उनको यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेरे भाई हैं ना, और मीठा जी हैं, इनको मिठाई में मीठा जी कहता हूँ, बड़े प्यार करने वाले, बड़ी खूबसूरत हस्ती है हमारे यॉर्कशायर की, ब्रफ की नहीं मैनचेस्टर की है, और बड़ा ही खूबसूरत, और मेरे ख्याल में क्या कहेंगे, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, क्योंकि ये हमारे भाई चौधरी रुखसार भाई हैं, बड़े ही खूबसूरत है, बड़े ही नफीस, बड़े ही आला, और इनके पास जो नॉलेज है माशाल्लाह हम शेयर करते रहते हैं, हमेशा इनको कहते हैं कि आएँ और अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और सब इनको पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इनके लिए हम दोबारा यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चश्मे रोशन दिले माशा बा कमाल लाजवाब ताला बा इज्जत बाबकार बाजोक बाशोक हर दिल जी शख्सियत बहुत नफीस बहुत लतीफ बहुत शफीक और बारिफत हस्ती मेरे प्यारे भाई मेरे चैंपियन अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरका। जब मैंने सुना ना चैंपियन, बड़े दिनों के बाद मैंने सुना ये अल्फाज, और जो हमारे बड़े दिनों के बाद, और मेरा दिल जो ना मैं ना बाग बाग हो गया, क्या कहने, आहा उस बाग में खुशबू आ रही है, रात की रानी की खुशबू आ रही है, क्या कहने क्या कहने, वाह मैं क्या कहूंगा।
7: आपको सलामत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको अपनी कमान में रखे, क्योंकि चैंपियन एक ब्रांड है।
0: हाय हाय चैंपियन एक ब्रांड है। वाह जी वाह, बड़ी बड़ी खूबसूरत है, क्या कहने आपने, माशाल्लाह सब मुझे चैंपियन कहते हैं माशाल्लाह, और आपकी वजह से बदौलत से माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। और आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी मेरे भाई की, और कैसा आज दिन आपने गुजारा है, बड़ा ही खूबसूरत, हमने तो बड़ा ही प्यारा गुजारा है, तो आप सुनाएं।
7: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने माशाल्लाह मेरे प्यारों ने इतना प्यारा गुजारा तो फिर हम भी तो बस प्यारा ही गुजारते हैं
0: ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, आज जो ना नेजाबाजी हुई है यहाँ पे ब्रैफर्ड में यॉर्कशायर में, और बड़ा ही मजा आया, और मैं भी नहीं सवारी की है, मैंने कहा कि मैंने शायद मैं घोड़े पे बैठ जाऊँ तो ये ना मैं घोड़ा भाग जाए, तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगा।
7: माशाल्लाह बहुत, मेरे जो ना मेरे ननाल वाले जो मेरे नानके है ना, वो घोड़े बहुत ज्यादा उनको शौक है,
0: उनके शौक है माशाल्लाह, क्या कहने।
7: मैं एक दफा, मैं छोटा था तो मैं एक दफा गया तो मुझे मामू ने बोला कि आप भी घोड़े पे सवारी करो, घोड़ा जो है ना वो दौड़ाओ थोड़ा सा।
0: हाँ।
7: अच्छा मैंने दौड़ाया, मेरा पैर काबू में
0: फंस गया घोड़े के। ओए होए होए होए, पता है कि घोड़े के बैठना ना, बैठना भी ना एक तरीका होता है, बिलीव करें, मैं बड़ा अच्छा हो गया, मैंने बड़े दिनों के बाद में बैठा हूँ, तो वो भी बड़ा तरीका होता है, बैठने का भी तरीका होता है, उसके बाद फिर उसको जो कंट्रोल करने का वो भी बड़ा तरीका होता है। और क्योंकि हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान से, आपको पता है कि इमरान रियाज साहब हैं, वो भी आए हुए थे माशाल्लाह, उनके साथ भी मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, और बड़े अच्छे हस्तियाँ, बड़ी बड़ी कमाल की हस्तियाँ हैं यॉर्कशायर में, तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा बैठ जाऊँ, तो मुझे डर भी लगा था कि मैंने कहा कि ये ना हो कि घोड़ा कोई किसी और शहर में चला जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने माशाल्लाह, क्या कहने
7: वो उधर घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन अब जब मुझे बोलते हैं मन मोड़ना।
0: ओए होए होए, मैं
7: देखता हूँ, लेकिन मुझे जब बचपन से डरा हुआ हूँ ना
0: मैं, माशाल्लाह घोड़े को मैं देख रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि पाकिस्तान से घोड़े जो ना वहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं, और उनकी जो ना परवरिश जो हुई है ना, उनकी जो देखभाल है ना, बड़ी खूबसूरत है, और पता नहीं क्या क्या इतना खूबसूरत, एक मैंने देखा काला घोड़ा था, एक चीता था, और एक गोल था, गोल्ड कलर का, मैंने इतना खूबसूरत, वो जैसे दुबई में होते हैं, और इतने खूबसूरत, ओए होए होए, मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा माशाल्लाह, क्या कहने, वाह
7: माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं
0: लूंगा, क्योंकि मुझे
7: पता है इतनी खूबसूरत हस्तियां और मुझसे बहुत आला माशाल्लाह और बहुत म्यारी और बहुत
0: मेरे भाई, ऐसी बातें ना किया करें कि जो आपके पास जो अल्फाज होते हैं, आपके पास जो बयानियां होती हैं, आपके पास जो नॉलेज होता है माशाल्लाह, उसके लिए हम इंतजार करते हैं मेरे भाई, और आप ऐसी बातें ना किया करें मेरे भाई, मुझे शर्मिंदा ना किया करें।
7: सर ने ये तो क्यों कहा, ये तो अल्लाह, वो अभी मोहतरम उस्ताद मोहतरम आए थे शकील साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और वो इसी तरह कह रहे थे जैसे वो माशाल्लाह इखलाक के बारे में कह रहे थे ना माशाल्लाह, है जी,
0: जी।
7: कि इतनी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की है और माशाल्लाह इतनी खूब शायरी की है, मेरा ख्याल अब उनके बाद जो है ना हमारा आना जो होता है ना,
0: वो उनका एक अपना रंग है, अपना फूल है, अपनी खुशबू है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल अपना जो गुलदस्ता है फूलों का, और यहाँ पे आप ही आ गए हैं, और वो भी एक खूबसूरत फूल है, और क्या कहेंगे, उसमें महक आ रही है, खुशबू आ रही है, और मुस्कान आ रही है, क्या हाल है
7: माशाल्लाह। ये होता है, ये तो साले जितने भी लोग हैं, ये सारे आला जरफ लोग हैं माशाल्लाह, ये नहीं बोलते, इनका जरफ बोलता है
0: कि जो माशाल्लाह, ये आपने बात जो की है ना, ये नहीं बोलते, और उसमें ज़र्ब बोलता है, ये जो खूबी होती है ना, देखो आपने पकड़ ली है ना, ये खूबसूरती है। वाह क्या कहें,
8: क्योंकि अपना चैंपियन भाई जो किसी को इज्जत देता है ना, वो खुद बहुत इज्जतदार होता है।
0: माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
8: वो कहते हैं ना कि अगर मशीन में आप कीमा डालोगे ना, वो चिकन का डालोगे तो चिकन का ही निकलेगा,
0: चिकन का ही निकलेगा। वाह,
8: बीफ का ही निकलेगा, लैम का डालोगे, लैम का जो डालोगे वो ही निकलेगा। होती है उनके बड़ों की, उनके वालदैन की, जब बंदा बात करता है तो वो बात नहीं कर रहा था, उनके पीछे उनकी वालदैन की तरबियत बोल रही होती
0: है। हाय हाय, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा। मैं कहता हूँ कि क्या कहने मेरे भाई, पहुंच गए, क्या कहने। वाह,
8: उसके लिए वो कहते हैं ना कि कान में, कान सुनते हैं, जुबान बोलती है, लेकिन उतना बोलो जितना सुन सको, के हले उतना बोलने की, जितना तुम बोलने की ताकत रखते हो ना, फिर उतना सुनने की बर्दाश्त भी रखो।
0: वाह वाह वाह वाह। और एक और बात हमारे मुर्शिद करते हैं हमेशा, पहले तोलो तो फिर बोलो,
8: फिर बोलो। क्या बात है, मुझे याद आ गया आपकी बात से कि मियां मोहम्मद शाह साहब फरमाते ने, चुप रहे ते मोती मिलसन, सबर करें ते हीरे।
0: वाह वाह वाह,
8: वांग सदाइयां रोला पावे ना मोती ना हीरे।
0: हाय हाय हाय, क्या बात, देखो देखो उनकी क्या खूबसूरती है, क्या कहने। वाह क्या कहने, क्या कहने, हर अल्फाज आए हाय हाय हाय, हीरे हीरे। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
8: तो सर मैं टाइम नहीं लूंगा कि मेरे बाद बहुत हस्तियां होगी जो इनसे इंतजार में होगी, और सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से जनाब इस माह मुबारक, इस हज के महीने की बहुत बहुत मुबारक, और एडवांस में आपको, आपकी पूरी फैमिली को और सनराइज की पूरी टीम को अथाह दिल की गहराइयों से जनाब एडवांस ईद मुबारक। और जहां जहां तक आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत और इतने आला रेडियो की नशरियात जहां जहां तक जिन जिन रोशन समातों के तक पहुंच रही है, सभी को अथाह दिल की गहराइयों से जनाब मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। मेरे ख्याल आप वेनसडे को आप नहीं होंगे,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह होंगे, क्यों नहीं, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वेनसडे का मेरा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जल्द मेरा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह जल्द जी।
8: अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जनाब हम हाजिर होकर इबादत भी करेंगे, और आपको जनाब वो कहते हैं ना कि दोनों बाएं खोल के आपको,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, जब भी डालेंगे, जब भी डालेंगे। और आपको भी हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, टीम की तरफ से, माशाल्लाह पूरे सनरेडी की तरफ से हज मुबारक और ईद मुबारक। और ये हमारे लिए दुआएं करें, और जो रोज़ा रखेंगे माशाल्लाह मंगल के रोज़, और जब रोज़ा इफ्तार करेंगे उसमें आपने मेरी खसूसी मेरे लिए दुआएं करनी है, और सब सुनने वालों की दुआ करनी है, क्योंकि वो जो दिन है ना, वो मैं सबको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपके पास टाइम है और आपके वे सेहतमंद हैं तो उसमें आप रोज़ा रखें, और ये इसमें बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अभी मैं पूछने वाला था आपसे, मैं पूछूंगा कि इसमें क्या है, इसमें कितना सवाब का काम होता है, पप्पो आपके पास टाइम हो तो चंद अल्फाजों में आप बता दें कि जो जो मंगल का रोजा है तो वो कैसे हैं और क्या है उसमें। जी
8: मैं पता कहते तो मैं छोटा सा, बस ये छोटा सा तालब इल्म हूँ कि इस जो ये रोजे होते हैं ना, ये रोजे होते हैं, ये जैसे सुन्नत रोजे होते हैं, नवाफिला रोजे होते हैं, जैसे माह रमजान के जो वाजिब रोजे हैं, ये होते हैं जो मुस्तहब रोजे होते हैं।
0: हाँ, माशाल्लाह।
8: लेकिन इनका सरकार जनाब इरशाद इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका अजर और सवाब उतना ही होता है जितना वाजिब रोजे का होता है।
0: हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जो रख सकते हैं वो रखें, जो नहीं रख सकते कोई मसला नहीं। जैसे वही बात होगी है कि आपके पास पैसा है तो कुर्बानी दे, आपके पैसा नहीं है तो कुर्बानी ना दे। ये एक देखो हमारा जो सलाम है वो कहता है कि सिंपल सलाम, या हम कम्युनिकेटिंग बना देते हैं इसको, बड़ी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वही बात हो रही है कि हर चीज जो है ना वो आप, अल्लाह ताला ने आपको कहा कि आपके खैद है तो आप रोजा रखें, नहीं खैद कोई बात नहीं, में कोई ये नहीं है कि आपने क्यों नहीं रखा, क्या वजह ये है वो है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे कुर्बानी का दिन होगा, और मैं एक और भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के ये नहीं पूछना कि यार कि आपने, मैं एक मेरी तरफ से ये मैं कहता हूं, ये नहीं कि किसी और का मैं कहता हूं कि आपने कुर्बानी दी है या नहीं दी है, कि जो कुर्बानी देंगे वो आपको गोश्त मिल जाएगा, जो नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे परेशान हाल में हैं, शायद वो उनको, वो उनका जो इस वक्त इस साल में शायद वो कुर्बानी ना दे सकें, ये नहीं है कि उनको शर्मिंदा करें, उनको कहेंगे यार ये आप कुर्बानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये एक छोटी सी बात है, क्योंकि हमारे मुर्शिद हमेशा कहते हैं कि यार कि किसी को शर्मिंदा ना किया करें, किसी को ये ना पूछें, जो कुर्बानी देने वाला होगा वो माशाल्लाह वो आपको गोश्त दे देगा, वो सबको पता लग जाएगा कि कुर्बानी दे रहा है। तो ये किसी को ये ना पूछें कि यार ये आपने कुर्बानी साल देनी है, वो क्या सोच रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है जो कुर्बानी है वो भी एक माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती चीज़ है, तो आपके पास वो माल है, पैसा है, तो आप दें माशाल्लाह, तो नीयत इसमें कोई बात नहीं है, अगले साल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी
8: बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं जनाब। ये कुर्बानी जो मकसद है ना, यकीन कीजिए जो मकसद है ना, हम लोग उस मकसद कुर्बानी को भूल चुके हैं यकीन।
0: हाँ, ये देखो ना, देखो वही बात है, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी इसलिए मैं, हाँ इसलिए मैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर के आपने इतना खूबसूरत, क्योंकि आपके पास जो इल्म है ना, हम जो ना वो बात है वो आपको साथ हम शेयर करना चाहते हैं और सब सुनने वालों को शेयर करना चाहते हैं कि ये खूबसूरती है आप दोस्त आ रहे हैं माशाल्लाह तो अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो आपने कुछ सुनाना है, कुछ शेर सुनानी?
8: चला मैं जनाब अर्ज करता हूँ, लेकिन जो आप मुझे कहते हैं ना कि इल्म यकीन करें कि मैं तो बस ये वो कहता हूँ कि मैं छोटा सा तालिब इल्म और मैं सबक सुनाने आता हूँ, यकीन करें।
0: नहीं, नहीं,
8: तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, ये यकीन करें ये सभी मुझसे हर लिहाज से अफजल और क्योंकि मैं बस ये एक छोटा सा तालिब इल्म आता हूँ और मैं इनको सबक सुनाता हूँ कि शायद मुझ में कोई सबक में कमी बेशी हो जाए तो
0: मेरे सबक सुनाना चाहिए, सुनना भी चाहिए। और ये बड़ी खूबसूरती आपके पास इल्म नॉलेज है तो शेयर करें, शायद कुछ के पास इल्म वो आ जाए, आपके जो इल्म है वो समझ लें, वो उनके समातों में उनके कानों में आ जाए, तो ये भी बड़ी खूबसूरती है और आपको जो इसका स्वाद मिलेगा माशाल्लाह। जी
8: यकीन करें कि मेरा यहाँ पे आना किसी
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये ये ये ये कोई नहीं नहीं नहीं
8: ये मकसद नहीं होता,
0: नहीं नहीं
8: करें हम प्यार बांटने आते हैं,
0: प्यार बांटने आते हैं माशाल्लाह,
8: बांटने आते हैं, मोहब्बतें देने आते हैं और कोई मकसद नहीं होता यकीन कर।
0: नहीं नहीं ये जो बात आपने कही ना, ये खूबसूरती है, देखो कि आपने अंदर आपको जो कला है आपके अंदर खूबसूरती है वो आप, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास नॉलेज है ना, ये पूछा जाएगा कि आपके पास नॉलेज था कि आपने क्यों नहीं शेयर किया, ये हमें लोगों को पता नहीं है, हम लोगों के ये बारे इसके बारे में हम बहुत कम लोग होंगे कि आपके पास माशाल्लाह कुरान की माशाल्लाह जो आपके पास इल्म है नॉलेज है उसको शेयर करें, उसको ये हस्बीलल्लाह उसको शेयर करें, ये नहीं कि आपने ये करना है वो करना है, ये पूछा जाएगा हम सबसे पूछा जाएगा वो क़यामत के रोज़ में पूछा जाएगा कि आपके पास इल्म था आपने शेयर क्यों नहीं किया, तो ये एक बड़ी बात है, वो कौन सुने तो कौन समझे मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं
8: इसमें भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि मैं आपका बहुत ही ज्यादा टाइम
0: नहीं कोई टाइम नहीं मेरे भाई, कोई
8: जो हस्तियाँ होगी ना यकीन करें कि मैं
0: मेरे भाई इस प्रोग्राम में आप ही मेरे अपने हैं और वो भी मेरे अपने हैं, दस से
8: ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, आपकी उल्फत है जो हम पर तकसीम करते हैं, तो चलो मैं ये कलाम लेके आया हूँ, लेकिन ये मैं अपनी अम्मी के जो है नाम करना चाहता हूँ
0: जी।
8: तो और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिनकी मैं इस दुनिया में जो पिछले साल थी अब नहीं है, अल्लाह ताला उन सभी के दर्जात बुलंद फरमाए और जिनकी माएँ हयात हैं अल्लाह ताला क़यामत तक उनका साया हमेशा उनके सरों पर कैम और दैम रहे और वो अपने बच्चों के बच्चों की सारी बहारें देखें।
0: आमीन आमीन
8: आमीन कह देना चाहिए,
0: आमीन आमीन हक आमीन,
8: आमीन कहने से हो सकता है किसकी दुआ कबूल हो जाए,
0: आमीन आमीन आमीन हक आमीन जी।
8: ये मैं जनाब तमाम अपनी माओं अपनी बहनों के नाम करना चाहता
0: हूँ,
8: तो दुआ फरमाइएगा
0: जी।
8: शायद लिखता है मोहब्बतों का गुलस्तान हमारी अम्मी है,
0: हाय हाय हाय माशाल्लाह,
8: उन्हें कलब और जिगर और जान हमारी अम्मी है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
8: बयान जिनकी फितरत कलाम पाक करे
0: वाह,
8: वो जी मकाम वो जी शान हमारी अम्मी
0: है माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह,
8: बेनूर जिंदगी लगती है वो घर नहीं होती
0: वाह,
8: हमारा बख्ते तरकशां हमारी अम्मी है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
8: क्या लिखता है, खुदा के फजल से सरकार की अनायत से जन्नत के बाग की मेहमान हमारी अम्मी है
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
8: हमेशा खिदमतें लाजम है इसलिए उनकी
0: माशाल्लाह,
8: खुदा के करीब का समा हमारी अम्मी
0: है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने,
8: जहाने इश्क में जितने हरफ उल्फत हैं
0: वाह,
8: हर एक हरफ में पहचान हमारी
0: अम्मी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
8: आखिरी के रात की बातों की नजर करना चाहता हूँ,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
8: हमारी जान की हिफाजत के वास्ते अहमद
0: वाह,
8: हमेशा हर घड़ी कुर्बान हमारी
0: अम्मी है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने,
8: परवेश भाई अम्मी अपने बच्चों पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो बड़े बड़े चट्टानों से लड़ जाती है
0: माशाल्लाह, क्या कहने वाह वाह वाह,
8: देने का बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बाहर आ गई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी,
8: पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को अथाह दिल की एक दफा फिर एडवांस में ईद मुबारक और हाथ की बहुत बहुत मुबारक,
0: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे मेरे मोहतरम मेरे भाई मेरे दोस्त और یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اذان شو نہیں ہو رہی ہے, تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے شاہ ٹائم ہے, ہمارے ہیڈ فون میں ریمائنڈر ہے, اور یہاں پہ عشاء کی اذان ہم پیش کریں گے, اور میں خود پیش کر لوں تو کروں گا ماشاء اللہ. بڑے ادب آداب سے آپ نے اذان سننی ہے, اور میرے لیے, میری فیملی کے لیے, میرے دوستوں کے لیے دعا کرنی ہے, سب سننے والے کی دعا کریں, جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اور یہاں پہ ہم نے اذان پیش کرنی ہے, وہ ہوگی عشاء کی اذان ہوگی, یہاں پہ عشاء کی اذان ہوگی یہاں پہ ہم نے پیش کرنی ہے, وہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے, اور یہ سب دوستوں کے لیے. کیپ اٹ لاکڈ ٹو سن رائز ریڈیو.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300। दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: राइट, वेलकम बैक रेडियो 93.2 FM। और यहाँ पे हमारा साथ देने भाई शुक्रान है, और वेलकम कहेंगे, जियन कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने तो मनमोनियो,
5: क्या हाल है जी? ठीक हो?
4: अल्हम्दुलिल्लाह। और हवा के दोष में लाइव में लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, माशाल्लाह। और कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर?
4: अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र करम करम करम,
5: माशाल्लाह। बहुत नाइस प्रोग्राम है आपका,
4: बहुत
5: शायर शेर और शायरी, और आपकी जो मतलब प्रेजेंटेशन है ना, वो समझ लेके माइंड ब्लोइंग है,
4: माशाल्लाह जी। थैंक यू सर,
5: बहुत। तो मैं यकीन करें कि मैं वैसे दिनों का इंतजार तो होता ही है
4: जी जी,
5: लेकिन संडे और वेनसडे का मुझे ऐसे इंतजार होता है जैसे छोटे बच्चे को छुट्टी का इंतजार होता है।
4: माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने।
5: सर जी, मैं
4: जी
5: एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ, कि कहता है कि हंसते चेहरों को ना समझो गमों से आजाद।
4: हाय हाय हाय, क्या कहने।
5: इतने गम छुपाए होते हैं एक मुस्कान में।
4: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
5: टूटा दिल मुरझाए चेहरे,
4: वाह,
5: होंठ फिर भी हंसते हैं।
4: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत।
5: यही तो खूबी होती है,
4: यही तो खूबी होती है
5: एक टूटे बिखरे इंसान में।
4: आई, यही तो खूबी होती है, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने। और जो भी आप शेर शायरी करते हैं ना, बेमिसाल कमाल की करते हैं, बिलीव करें। और जो फीडबैक मुझे मिलती है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी कमाल। क्या कहने।
5: तो गाना सर जी, लाल इश्क।
4: जी जी, गो अहेड।
5: जब कहा था मोहब्बत गुनाह,
4: आपने पीछे स्पीकर बंद कर दे, स्पीकर बंद कर दे पीछे।
5: गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली,
4: क्या कहने।
5: देते हो कह तो सुनते रहो, जान लेकर कहोगे के जीते रहो। प्यार जब जब जमी पर उतारा गया, जिंदगी तुझे कसद के निवारा गया।
4: वाह, क्या कहने।
5: जिंदा रहा मसलों में मगन,
4: वाह,
5: इश्क जिंदा रहा मसलों में मगन,

0: जाएंगे,
1: वाह,
0: इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे,
1: वाह,
0: ये मोहब्बत में निकली हुई फाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, दिल की रग रग
1: आपका आए और बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया और शायरी तो बेमिसाल बेकमाल करते हैं और हमारी तरफ से और बहुत बहुत मुबारक हज के भी और ईद की भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अल्लाह पाक हमेशा खुश रहे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया वाओ ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और यहाँ पे मेरा साथ देने हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त है जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है बिलीव करें ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं हमारे चौधरी फरियाद हैं वाह हा हा क्या कहने चौधरी फरियाद साहब बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला हजूर चौधरी साहब बिस्मिल्ला चौधरी साहब मेरे ख्याल चौधरी साहब की आवाज़ नहीं जा रही माशाल्लाह और क्या कहेंगे इनके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब और यहाँ पे हमने क्या करना है कि उनकी जो आवाज़ यहाँ पे आ रही है अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब और कोई बात नहीं और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने टाइम चेक करना है और छोटी सी बात करनी है आपसे भी और जो सुनने वाले उनसे भी और नदीम मशहूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और राना नवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी ट्राई की है कोशिश की है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी
2: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
1: 10 minutes, 45 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Parviz Khan. Jam Shoti ke bare karenge, keep it locked. Sunrise and music.
3: नहीं जी अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई चूड़ियाँ कांटे अंगूठियाँ हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डॉकवर्थ लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन नंबर 01274491442
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
5: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
4: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
5: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स

0: क्या है चौधरी साहब?
1: बड़ी मेहरबानी,
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सुनने वाले, अल्लाह सुनने वाले, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वाह, ये थे हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया जो फ्लश कर रहे हैं। और कोई कॉल नहीं लूँगा, और क्योंकि अभी जो चार मिनट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपने भी हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नदीम मंसूर साहब, मैं आपसे मदद चाह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, कि आपने भी कोशिश की है फ़ोन करने की, बहुत बहुत शुक्रिया। राना नवीर साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आप सबको जो भी सुनने वाले हैं, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द आपसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और क्योंकि आपको पता है कि जो सुबह होगी माशाल्लाह बुध हो गए, और उसमें माशाल्लाह आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हज आपको सबको हज मुबारक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हज मुबारक आपको भी, ईद मुबारक आपको भी, और जो भी हैं दिन हैं माशाल्लाह खूबसूरत दिन हैं माशाल्लाह। और क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही पहले कहते हैं कि हज है, उसके बाद जो ईद होगी, जो बुध की ईद होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सबको मेरी तरफ से दिली मुबारका मुबारका, आपकी पूरी फैमिली को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सब के लिए दुआएं करें, खैर करें माशाल्लाह। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते ऑन वेडनेसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8 and 11, वेयर वी गोना बी हैविंग पार्टी इन द स्टूडियो एज ऑलवेज। और अल्लाह हाफिज ऑन शब खैर, एंड सी यू अगेन ऑन वेडनेसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8 and 11, वेयर वी गोना बी हैविंग पार्टी इन द स्टूडियो। अल्लाह हाफिज, शब खैर।